आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जब हम फिल्मों की बात करते हैं, रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं और ऐसी रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं जिसका अंत बेहद दुखद रहा हो, तो उन फिल्मों में एक नाम सबसे ऊपर आता है। वो नाम है देवदास। देवदास का अंत हर किसी के दिल को छू गया था, हर किसी को रुला गया था और हर किसी को ये सोचने पर उस अंत ने मजबूर कर दिया था कि क्या कोई ऐसा प्रेमी हो सकता है। देवदास, इस फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा और शायद आपको ये भी पता होगा कि फिल्म की कहानी एक नॉवेल से इंस्पायर्ड थी और इस नॉवेल को लिखा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बहुत ही कमाल के लेखक और ऐसे लेखक जो आज भी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, आज भी उनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अंग उमंग कार्यक्रम में हम शरद चंद्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाता अंग प्रदेश से रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि देवदास का नाता अंग प्रदेश से रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों का ये मानना है और जो कुछ प्रचलित कहानियां हैं कि देवदास यही भागलपुर के कुछ जीवित किरदारों के ऊपर लिखा गया था। देवदास, पारो, चुन्नी लाल सभी मौजूद थे, अलग अलग नामों के साथ और थोड़े अलग किरदारों के साथ, थोड़ी अलग कहानी के साथ। दोस्तों, अगर हम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1876 में हुआ था। ये एक बंगाली नॉवेलिस्ट थे, छोटी कहानियां लिखा करते थे और ये ज्यादातर बंगाली परिवारों के बारे में लिखा करते थे, सोसाइटी के बारे में लिखा करते थे और गांवों के बारे में लिखा करते थे। इनकी जब आप कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप जान पाते हैं कि ये चीजों को कितनी गहरी तरीके से ऑब्जर्व किया करते थे। जो इनके आसपास लोग होते थे उनके लिए इनके मन में सिंपैथी थी और बहुत ही गहरी समझ ह्यूमन साइकोलॉजी की, किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से औरतें सोचती है, बच्चे सोचते हैं, पुरुष सोचते हैं, उनके सोचने में क्या अंतर है, उनके रवैये में क्या अंतर होता है, ये चीजें उनके लिखने के स्टाइल को बहुत ही नेचुरल, प्राकृतिक बना देती थी। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो भी लिखा वो पॉलिटिकल बायसनेस से बिल्कुल दूर रहा और कोई भी सामाजिक भ्रांतियां भी उनके लेखनी में आपको नहीं मिलती है। उन्होंने हर तरह के रुकावटों को तोड़ा, ऐसी रचनाएं लिखी कि कभी कभी कुछ शालीन घरों के लोगों ने उसे पढ़ने से परहेज भी किया। हाँ, देवदास ये उपन्यास जब प्रकाशित हुई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस उपन्यास को पढ़ने से परहेज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे देवदास एक ऐसा नाम बन गया है कि अगर कोई प्रेम में डूब गया है, प्रेमी नजर आता है, तो हम बहुत ही आसानी से कह देते अरे क्यों देवदास बने फिरते हो। सोचिए कि इन्होंने कितनी गहराई के साथ एक ऐसा उपन्यास लिखा जिस पर न जाने कितनी सारी फिल्में बन गई है, पर आज भी देवदास ये कहानी लोगों को उतनी ही जानदार लगती है। 15 सितंबर 1876 में एक बंगाली ब्राह्मण के घर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म देवानंदपुर में हुआ था, एक छोटा सा गांव हुगली में। उनके पिता का नाम था मातीलाल और माता का नाम था भुवन मोहिनी। शरद चंद्र उनकी दूसरी औलाद थे और पहले बेटे। देवानंदपुर में आज भी उनका वो घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके जो बचपन के दिन है वो हमारे अंग प्रदेश में बीता था। जी हाँ, इनका बचपन हमारे अंग प्रदेश में बीता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखना बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता के पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिससे घर बहुत आसानी से चल सके, जिसकी वजह से शरद चंद्र की पढ़ाई वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हुई, क्योंकि पैसे नहीं थे। अगर हम शरद चंद्र जी के बचपन के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को तभी भागलपुर ले आया गया था जब वो बस 2 या 3 साल के थे। यहीं पर इन्होंने पढ़ाई की 5th या 6th क्लास तक और उसके बाद वो देवानंदपुर वापस चले गए। वहां पर उन्होंने पाठशाला में 2 साल पढ़ाई की और वहीं पर उन्होंने फिशिंग सीखा, राफ्टिंग सीखा और अलग अलग जगह पर वो घूमे। और 1886 में वापस उनके पिताजी के द्वारा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नामांकन यहीं भागलपुर के स्कूल में करा दिया गया। स्कूल का नाम था दुर्गा चरण मिडिल इंग्लिश स्कूल। यहाँ पर उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गया और इसके बाद यहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने 1889 तक पढ़ाई की और 5वीं कक्षा में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और 1889 में हुआ ये कि मातीलाल की नौकरी भी चली गई, चट्टोपाध्याय और उनकी फैमिली

फिर से देवानंदपुर चले गए। वहां पर उनका दाखिला हुआ हुगली डिस्ट्रिक्ट स्कूल में। उनके पापा ने किसी तरीके से शरद चंद्र के लिए एक रूम अरेंज किया। हालांकि यहां पर भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए पढ़ना बहुत आसान नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी सक्षम नहीं थे शरद चंद्र के पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए। तो वापस वो 1893 में भागलपुर आ गए, जहाँ पर चट्टोपाध्याय जी का एडमिशन तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट स्कूल में हो गया। और जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपने पढ़ाई का खर्चा उठाना शुरू कर दिया। जब वो कॉलेज में थे तब चट्टोपाध्याय ने किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। और इनके जो पहले इंस्पिरेशन थे, इनके पहले प्रेरणा बनकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बने। बनकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास बनी। 1895 में चट्टोपाध्याय जी की माता का भी निधन हो गया। मातीलाल ने अपना जो भी पैतृक घर था 9 नवंबर 1896 में कहते हैं कि बेच दिया। और उसके बाद 1896 में मातीलाल ने एक घर किराए का लिया जो कि चंद्रशेखर सरकार का था। ये भागलपुर की एक बस्ती में था जिसे कि खंजरपाली नाम से जाना जाता था। इसके बावजूद शरद चंद्र ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इतने पैसे नहीं थे कि वो नई किताबें लेते और पढ़ाई करते, लेकिन जो किताबें सेकेंड हैंड होती थी, किसी से मांग लेते थे, उन्हीं किताबों में से वो पढ़ाई करते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फाइनल एग्जाम के लिए कॉलेज के फी जमा कर पाए, लेकिन फिर भी इनकी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी हो गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि शरद चंद्र के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा, बचपन की, जवानी की जो उम्र थी, वो भागलपुर में भी थी। 1894 में जब शरद चंद्र ने तेज नारायण जुबली कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट आने लग गया था। जब उन्होंने पढ़ी अ टेल ऑफ टू सिटीज और डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई ये किताबें थी, और इन किताबों को पढ़कर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को अंग्रेजी साहित्य में भी रुचि आने लगी। इसके बाद उन्होंने कई सारे पश्चिमी लेखकों को पढ़ा। जब इन्हें साहित्य में मजा आने लग गया था तो इन्होंने भागलपुर में एक चिल्ड्रंस लिटरेरी सोसाइटी बनाया। और ये सोसाइटी क्या करती थी कि जो भी हाथों से लिखे हुए मैगजीन होते थे उसे पब्लिश कराया जाता था। लेकिन 2 सालों के बाद ही शरद चंद्र की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि ये 20 रुपए नहीं पे कर पाए थे जो कि इनका एग्जामिनेशन फी था, जिसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई खत्म कर दी, बंद कर दी। और जब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और इनकी माता का भी निधन हो गया था 1895 में ही, तो इसके बाद शरद चंद्र अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लग गए थे, प्लेज में एक्ट करने लग गए थे, गेम खेलने लग गए थे, स्पोर्ट्स खेलने लग गए थे, और बहुत ही गंभीरता के साथ साहित्य को अपना समय देने लग गए थे। कहते हैं कि उसी वक्त इनके अंदर बहुत सारी किताबों की बीज पड़ चुकी थी, बोर दीदी, चंद्रनाथ और देवदास। और फिर अचानक इन्होंने लिखना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें ये आदत यूजलेस लगी, बेकार की लगी। और इसके बाद इन्होंने जो बोर दीदी लिखा था वो सन 1900 में पहली बार नोवेला के रूप में पब्लिश होकर आई। नोवेला आपको बता दूं कि उपन्यास से ये छोटी होती है पर कहानियों से बड़ी होती है, तो इसे नोवेला कहते हैं। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय चाहते थे कि वो कोई सन्यासी बन जाए। हालांकि वो सन्यासी बने या नहीं बने और इस दौरान उन्होंने क्या किया, इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय वापस आए और इन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया। इनकी बड़ी बहन की पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन इनके जो भी छोटे भाई बहन थे उन्हें अपने एक दोस्त के पास या फिर कुछ रिश्तेदारों के पास छोड़ा और वापस ये कलकत्ता चले गए अपना लक आजमाने के लिए। कलकत्ता में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने 6 महीने काम किया। हिंदी के पेपर बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे एक वकील के लिए। जनवरी 1903 में शरद चंद्र वर्मा चले गए, जैसे कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। लेकिन बर्मा जाने से पहले अपने अंकल के जिद करने पर इन्होंने अपनी लिखी एक कहानी मंदिर एक कहानी प्रतियोगिता में भेज दी। और हुआ ये कि इनकी कहानी मंदिर पहला इनाम जीत गई। 150 कहानियों में से पहला स्थान प्राप्त करना बहुत छोटी बात नहीं थी। हालांकि मंदिर इनके अंकल के नाम पर पब्लिश हुई। तो इस तरीके से एक 27 साल के लड़के शरद चंद्र की पहली छपी हुई कोई कहानी बाहर आई। हालांकि बाद में इनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कहानियां आई, जो कि इन्होंने बोर दीदी भी इन्होंने पब्लिश कराया था। सन 1900 में इन्होंने बोर दीदी पब्लिश कराया था, लेकिन उससे पहले ही मंदिर पब्लिश होकर आ गई थी। हालांकि ये इनके अंकल के नाम पर आई थी। शरद चंद्र ने बर्मा में 13 साल व्यतीत किए। वहां पर उन्होंने अलग अलग तरह के काम किया, लेकिन वहां पर भी इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा।
अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की किताबें वो उधार लाते और पढ़ते, कभी साइकोलॉजी, कभी सोशियोलॉजी, कभी फिलोसफी, इतिहास, न जाने कितनी सारी किताबें, कितनी तरह की किताबें उन्होंने पढ़ डाली थी। और इन्होंने तो थोड़ा बहुत पेंट करना भी शुरू कर दिया था। 1912 में इनके साथ एक दुर्घटना हुई, जिस घर में ये रह रहे थे वहां आग लग गई। इनकी जो भी पेंटिंग्स थी और इन्होंने एक उपन्यास लिखी थी चरित्रहीन, वो भी जल गई। हालांकि बाद में इन्होंने चरित्रहीन दोबारा लिखी और इन्होंने लिखना तो छोड़ दिया था, लेकिन 18 साल के बाद इन्होंने दोबारा लिखना शुरू किया जब इनके एक जान पहचान वाले ने एक छोटा सा मैगजीन शुरू किया। लेकिन कोई भी उस छोटे स्तर पर शुरू किए गए मैगजीन में लिखने के लिए तैयार नहीं था, तो उनके जान पहचान वाले ने शरद चंद्र को ढूंढा, क्योंकि उन्हें पता था कि शरद चंद्र भी लिखा करते हैं या लिखा करते थे। तो शरद चंद्र के पास आए और थोड़ा मनाने के बाद शरद चंद्र मान गए और उनके मैगजीन के लिए बर्मा से ही शरद चंद्र ने अपनी एक छोटी कहानी भेजी, जमुना, और ये कहानी बहुत पॉपुलर हो गई। और एक ही दिन में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी कहानी जमुना से फेमस हो गए। उसके बाद उन्होंने लगातार लिखना शुरू कर दिया और शरद चंद्र अपने बारे में मानते थे कि बंगाल में वो शायद इकलौते ऐसे लेखक थे जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1916 में उन्होंने अपने काम से रिज़ाइन किया और वापस कलकत्ता आ गए वर्मा से। 1916 में 40 साल के हो चुके थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हावड़ा आए और एक फुल टाइम राइटर बन गए। उनकी कहानियां पब्लिश हो रही थी, उनके उपन्यास के अंश सीरियल वाइज में पब्लिश होते थे मैगजीन में। कुछ कहानियों की बात करें तो जमुना के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था, बाद में नारायण, भारतवर्ष, और उसके बाद में उनकी कुछ उपन्यास भी पब्लिश होने शुरू हो गए थे मैगजीन में। और जब इन्होंने अपने पहले उपन्यास को पब्लिश कराया था तो उसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, या कहें कि पब्लिशर ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया था। और उन्होंने अपने दूसरे नॉवेल के लिए यानी कि विराज बाऊ के लिए 200 रुपये लिए थे और जो भी राइट्स थे पब्लिशर को बेच दिया था। और इनके जो भी लेखनी लोगों तक पहुँच रही थी वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे। और इसके बाद उनके किताबों से, उनकी कहानियों से, उनके नॉवेला से जो भी रॉयल्टीज मिल रहे थे वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को गरीबी से निकाल पाने का काम कर रहे थे। 1918 में नॉवल ब्रिज बाऊ को स्टेज पर परफॉर्म किया गया था स्टार थिएटर में। उसी साल जेम्स एंडरसन ने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, अ न्यू बंगाली राइटर। यहीं से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को अलग पहचान मिल गई थी। इस आर्टिकल ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को वेस्टर्न रीडरशिप तक पहुंचाया। इसके बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बहुत सारी किताबों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। हालांकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देवदास कहते हैं कि भागलपुर के कुछ किरदारों से प्रेरित था, कुछ अलग अलग किरदारों से बुनकर बनाई गई एक कहानी। भागलपुर बिहार के मंसूरगंज इलाके में नर्तकी का कोठी था और ये नर्तकी थी कालीदासी। इनका एक बड़ा कोठा था जिसे लगभग 45 साल पहले गिरा दिया गया, लेकिन आज भी इस कोठे से जुड़े, इस इलाके से जुड़े किस्से आपको स्थानीय लोगों से सुनने मिल जाएंगे। देवदास उपन्यास, जो कि 1901 में लिखा गया था और 1917 में प्रकाशित हुआ था, भागलपुर के पुराने लोग आज भी मानते हैं कि देवदास, पारो, चंद्रमुखी जैसे पात्र असल जिंदगी के असल इंसानों पर आधारित थे। मंसूरगंज की कालीदासी जो कि थी चंद्रमुखी, लोगों का कहना है कि वो बहुत सुंदर थी और शायद शरद उनसे प्रेम भी करते थे। कालीदासी के कोठे पे शरद और उनके दोस्त महादेव, जो कि शायद चुन्नी लाल हो गए उनकी कहानी में, अक्सर आते थे। और एक कहानी छिड़ती है कि महादेव का एक पर्स था, एक वॉलेट था, जो कि कालीदासी के पास रह गया था और कालीदासी ने उसे शरद को वापस दे दिया और कहा कि महादेव से कह दीजिएगा कि वो यहाँ इतने पैसे लेकर ना आया करे। और पारो की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि पारो धीरू नाम की एक लड़की थी जो शरद चंद्र की बचपन की दोस्त थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बंगाली टोला में राजबाला नाम की उनकी एक दोस्त थी, बाद में जिसकी शादी मुजफ्फरपुर में कर दी गई थी, और राजबाला से ही इंस्पायर्ड थी, प्रेरित थी पारो की जिंदगी, पारो का किरदार। राजबाला शरद चंद्र की बहुत अच्छी दोस्त थी और एक मान्यता तो ये भी है कि पारो असल में निरुपमा थी। ये एक सब जज की बेटी थी और
शरद चंद्र की बहुत अच्छी दोस्त। कहा जाता है कि शरद चंद्र सारी शाम फतेह जंग के मकबरे में बिताते थे, जहां शरद बांसुरी बजाते थे अपनी दोस्त के साथ बैठकर। यानी कि शरद सच में अपनी असल जिंदगी में बहुत रोमांटिक थे, तभी शायद देवदास को इतनी गहराई से लिखा था उन्होंने। तो अगली बार आप देवदास फिल्म देखें या कहानी पढ़ें, तो एक बार सोचिएगा जरूर कि ये कहानी जो लिखी गई थी किसी असल किरदार से प्रेरित थी, और शायद उनमें से किरदार खुद शरद चंद्र थे। 1901 में देवदास लिखा जा चुका था, 1917 में पब्लिश कर दिया जा चुका था, लेकिन उस वक्त जो बहुत नामी घराने के लोग हुआ करते थे वो देवदास पढ़ने से और अपने घर के बच्चों को पढ़ने देने से बचते थे, क्योंकि उसमें देवदास का किरदार ही कुछ ऐसा था, शराबी, नशे में मग्न रहने वाला हीरो और खुद की जिंदगी को खत्म कर लेने वाला हीरो। ऐसी कहानी को नहीं चाहते थे कुछ लोग कि बच्चे पढ़े, लेकिन बाद में ये कहानी घर घर तक पहुंची। न जाने कितनी फिल्में बन चुकी है। कहते हैं कि कुल मिलाकर भारत में देवदास पर करीब 18 फिल्म बन चुकी है, और राष्ट्रीय फिल्म आर्काइव को यानी कि NFAI को 1935 की पहली टॉकी देवदास फिल्म बांग्लादेश से मिली थी। पाकिस्तान में बनी ये फिल्म, बंगाली में बनी, हिंदी में बनी, आसामी में बनी, उर्दू में, मलयालम में, तेलुगु में, न जाने कितनी ही भाषाओं में देवदास के ऊपर फिल्म बनाई गई, और सारी फिल्में सुपरहिट रही, लोगों को पसंद आई। वो कहानी जिसे कि एक वक्त पे अपने लाइब्रेरी में रखने से लोग परहेज करते थे, आज लोगों के दिलों में है। वो कहानी जिसने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो कहानी जो कि बताती है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाता कितना गहरा है अंग प्रदेश के साथ। कहते हैं कि कहानी लिखने की जो बात है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में शायद उनकी नानी से भी आई थी। कुछ बंगला साहित्य प्रेमी मानते हैं कि जब शरद चंद्र छोटे थे, एक छात्र थे, तभी से वो अपने अध्ययन कक्ष को बहुत सजा कर रखते थे। अलमारी पर जिल्द लगी उनकी किताबें करीने से सजी रहती थी। इनके सबसे छोटे परदादा अघोरनाथ गांगुली के बेटे मनिंद्रनाथ भी शरद चंद्र के सहपाठी थे, और उनकी माँ कुसुम कामिनी बहुत ही पढ़ी लिखी और साहित्य प्रेमी महिला थी, और वो हर सप्ताह महिला मंडली में बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन जैसे बंगला लेखकों के उपन्यास पढ़ती, काव्य पढ़कर सुनाती थी। छोटे से शरद चंद्र भी उन्हें सुनते थे। एक बार रविंद्रनाथ की एक रचना सुनकर शरद चंद्र रो पड़े थे। आंसू पोंछते पोंछते वो गोष्ठी से बाहर निकल गए थे। साहित्य प्रेमियों का मानना है कि शरद चंद्र को साहित्य के प्रति रुचि जगाने में कुसुम कामिनी की इस गोष्ठी का अहम योगदान था। इसलिए नानी कुसुम कामिनी ही उनकी शायद पहली साहित्यिक गुरु थी, और उन्हीं के गोष्ठी में उन्होंने पहली बार रविंद्रनाथ की एक रचना सुनी, जिसे सुनकर वो रो पड़े, और बाद में उन्होंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी, और कहते हैं कि उनसे उन्होंने प्रेरणा भी ली। हमारे अंग प्रदेश की धरती पर केवल शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ही नहीं, बल्कि कई साहित्यकार आए और उन्होंने अपनी रचनाओं की प्रेरणा ली यहाँ से, और वो रचनाएं अमर हो गई, और इस तरह से हमारा अंग प्रदेश उनकी रचनाओं के हर शब्द में, हर अक्षर में अमर हो गया, और अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समा लिया। दोस्तों, आज अंग प्रदेश में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कहीं कोई चूक हो गई, कुछ छूट गया, इसके लिए माफी चाहूंगी। अभी के लिए मुझे यानी कि आपके होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ

0: टीनू, नीनू, राजू, पिन्नी
1: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
0: 11 दोस्त?
1: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
0: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
1: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
0: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
0: टीकी, तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
0: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
2: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
3: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
4: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
3: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
4: आपकी सेहत की बातें,
3: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
4: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
3: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
4: वो कहाँ पर?
3: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
4: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
3: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 MHz, ये है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, जी हाँ, FM ग्रीन। और आज फिर से हम हमारा जो खास प्रोग्राम है उन्नत कृषि लेकर आ चुके हैं, और आज हम एक खास विषय उर्वरक बचत हेतु धान की फसल में अजोला का प्रयोग, आज इसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो इस विषय के साथ आज हमारे बीच हैं डॉक्टर AK झा, जो कि जी हाँ वैज्ञानिक हैं, मृदा वैज्ञानिक हैं, सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि अजोला क्या है।
5: अजोला एक फर्न है, जलीय फर्न है। वास्तव में इस फर्न की पत्तियों में एनाबिना अजोली नाम का एक नीलहरित शैवाल रहता है, यानी कह सकते हैं कि इस फर्न का और नीलहरित शैवाल का एक सिम्बियोटिक एसोसिएशनशिप है, तो यानी सहजीवी व्यवस्था है। और इस नीलहरित शैवाल के कारण ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है।
3: और अजोला को किस किस काम के लिए हम प्रयोग मिला सकते हैं?
5: बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ दिया। वास्तव में अजोला एक ऐसा फर्न है जिसका प्रयोग आप खेती में उर्वरक बचत के लिए कर सकते हैं, खास करके धान की फसल में। दूसरी बात, यदि इसको आप प्याज में करके देखें, तो यहाँ पर करके देखा गया है कि प्याज की फसल में, खास करके खरीफ प्याज में, सड़ने की ज्यादा समस्या होती है, और यदि हम अजोला का प्रयोग करते हैं तो उसमें सड़न कम होता है, उत्पादन बढ़ता है, और इसका जो रंग है वो ज्यादा बढ़िया होकर के आता है। तो यह हमने देखा है कि इसमें खरीफ फसल, खरीफ ऑनियन में, खरीफ प्याज में ये फायदा कर सकता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग लोग जो पशुपालन है उसमें भी करते हैं, पशुओं के आहार के लिए। और यह यहाँ पर शोध करके देखा गया कि यदि हम 1 किलो सुबह और 1 किलो शाम यदि गाय को अजोला देते हैं, तो उसमें 8 से लेकर 15.6% तक दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। साथ ही साथ यह बताएं कि कई देशों में इसको लोग पशु आहार के अतिरिक्त, पशु आहार मतलब कि बकरी का के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मुर्गी के आहार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं इसको मनुष्य भी भोजन करते हैं। ये पेपर में है, ये हम लोगों ने नहीं करके देखा है, लेकिन यह जो पेपर में है, पेपर में यह है कि हाँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा पाया जाता है, 25-35% प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह मनुष्य आहार में भी देखा गया है, और साथ ही साथ एक शोध में तो यह भी देखा गया कि यदि हम कैंसर पेशेंट्स को या HIV पेशेंट्स को यदि हम देते हैं तो उसकी रिकवरी तेज होती है। लेकिन इस पर हम बहुत ज्यादा बल नहीं देंगे, हम तो कृषि के हैं, तो कृषि में हमने बताया कि आप खेती में प्रयोग कर सकते हैं, पशुपालन में पशु आहार के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं।
3: अभी आपने बताया कि धान की फसल में उर्वरक बचत के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो कितने उर्वरक की बचत होती है?
5: देखिए, यहाँ जो हम लोगों ने शोध करके देखा है, जिस पर टेक्नोलॉजी भी विश्वविद्यालय का है, कि यदि हम अजोला का ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो उससे जो भी उस धान की अनुशंसित नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास की मात्रा है वह आपको आधी की बचत हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, यदि आपको 6,000 रुपया उर्वरक के खरीद पे लगता है तो 50% नाइट्रोजन, 50% फॉस्फोरस और 50% पोटास उसका कम कर दीजिए, जिस पर कि मोटा मोटी 2,500-3,000 रुपये की बचत आपकी प्रति हेक्टेयर हो सकती है यदि आप इसमें प्रयोग करते हैं। तो
3: धान की फसल में जो अजोला का प्रयोग किया जाता है, तो अजोला का उत्पादन हम कैसे करेंगे और धान की फसल में इसका उपयोग कैसे करेंगे?
5: ये बड़ा महत्वपूर्ण और समीचीन प्रश्न है। वास्तव में क्या है कि अजोला की आवश्यकता ज्यादा मात्रा में होती है। यदि आप ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो 10 टन पर हेक्टेयर की अनुशंसा है, तो 10 टन पर हेक्टेयर उत्पादन करने में तो टफ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो खेत में ही 2 मीटर गुने 10 मीटर की क्यारी बना लेते हैं, बरसात में तो ऐसे भी पानी रहता है, तो उसमें आप मेड़ बना दें और वहां पर उस क्यारी में आपको करना यह है कि इसमें पानी आपको रखना होगा, कम से कम 10 सेंटीमीटर पानी हर समय आपको रखना पड़ेगा। पानी रखने के बाद यहां पर आपको क्या है कि ये 1.5 किलो लगभग गोबर, यानी कहने का तो प्रत्येक क्यारी में आप 3 किलो कर लीजिए, क्योंकि देखिए 10 × 2 यानी कितना हो गया, 20 स्क्वायर मीटर हो गया। तो उसमें 3 किलोग्राम गोबर को लेकर के आप 20-25 लीटर पानी में घोल करके, और जो चलनी आता है जो जिसे बालू आलू छानते हैं उसे छान करके उसको आप फैला दीजिए उसमें। ये करने के बाद उसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट ये आपको 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको डालना चाहिए। ये डाल करके इसमें अजोला डाल देते हैं लगभग 200 ग्राम, आप फ्रेश अजोला जो बिल्कुल ताजा है उस अजोला को उसमें डाल देते हैं, और या आप देखेंगे कि यदि आप 2-3 हफ्ते तक यह पानी का स्तर आपने बरकरार रखा तो आपको ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो ढक जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसके लिए आपको करना क्या है, क्यारी बना लेना है 10 मीटर × 2 मीटर का, उसमें आपको 3 किलोग्राम गोबर को 20-25 लीटर पानी में घोल करके छान करके उसमें डाल देना है, उसके बाद 5 ग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल देना है, 200 ग्राम अजोला डाल देना है, 10 सेंटीमीटर पानी को आपको मेंटेन रखना है हर समय, और वह आप मेंटेन किए रहेंगे तो 2-3 हफ्ते में पूरा ये कवर हो जाएगा और पर्याप्त मात्रा में होगा। तो जितने एरिया में आपको धान की फसल करनी है उतने एरिया के हिसाब से आप क्यारी बना करके वहां पैदा कर सकते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि बहुत सारे किसान हैं कि इतना अजोला पैदा नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरा भी तरीका है। वो दूसरा तरीका है डुअल क्रॉपिंग, कि डुअल क्रॉपिंग में आप क्या करते हैं कि जब 1 हफ्ते का आपका जब धान रोपने के बाद 1 हफ्ते का हो गया तो उसमें ही आप जस्ट उसका 1/10 भाग, यानी आप 10 टन डाल रहे थे तो 1 टन के हिसाब से आप वहां पर अजोला डाल देंगे, और डाल करके उसमें जो आपका फॉस्फोरस की मात्रा है वो लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसको बढ़ा देंगे, और ये बढ़ा करके पानी का स्तर 2-3 हफ्ते तक आप मेंटेन रखेंगे तो देखेंगे क्या कि ये अजोला उस सरफेस को ढक लिया है। उस समय क्या करेंगे आप कि 2-3 हफ्ते के बाद उस पानी को कम कर देंगे तो ये सब जमीन पकड़ लेगा और ये बहुत जल्दी सड़ करके उसको पोषक तत्व देने का काम करना शुरू कर देता है। तो इस ढंग से यदि आप करते हैं तो इसको कहते हैं डुअल क्रॉपिंग। और वो पहला वाला जो बताया था वो ग्रीन मैन्योरिंग था, कि आपने पैदा किया और वहीं पर जैसे आप ढेंचा पलटते हैं वैसे ही आप इस अजोला को पलटेंगे, और अजोला को पलट करके अब उसके बाद फिर आप रोपनी कर देंगे और ये सारी प्रक्रिया होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा अजोला तेजी से बढ़े तो उसमें चाहे वो क्यारी आप बनाए हुए हो चाहे खेत में डाल रहे हो, तो वह जो मैंने 20 केजी पर हेक्टेयर आपको कहा था उसको आप 3 हिस्सों में बांट करके हफ्ता भर के इंटरवल पर उस SSP को दीजिएगा। अब आप ये प्रश्न पूछिएगा कि भाई एसएसपी पर इतना जोर क्यों, तो वास्तव में क्या है कि अजोला फास्फोरस थोड़ा ज्यादा रिक्वायर करता है, तो फास्फोरस आप यदि उसमें डालते हैं तो अजोला की बढ़वार तेजी से होगी और आपको अजोला का ज्यादा बायोमास मिलेगा। वैसे अजोला तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2 से 5 दिन में जब वातावरण उपयुक्त है तो 2 से 5 दिन में यदि आपने 1 किलो अजोला डाला तो वो 2 केजी हो जाएगा, लेकिन बिहार में इसका ज्यादा प्रयोग पशुपालन में हो रहा है। तो ये तरीका है, आप पशुपालन में जो आप करते हैं उसके लिए तो छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जहां पर आपका फार्म है, जहां पर जानवर है उसी के बगल में, और वहीं पर आप इसको पैदा करते हैं।
3: तो श्रोताओं, आज हम जान रहे थे उर्वरक बचत हेतु धान की फसल में अजोला का प्रयोग, और इसमें बहुत सारी बातों पर डॉक्टर साहब ने आप सभी का जो ध्यान है वो आकर्षित किया। धान की फसल में प्रयोग करने वाले अजोला का उत्पादन आप कैसे करेंगे और इसका उपयोग कैसे करेंगे, साथ ही उर्वरक बचत किस तरीके से आप करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन आप सभी से एक नए विषय के साथ हम जुड़ेंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। नमस्कार। उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हमारा कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो उड़द की खेती करते हैं। उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, जो एक प्रमुख दलहनी फसल है, लेकिन कई बार इस फसल में कीट आक्रमण कर देते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। तो ये कीट कौन कौन से होते हैं, ये फसल को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
3: तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही मूल बातों के साथ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि उड़द के प्रमुख कीट कौन कौन से होते हैं?
6: अच्छा, उड़द के प्रमुख कीट में से 4 कीट बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख है, जैसे माहू जिसको हम लोग एफिड कहते हैं, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई कहते हैं, जैसीड उसको, वो एक लीफ ऑफर है, होते हैं, और एक है फली छेदक जिसको पॉड बोरर कहते हैं। तो माहू एक बहुत ही छोटे मुलायम शरीर वाले कीट होते हैं जो हरे या काले रंग के होते हैं। सफेद मक्खी भी छोटे होते हैं, लेकिन ये सफेद पंख वाले कीट होते हैं जो पत्तियों के नीचे पाए जाते हैं। और जैसीड जो लीफ ऑपर होते हैं, इसके हल्के इसका जो रंग होता है वो हल्के हरे रंग के होते हैं और बहुत सक्रिय होता है, तथा पत्तियों का रस चूस के वो नुकसान पहुंचाता है। और लास्ट में जो मैंने बोला फली छेदक जो है, इसका लार्वा फूलों में और फलियों में छेद करके खाते हैं।
3: जी, तो सर, ये कीट फसल को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं?
6: अच्छा, तो माहू और सफेद मक्खी, ये जो दो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो पत्तियों और कोमल भागों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ जाते हैं, पौधा कमजोर हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है। ये दोनों ही कीट शहद जैसे पदार्थ उत्सर्जन करते हैं पत्तियों में, या तो जहां से वो रस चूसते हैं, जिससे सूटी मोल्ड विकसित हो जाता है। और जैसीड जो है वो पत्तियों से रस चूसकर खाता है, और इसके वजह से पत्तियों के किनारे से पीला पड़ना शुरू हो जाता है, और फली छेदक फूल और फलियों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे उत्पादन घटता है।
3: तो सर, फसल के किस अवस्था में ये कीट अधिक दिखाई देते हैं?
6: तो माहू या लाही एवं सफेद मक्खी और जैसीड प्रारंभिक वृद्धि अवस्था से लेकर फली बनने तक पाए जाते हैं, और फली छेदक फूल आने और फली बनने के समय अधिक दिखाई देते हैं।
3: और इससे बचने का कोई तरीका, जिसे हम शुरुआती अवस्था में ही कीट आक्रमण का पता लगा सके और अपने फसलों को बचा सके?
6: बिल्कुल, हम लोग वो पता लगा सकते हैं। जैसे किसानों को सबसे पहले जो करना चाहिए, वो नियमित रूप से अपने खेत का निरीक्षण करना चाहिए, पत्तियों के निचली भाग को खास करके उसको जांच करना चाहिए, ताकि उसको ये दिखाई पड़े कि सफेद मक्खी है या जैसीड है, अगर दिखाई पड़ते हैं तो प्रारंभिक पहचान संभव है और ससमय नियंत्रण संभव है।
3: यानी कि अगर समय पर पहचान कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है।
5: बिल्कुल।
3: और सर अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन कीटों का प्रबंधन कैसे करें।
6: अच्छा, तो ये सारे जो चार कीड़ों के बारे में हमने बात किया अभी, उन सारे चार कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए हम लोगों को समेकित कीट प्रबंधन अपनाना चाहिए। और समेकित कीट प्रबंधन में हम लोग रासायनिक नियंत्रण को आवश्यक होने पर ही हम लोग रासायनिक नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं। तो और कौन कौन से उपाय है हम लोगों के पास? जैसे हम लोगों के पास स्वस्थ बीज का उपयोग करना संभव है, खेत की स्वच्छता मेंटेन करना संभव है, ससमय बुआई करना संभव है, संतुलित उर्वरक उपयोग करना, प्रतिरोधी किस्में हम लोगों को लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रु उनका संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ यांत्रिक नियंत्रण विधि भी है हम बताएंगे, और कुछ जैविक कीटनाशी भी है। लेकिन हम किसान भाइयों को बोलेंगे कि रासायनिक नियंत्रण जब आपको बहुत जरूरत है तभी आप रासायनिक नियंत्रण आपका उसका उपयोग करेंगे। तो स्वस्थ बीज का उपयोग कैसे करेंगे? हम लोग प्रमाणित बीज को लें और उस बीज को उपचार करें, और उपचार करने के लिए हम लोग इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उसका 5 ml प्रति किलोग्राम बीज, इसके मतलब इस दर से हम लोग को उसको लेके उपचार करें। खेत की स्वच्छता बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। फसल अवशेष और खरपतवार जो आपका खेत में रहता है उसको आप निकालें और गहरी जुताई करें, समय पर बुआई करें, नाइट्रोजन का अधिक उपयोग ना करें। नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करेंगे तो वो जितना भी कीड़े के बारे में हमने बात किया वो सारे उसका पॉपुलेशन बढ़ेगा।
3: अच्छा।
6: आप अनुशंसित मात्रा में नाइट्रोजन का उपयोग करें। कुछ प्रतिरोधी किस्में हैं जैसे पंथ U30, प्रताप उरद 1, ये दो किस्में वो जो रस चूसने वाला कीड़े होता है उसका उससे वो रेजिस्टेंट है। और कुछ यांत्रिक नियंत्रण जैसे आप पीला चिपचिपा ट्रैप, हम लोग येलो स्टिकी ट्रैप बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक एक मतलब एक प्रति एकड़ में आपको 8 से 10 ट्रैप लगाना होता है। और जैविक कीटनाशी में नीम तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम तेल जो बाजार में मिलता है उसका 1500 ppm 3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से आपका ये जो चारों कीड़े हैं उससे आपको बचाव मिल सकता है। और कुछ रासायनिक नियंत्रण जिसके बारे में हमने पहले ही बताया, जब बहुत जरूरत है तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो रस चूसने वाला कीड़ों के लिए आप थायामिथोक्साम 25 WG उसका इस्तेमाल करेंगे। उसका इस्तेमाल करने के लिए जो डोज होना चाहिए वो होना चाहिए 0.25 g प्रति लीटर पानी में। जो छेदक कीड़े होते हैं मतलब फल छेदक या फूल में भी छेद करते हैं, उसके लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG उसका 0.4 g प्रति लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करेंगे। और आपके नज़दीक में जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई हमारा कोई कॉलेज हो वहाँ पे जो विशेषज्ञ है उनका सलाह, फसल बुआई करने से पहले या बीच में भी आप उसका सलाह आप लेंगे।
3: जी, तो इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो उड़द की फसल को बहुत अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप समय पर पहचान कर लें, उसके बाद और उससे पहले

0: मेंशन किया, उसको इस्तेमाल करने से आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो आइए किसान भाइयों और बहनों, हम लोग IPM यानी कि समेकित कीट प्रबंधन हम लोग अपनाएं और पर्यावरण को रक्षा करें।
1: जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद है कि हमारे आज के इस कार्यक्रम से जो किसान भाई बहन उड़द की खेती करते हैं उन्हें बहुत सहायता मिली होगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: ऐसी ही उपयोगी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि
3: क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
4: जी
3: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
4: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
3: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।
2: उन्नत कृषि।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं जायद में सब्जियों के प्रमुख कीटों के बारे में, उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इस बारे में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ऋचा कुमारी, जो हैं कीट विज्ञान विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद उमा जी।
1: मैम सबसे पहला सवाल कि जायद में जो उगाने वाली सब्जियां होती है वो कौन कौन सी होती हैं?
6: जी नमस्ते किसान मित्रों, तो ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। इस समय जो किसान मित्र हैं वो भिंडी, खीरा, लौकी, नेनुआ, करेला, तरबूज, खरबूज, ये सारी सब्जियां जो है वो लगाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि गर्मी के साथ साथ कीटों का हमला भी बहुत तेज होता है, तो अगर वो समय पर रह के इसकी पहचान रोकथाम करे तो नुकसान से बचा जा सकता है।
1: और मैम इन सब्जियों के जो प्रमुख कीट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
6: देखिए अगर हम भिंडी की बात करते हैं तो इसमें जयसिड है, सफ़ेद मक्खी है, उसके बाद फल एवं तना छेदक, ये कीट जो है वो प्रमुख होते हैं। फिर अगर हम बात करें कद्दू वर्ग की सब्जियों की तो उसमें खीरा है, लौकी, नेनुआ, ये सब जो आता है, करेला, तो इसके जो प्रमुख कीट हैं वो है आपको चेपा, जिसको कि हम लाही या माहू भी कहते हैं। इसके बाद थ्रिप्स है और एक बहुत अत्यंत मुख्य हम कीट मान सकते हैं फल मक्खी, क्योंकि वो बहुत नुकसान पहुँचाता है, तो एक वो भी आता है। इसके बाद हम खरबूज और तरबूज की बात करें तो उसमें चेपा, सफ़ेद मक्खी और चूसक कीट, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं।
1: और इन कीटों से जो क्षति होते हैं उनके लक्षण कैसे हो सकते हैं, कैसे होते हैं?
6: देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो लक्षण होते हैं उन्हीं से हम समझ सकते हैं कि कौन से कीट हैं और फिर उसका रोकथाम कैसे करें। तो मैं सबसे पहले बात करूँगी फल एवं तना छेदक कीट की। इसमें क्या होता है कि जो इसकी पौधे की जो वानस्पतिक वृद्धि होती है उसके दौरान जो ये कीट हैं उनके लार्वा होते हैं वो अंकुरों को क्या करते हैं, खोदते हैं, और उससे क्या होता है कि गांठों पर प्रभाव पड़ता है।

0: और उसमें होता क्या है, अंत में अंकुर गिर जाएंगे। उसके बाद हम संक्रमण की बात करें तो संक्रमण बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे पौधे झड़ जाते हैं और जो पत्तियां हैं वो पूरी मर जाती हैं, और उस जो अगर दूसरे युवा पौधे होते हैं वो भी आपको मुरझा जाएंगे। हाँ, इसके साथ ही साथ केंद्रीय शाखाओं को भी काफी नुकसान पहुंचता है। बाद में यह फल में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर ये फल में प्रवेश कर गए तो उससे काफी गंभीर नुकसान होता है। और अब फिर मैं बात करूं चूसने वाले कीट में, जिसमें कि अभी मैंने बताया चेपा आता है, ये थ्रिप्स है, उसके बाद जैसिड है, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो प्रारंभिक चरण होती है इनके इनके खाने से, चूसने से, उनमें पत्तियां जो है उसमें विकृति आ जाती है और उसके बाद वो मुड़ जाएगी और अंततः वो संक्रमित हो जाती है। जो चेपा होता है, चेपा कीट के कारण जो प्रभावित पत्तियां हैं वो काफ़ी पीली पड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं, और अंत में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं पूरी तरह से मुरझा गई हैं तो पौधा क्या हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाता है। ये सारी चीज़ें चूसने वाले कीट के नुकसान के लक्षण हैं। फिर मैं बहुत महत्वपूर्ण एक कीट की बात कर रही हूँ, जो फल मक्खी है, तो उसके जो शिशु हैं जिसे हम मैगट भी कहते हैं, वो लगभग पके हुए जो फल होता है उसको वो खाता है और उसके बाद उससे नुकसान होता है, अंत में उससे भी क्या होता है, संक्रमण हो जाते हैं और जो फल हैं वो खाने लायक नहीं बचते हैं। कुछ छोटे जो फल होते हैं उसमें वो फिर अचानक पीले होकर गिरने लग जाते हैं। इसके बाद उससे ये भी होता है कि जो फल में सड़न होती है वो हो जाती है, छेद हो जाते हैं, और अंत में उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं। अगर मैं फिर बात कर रही हूँ आपको जैसिड की, तो जैसिड में भी जो पत्तियाँ हैं वो बिल्कुल पीली पड़ जाती है और वो नीचे की तरफ मुड़ जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है इसका, इससे इसकी पहचान भी हो सकती है। और इसमें जो पत्तियाँ हैं उसमें चिपचिपा पदार्थ आपको दिखाई देगा कि चिपचिपा सा पदार्थ है, और इसमें भी आपको जो फल होंगे उसके बाद वो बहुत ही छोटे से हो जाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और बिल्कुल खोखले पड़ जाते हैं। ये सारे जो प्रमुख कीट हैं उनके ये नुकसान के लक्षण आपको दिखाई देंगे।
1: और मैम, इन कीटों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: सबसे जरूरी यही है कि इनका समेकित प्रबंधन करना चाहिए, मतलब कि आपको सारी जितने भी कारक हैं, जितने भी विधियां हैं नियंत्रण के जो भी हैं, उन सबको आपको साथ में लेकर के इसका नियंत्रण करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी व्यवहारिक विधि की। व्यवहारिक जो विधि है उसमें होता क्या है कि सबसे पहले किसान मित्रों को ध्यान रखना है कि प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए उनको। हाँ, उसके बाद एक और बात है, अधिक नाइट्रोजन खाद से उनको बचना चाहिए, वो ज्यादा ना दें। फिर जो खेत होते हैं उसको साफ रखा करें। इसके अलावा संतुलित सिंचाई भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं कहूंगी कि जो खरपतवार का जो नियंत्रण है वो समय समय पे किसान मित्रों को करना चाहिए। और इसके अलावा जो ठहराव होता है, जो जल का ठहराव, उसको नहीं करना चाहिए खेतों में, उस चीज़ से बचना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो है व्यवहारिक विधि। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी यांत्रिक रोकथाम की या फिर यांत्रिक नियंत्रण की। तो यांत्रिक नियंत्रण में क्या होता है, आप सबसे पहले तो पीला चिपचिपा फंदे का इसमें प्रयोग करना चाहिए। पीला चिपचिपा फंदा लाहू को, लाही जो लाहू या फिर माहू जो भी कहते हैं, चेपा भी इसको हम कहते हैं, तो उस सब को क्या करता है, आकर्षित करता है और उससे ये नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा नीला चिपचिपा फंदे का प्रयोग भी थ्रिप्स के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। हाँ, इसके अलावा प्रकाश प्रपंच जो है वो खेतों में जरूर से जरूर लगाएं। प्रकाश प्रपंच से जो छेदक होते हैं वो आकर्षित होते हैं। इसके बाद मैं फल मक्खी ट्रैप की बात कहना चाहूंगी, इसका उपयोग भी करना चाहिए। हाँ, एक और जरूरी आवश्यक बात कि इसमें जो ल्यूड होता है उसको 15 से 20 दिनों में बदल देना चाहिए। ये सारी के अलावा जो है, अगर शिशु जो होते हैं किसी छेदक के, तो उनको हाथों से पकड़ कर भी नष्ट किया जा सकता है। ये सारी विधियां यांत्रिक में आती है। उसके बाद एक है जैविक विधि, जो बहुत ही जरूरी विधि है। इसमें किसान मित्रों को क्या करना है, तो किसान मित्रों को इसमें जो भी मित्र कीट हैं उनका संरक्षण करना है, उनका संवर्धन करना है। जैसे आपको लेडी बर्ड विंग हो गया, उसके बाद ग्रीन लेस विंग है, ये सब जो है ना कीट, जैसे कि चेपा हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, इन सबको ये सब खाते हैं, इसलिए ये हमारे मित्र कीट हैं। इसके अलावा परभक्षी हुए, परजीवी हुए, इन सब का संरक्षण बहुत ही जरूरी होता है। सबसे अंत में रासायनिक नियंत्रण की मैं बात करूंगी। जो रासायनिक नियंत्रण होता है वो सबसे अंत में ही इसका हम उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें भी अगर हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है,

0: जैविक कीटनाशक में जैसे कि निबोली सत हो गया 5% या फिर नीम अर्क हो गया, इस सब का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। इसके अलावा बीटी की जो कर्स्ट की प्रजाति होती है वो 1 किलोग्राम 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव किया जा सकता है। फिर हम अगर बात करें इसके अलावा कुछ कीटनाशक की, तो इसमें सबसे पहले मैं इंडोक्सा कार्ब की बात करूंगी। इंडोक्सा कार्ब जो है 14.5% SC 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये घोल कर दिया जा सकता है, या फिर स्पाइनोसैड होता है 45% SC ये आपको 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में ये भी आपको घोल कर छिड़काव किया जा सकता है। फिर अगर हम रस चूसक, ये भी जो मैंने बताया वो बताया छेदक के लिए, फिर अगर रस चूसक की बात करें तो उसमें ब्यूप्रोफेजिन एक नया है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। ब्यूप्रोफेजिन 25% EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या फिर एसिटामीप्रिड है, एसिटामीप्रिड जो है वो सफ़ेद मक्खी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो एसिटामीप्रिड 20% SP ये आपको 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर इनका छिड़काव करने से भी रस चूसक कीट जो है वो आपको कम मिलेंगे, मर जाएंगे, तो इससे आप अपने नुकसान से बच सकते हैं इस तरह से। और ये रासायनिक विधि का प्रयोग बिल्कुल अंत में ही करना चाहिए। इसके अलावा मैं 3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोलना चाहूँगी अपने किसान बंधुओं को। पहला तो ये कि सुबह या शाम वो छिड़काव करें, और उसके बाद खेतों की नियमित रूप से निगरानी करें, और तीसरी जो सबसे अंतिम बात है वो ये है कि तीसरी बात में आप सबसे अंत में आप जितने भी रासायनिक मैंने आपको विधि बताई है उनका प्रयोग करें, मतलब कीटनाशी सबसे अंत में, इसके अलावा जो भी विधि है वो आपको पहले करनी चाहिए।
1: तो किसान भाई बहन, उम्मीद है कि मैम के द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाकर आप जायद सब्जियों की फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी।
1: अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। तो आज हम भिंडी की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है डॉक्टर शिरीन अख्तर से, जो है सब्जी विज्ञान विभाग से। आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद उमा। भिंडी एक अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है। भिंडी जो है टमाटर, बैंगन, मिर्च आदि के जैसे वर्ष भर हो सकती है। वर्ष में हम लोग इसको 2 बार तो आसानी से उगा सकते हैं, कभी कभार 3 बार भी उगा सकते हैं। और भिंडी हम लोग देखते हैं ये मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, इसका भरपूर मात्रा में ये सब पाया जाता है। साथ साथ में जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये भी बहुत सारा पाया जाता है। और हमारा देश भारतवर्ष जो है भिंडी के जो है इसका फलन के लिए बहुत इस हमारा जो जलवायु है इसके अनुकूल है, और इसीलिए जो है हमारा देश अभी पूरे विश्व में जो है भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। और भिंडी जो है पूरे साल में 2 बार से लेके 3 बार भी हम उगा सकते हैं, गर्मियों में भी उगा सकते हैं, तथा जो मुख्य फसल भिंडी का है वो खरीफ मौसम का है, यानी कि बरसाती जो फसल है वही भिंडी का मुख्य फसल है। और इसमें जो है भिंडी को उगाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे उन्नत किस्म हैं, जैसे IIVR वाराणसी से डेवलप किया गया जो किस्म है काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, इसके साथ साथ में काशी सहिष्णु, काशी वर्धन, काशी सातधारी, काशी पराक्रम, काशी उत्कर्ष, काशी चमन, काशी लीला, ये जो है ये सारे जो है हरे रंग में, जो हमारा भिंडी है वो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हरे रंग में मिलता है, तो ये सारे किस्म हरे रंग की है। साथ साथ में एक नई किस्म काशी लालिमा भी जो है वो लाल रंग में उन्नत किस्म तैयार किया गया है IIVR द्वारा। ये इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे संकर किस्म है, जो कि काशी वैरव है, काशी सृष्टि, शीतला ज्योति, शीतला उपहार, सोनाक्षी, शक्ति, ये सारे महत्वपूर्ण संकर किस्म है।
1: मैम, बुआई से पहले खेत की तैयारी कैसे करें?
3: खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी सब्जी के फलन के लिए। तो सर्वप्रथम भिंडी के लिए खेत की प्रारंभिक जुताई जो है मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं, और उसके बाद में 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से कर लेते हैं, और दूसरी जुताई जिस समय किया जाता है उस समय पर जो है 150 से 200 क्विंटल अच्छे से सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट जो है खेत में अच्छे से मिलाया जाता है, और अंतिम जुताई के बाद में जो है पाटा चलाकर खेत को अच्छे से समतल बनाया जाता है।
1: बुआई का तरीका क्या है और बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
3: जो गर्मा भिंडी है जिसको कि हम लोग फरवरी के महीने में सामान्यतः लगाते हैं, उसके लिए बीज का दर लगभग 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए ज़रूरी होता है। और अभी जो बरसाती मौसम के जो भिंडी है, जो खरीफ भिंडी अभी लगने वाली है, उसके लिए जो है 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होता है। और यहीं पर अगर भिंडी का संकर किस्म हम लोग लगाते हैं तो लगभग लगभग 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज से ही वो काफ़ी होता है एक हेक्टेयर लगाने के लिए। और साथ साथ में जो है खरीफ जो फसल है जो अभी हम लोग लगाने वाले हैं, तो ये मई के लास्ट जो है मई महीने के अंत से लेके जुलाई महीना भर हम लगा सकते हैं। और जो गर्मा भिंडी है उस भिंडी को जो है हम लोग लगभग लगभग फरवरी महीना भर लगाते हैं। और जो हम लोग बीज जब लगाएंगे तो बीज से लगाने के पहले जो है बीज को उपचार कर लेना चाहिए, और 2 से 3 ग्राम का कैप्टान या फिर 1 ग्राम बविस्टिन दवा जो है प्रति किलोग्राम बीज के दर से हम लोग अगर इसका उपचार कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। साथ साथ में जो भिंडी जो हमारा फसल है ये सीधी बुवाई करते हैं हम खेत में, तो बुवाई के पहले बीज को 24 घंटा के लिए हम पानी में भिगो कर रखते हैं और बीज जो है फूल जाते हैं, तो उस फूले हुए बीज को हम खेतों में लगाते हैं। खेतों में लगाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि खेत में हल्की हम सिंचाई देके जब नमी रहेगा उसी खेत में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, तो इसको कतारों में लगाते हैं। जो खरीफ की भिंडी फसल है इसको कतार से कतार के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी बना के हम लोग कतार बनाते हैं, और कतारों में जो है 45 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखते हैं और वैसे करके भिंडी लगाते हैं। और अगर यही गर्मा भिंडी का फसल होता है तो उस समय पे हम लोग लगभग 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और भिंडी के जो दोनों पौधा है उस पौध के बीच का दूरी उस समय पे गर्मा के समय पे 30 सेंटीमीटर रखते हैं। खास करके गर्मा के समय पे हम देखते हैं अंकुरण थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए एक स्थान पर जो है 2 से 3 बीज की बुवाई करते हैं, परंतु संकर किस्मों का बीज क्योंकि महंगा होता है इसीलिए एक स्थान पर एक ही बीज की बुवाई किया जाता है।
1: मैम, खाद और उर्वरक की क्या मात्रा होनी चाहिए?
3: भिंडी के फसल के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा जो है अच्छे से मिट्टी जांच करने के उपरांत ही करना चाहिए। सामान्यतः जो हम देखते हैं अच्छी फसल लेने के लिए 150 से 200 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट या फिर 60 से 80 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर में हम लोग उसको उपयोग करते हैं। साथ साथ में 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फेट एवं 80 से 100 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसकी आधी मात्रा तथा फॉस्फेट एवं पोटाश की पूरी मात्रा जो है अंतिम जुताई के समय पे खेत पे मिला देना चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसका जो आधा शेष रहता है वो पौध जमने के बाद में 25 से 30 दिन पे, और दूसरी बार जो है बाकी आधा शेष जो है 50 से 55 दिनों के बाद में पौध में जड़ के पास में टॉप ड्रेसिंग के तहत से हम लोग उसको डालते हैं। इसके अलावा में जो है भिंडी में सूक्ष्म पोषक तत्व का भी महत्व है, और इसमें जो है कैल्शियम और बोरोन का अगर हम लोग पर्णीय छिड़काव करते हैं तो इससे उपज का क्षमता बढ़ता है, और पादप वृद्धि नियामक का भी हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और इसमें जो है जिबरेलिक एसिड और ट्राई कैंटनॉल का हम लोग प्रयोग करते हैं, इससे जो है अधिक उपज प्राप्त हो सकता है। और खास करके ट्राई कैंटनॉल का उपयोग गर्मा भिंडी में अगर हम लोग करते हैं तो इसमें उपज काफ़ी बढ़ता है।
1: मैम, निकाई गुड़ाई और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
3: सामान्यतः जो है हम लोग भिंडी को जब लगाते हैं तो थोड़ा बहुत नमी जब रहेगा खेत में, एक हल्का सिंचाई देके जब जिस खेत में नमी रहेगा उसी में हम लोग भिंडी को लगाते हैं, बुआई करेंगे, और उसके बाद में जो है भिंडी का जो सिंचाई है वो लगभग लगभग हम लोगों को अगर बरसाती मौसम है तो देखना पड़ेगा कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके हिसाब से पानी देना पड़ेगा। लगभग लगभग 10 से 12 दिन में एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन बारिश को देखते हुए। और अगर गर्मा भिंडी है तो उसमें जो है हफ्ते में एक बार तो पानी देना बहुत आवश्यक हो जाता है। और सामान्यतः हम देखते हैं सिंचाई करने के 3 से 4 दिनों बाद में जब नमी अच्छा रहता है उस समय पे निराई गुड़ाई करने से सारा खरपतवार नष्ट हो जाती है। और शुरुआती फेज में जैसे जो फसल जब 40 से 45 दिन तक रहता है उस समय तक अगर हम लोग खरपतवार से अच्छे से फसल को बचा लेते हैं तब जो है उपज इसमें अच्छा मिलता है।
1: मैम, अब बात करते हैं फल की तुड़ाई की, तो तुड़ाई कैसे करनी चाहिए और उपज कितनी होती है?
3: जब भिंडी का फल लगभग लगभग 6 से 7 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फल जो है कोमल रहता है और हल्के हरे रंग से या फिर गहरे हरे रंग, जैसे उसका कलर जो रंग है वैरायटी वाइज जैसे रंग है उस रंग का होता है, उस समय पे फल की तुड़ाई किया

0: करते हैं, सही से खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर से 120 से 150 क्विंटल हरे फल की उपज हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यही अगर संकर किस्म है तो उसमें 170 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से भी उपज का हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने भिंडी की खेती के बारे में बहुत सी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद उमा।
1: दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप अपना और अपनी फसलों का रख रहे होंगे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करेंगे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, आप सभी का स्वागत करती हूं विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में जो आज बातें होने वाली है बहुत ही एनर्जी से भरपूर और बहुत ही चटपटी बातें होने वाली है, बहुत ही मसालेदार बातें होने वाली है, और ऐसी बातें जो आपको लू से बचाने वाली है, आपको गर्मी से बचाने वाली है और आपको तरोताजा रखने वाली है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे शरबतों के बारे में, दो ऐसे शरबतों के बारे में जो आपको इन लू के थपेड़ों से बचाएगी और इस गर्मी भरे मौसम में भी आपको तरोताजा रखने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे नींबू पुदीने की मसालेदार शरबत के बारे में। और अगर हम नींबू और पुदीने की बात करें ना, ये जब अलग अलग होते हैं तो इसके तो फायदे होते ही हैं, साथ ही जब अगर ये एक साथ आ जाते हैं, अगर आप नींबू और पुदीने को एक साथ मिला देते हैं और खासतौर से इसे जब पानी में एक साथ मिला देते हैं, तो ये ना सिर्फ हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, साथ ही हमें ऊर्जावान बनाए रखने में भी काफी मदद करता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि नींबू और पुदीना जब मिलकर एक शरबत बनता है तो वो बेहतरीन सुपर ड्रिंक हो जाता है। अगर बात करें ना तो गर्मी में बहुत सारे लोगों को पाचन की समस्या होती है, तो पुदीना और नींबू दोनों ही हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखते हैं और ये गैस, अपच और पेट फूलने, जैसे कि हम ब्लोटिंग भी कहते हैं, इन सारी समस्याओं से हमें राहत दिलाते हैं। इसके साथ ही नींबू और पुदीना दोनों ही हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं, ताजगी से भर देते हैं, मतलब ये हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करके प्राकृतिक रूप से ठंडक प्रदान करती है। इसके अलावा नींबू में विटामिन सी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स का भी एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है, तो नींबू हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमारे शरीर को बीमारियों से भी बचाता है। इसके अलावा जब नींबू और पुदीना एक साथ आ जाता है तो ये मिश्रण ना लीवर को बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करता है, उसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, जैसे कि हम विषाक्त पदार्थ कहते हैं, उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है और लीवर की जो कार्य प्रणाली होती है उसे सुधारता है, साथ ही ये हमारे वजन को भी नियंत्रित करता है। सोचिए इतने सारे फायदे और ऊपर से ये मौसम, इस मौसम में ये शरबत तो मस्ट हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप नींबू और पुदीने की मसालेदार शरबत बिल्कुल फटाक से बना सकते हैं अपने घर में। सबसे पहले तो आप पुदीना लीजिए 1 कप, नींबू 1 और चीनी आप 4 टेबल स्पून ले सकते हैं। 1 नींबू आपने लिए है उसे आप 4 टुकड़े में कर दीजिए। इसके साथ ही आप लेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, काला नमक आप लेंगे 1/2 छोटी चम्मच या फिर स्वाद अनुसार, नमक की बात जब भी होती है वो स्वाद अनुसार ही होती है। और अब इसे कैसे बनाना है, सबसे पहले तो आप पुदीना के पत्तों को अच्छी तरीके से साफ पानी से धो लीजिए और इसके बाद इन पत्तों को ना मिक्सर जार में डाल दीजिए। इसके साथ आप चीनी डालिए, काला नमक डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए और नींबू का रस डालिए और अब 1/2 कप पानी मिलाकर अच्छी तरीके से बारीक बारीक बारीक बारीक पीस लीजिए और तैयार है पुदीना का पेस्ट। जी हाँ, अभी शरबत तैयार नहीं हुआ है और जो तैयार हुआ है ना पुदीने का पेस्ट, उसे आप छलनी से छान लीजिए और प्याले में निकाल लीजिए ताकि जो भी पुदीने के रेसे है ना वो निकल जाए। और इसके बाद अब आप 2 ग्लास लीजिए, इनमें 2 या 3 आइस क्यूब्स डालिए या फिर इसके अलावा ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास आइस क्यूब नहीं है तो। अब दोनों ग्लासों में आधी आधी मात्रा शरबत की डालकर पानी डाल दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। आप शरबत को सजाने के लिए, अगर आप किसी को परोसने जा रहे हैं ये शरबत और आप चाहते हैं कि बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से आप शरबत को परोसे, तो इसके ऊपर आप पुदीना के पत्ते और नींबू के टुकड़े डाल सकते हैं और ठंडा ठंडा नींबू पुदीना शरबत बनकर तैयार है। और अगर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप चीनी कम या ज्यादा

0: ले सकते हैं। और इसके साथ ही आप शरबत के लिए ना पानी की जगह आप सोडा वाटर का भी उपयोग कर सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से। और ये शरबत आपके लिए बहुत बहुत बहुत ही फायदेमंद साबित होगा इन गर्मी के मौसम में। और अगला जो शरबत है ना, इसकी आप तैयारी करके रख दीजिए और जब भी दिल करे बस पानी मिलाया और पी लिया। इतनी आसान तरीके से ये तैयार हो जाएगा और बहुत लंबे समय तक चलेगा। कोई घर पे गेस्ट आ जाता है ना इस दौरान गर्मी में, तो आप चाय नहीं पूछ सकते हैं। मतलब इस गर्मी में चाय थोड़ा लगता है ना कि कौन पिएगा। हालांकि चाय जिन्हें पसंद है वो तो कभी भी पीते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर पर अगर कोई अचानक आ गया और आप सोच रहे हैं कि हम इन्हें क्या परोसे, तो आप ये शरबत बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में और जब भी दिल करे बस इसमें पानी मिलाया और शरबत तैयार है। और गर्मियों के लिए ना ये एक कह सकते हैं कि औषधीय गुणों वाला शरबत है। जी हाँ, मेडिसिनल रेसिपी आप कह सकते हैं। मैं आज आपको बताने वाली हूँ सौंफ के शरबत के बारे में। ये हमें ठंडक तो देती ही है, साथ ही हमारे पाचन क्रिया को भी सुधारती है और यहाँ तक कि नकसीर की परेशानी की भी इलाज आप कह सकते हैं कि करती है। क्योंकि कुछ लोगों को ना गर्मी में नाक से खून आने की परेशानी होती है, तो उसमें ये थोड़ी मदद करती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डॉक्टर की दवाई मत लीजिए, आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए, पर हाँ अगर आपको नकसीर की परेशानी है तो आप सौंफ के शरबत का सेवन आपको करना चाहिए। लेकिन हाँ, डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर का इलाज साथ साथ चलते रहना चाहिए। ये तो घरेलू चीजें हैं। और आपको सौंफ के शरबत के लिए क्या कुछ चाहिए होगा, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आपको सौंफ चाहिए होगा 1 कप, भीगी हुई इलायची 40, और चीनी 1 किलोग्राम या फिर आप कह सकते हैं कि 4.5 कप, और अलग से आप चीनी रख लीजिए 3 से 4 टेबल स्पून। इसका जो इस्तेमाल हम करेंगे ना वो सौंफ और इलायची को एक साथ पीसने के लिए करेंगे। अब बताते हैं कि कैसे आप सौंफ का शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो सौंफ को आपने अच्छी तरीके से साफ करके धोकर रख लिया और 1.5 कप पानी में 5 घंटे के लिए आपको सौंफ को भिगा देना है। अब क्या करना है, इलायची को भी धोकर थोड़े से पानी में आप भिगो दीजिए और जब 5 घंटे हो जाए, सौंफ भी भीग जाए, इलायची भी भीग जाए, अब सौंफ को पीसने के लिए ना एक जार में सौंफ डालिए, साथ में 2-3 टेबल स्पून जो हमने चीनी अलग से रखा हुआ था ना वो डालिए आप। और अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि हम सौंफ के साथ चीनी क्यों डाल रहे हैं, तो जब आप सौंफ के साथ चीनी डालते हैं ना तो सौंफ को पीसने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, वो बहुत ही जल्दी से और आसानी से पीस जाता है। और जैसे ही आप सौंफ को पीसने लगेंगे मिक्सर जार में तो आपको लगेगा कि सौंफ ना सूखने लगी है, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए और इसे बारीक बारीक बारीक बारीक पीस कर आपको तैयार करना है। अब पीसे हुए सौंफ को ना आपको छलनी से छान कर इसे हल्का दबा दबा कर इसका जो भी जूस होगा वो आप एक प्याली में निकाल लीजिए और जो भी रेसा होगा ना आप उसे अलग रख दीजिए, आप उसे फेंकिए मत। छलनी से आपने छान कर सौंफ के जूस को अलग कर लिया, लेकिन जो छलनी में बची हुई मोटी सौंफ है ना उसे आप किसी प्याले में रख दीजिए, किसी कटोरी में रख दीजिए और सारे सौंफ को आप इसी तरीके से पीस लीजिए और उसका जूस निकाल लीजिए। और फिर जो भी मोटे आपने सौंफ बचाए हुए थे छलनी में जिसे आपने प्याली में रखा हुआ था, उस सौंफ को एक बार फिर से पीसिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए और फिर उसी तरीके से ऐसे ही छान कर उसे अलग कीजिए और फिर से पीसिए, तो आप अंत में पाएंगे कि आपने सारे सौंफ को पीस लिया है। अब ना भीगी हुई इलायची को, जो हमने इलायची को भिगाया हुआ था, उन भीगी हुई इलायची को जार में थोड़ी सी चीनी के साथ डालिए और एकदम बारीक होने तक पीस लीजिए। इसे भी आप सौंफ की तरह ही छलनी से छान लीजिए और मोटा भाग हटा दीजिए और फिर से पीस लीजिए। अब हम बनाएंगे चाशनी। इतनी सारी जो हमने चीनी ली थी उसका हम क्या करेंगे, तो चाशनी बनाने वाले हैं। जी हाँ, एक बर्तन में ना आप चीनी और जो हमने सौंफ और इलायची का जूस तैयार किया है ना वो डाल देंगे और इसे ना गाढ़ा होने तक हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे। और अब हमें चाशनी की कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मतलब चाशनी ना ऐसा होना चाहिए कि जब आप चाशनी की आखिरी बूंद गिराकर देखें तो वो तार की तरह दिखे। देखते हैं ना, एक तार दो तार, तो ये एक तार की तरह दिखे। और इस कंसिस्टेंसी पर आने तक चाशनी को चलाते हुए आपको पकाना है और बर्तन के किनारे पर जो सौंफ का फाइबर झाग के रूप में इकट्ठा हो रहा है ना उसे चमचे से निकालकर आप एक प्याले में रख दीजिए और आपको अब लगातार जो हम चाशनी तैयार कर रहे हैं उसकी आपको कंसिस्टेंसी चेक करते रहनी है। जैसे ही आप पाएंगे कि चाशनी की कंसिस्टेंसी इतनी हो गई है कि आप उसे गिरा रहे हैं तो आखिरी बूंद ना बिल्कुल तार के जैसे से गिर रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो कॉन्सेंट्रेटेड सौंफ शरबत है वो तैयार हो गया है। अब क्या करना है, अब करना यह है कि हमारा जो कंसेंट्रेटेड सौंफ शरबत है वो तो तैयार हो चुका है, अब इसे परोसेंगे कैसे। शरबत सर्व करने के लिए ना हमें 1 ग्लास में 2 टेबल स्पून कंसेंट्रेटेड सौंफ का शरबत डालना लगाना है और ऊपर से ठंडा पानी और थोड़ा सा आप बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं अगर घर पे मौजूद है तो। अब ये हमारा ठंडा ठंडा सौंफ का बिल्कुल औषधीय गुणों से भरपूर शरबत तैयार है। आप इस शरबत के बारे में ये बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि ये एक मेडिसिनल शरबत है और ये आपके शरीर को ठंडा रखता है, आपके पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करता है और साथ ही अगर गर्मी के दिनों में किसी बच्चे को नकसीर आने लगे तो इसे पिलाया जा सकता है तो 2 दिन में नाक से खून आने की परेशानी में थोड़ी राहत मिलती है। हमने तो बहुत सारी चाशनी तैयार की है तो इन सारी चाशनियों को आप क्या करेंगे, जब चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाए तो आप ना एक बोतल में भरकर इसे फ्रिज में रख ले और इस कंसंट्रेटेड सौंफ के शरबत का आप इस्तेमाल 2 महीने से भी ज्यादा दिनों तक कर सकते हैं। अच्छा हाँ, आपको मैंने जो बताया चाशनी बनाकर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और चाशनी को आप डायरेक्टली 2 चम्मच आप 1 ग्लास में डालेंगे और उसमें पानी मिलाएंगे ठंडा ठंडा और आपका जो शरबत होगा वो तैयार हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हम थोड़ा काला नमक मिला लेंगे, थोड़ा नींबू मिला लेंगे, लेकिन ऐसा करने से बचें क्योंकि जो सौंफ का स्वाद होता है ना वो काफी हल्का होता है और आप जब इसमें काला नमक मिलाएंगे, नींबू मिलाएंगे और इन दोनों ही चीजों का स्वाद काफी तेज होता है तो ये शरबत ना आपको बिल्कुल शिकंजी लगने लगेगा, ये सौंफ का शरबत रहेगा ही नहीं। तो अगर आपको सौंफ का स्वाद चाहिए तो बिल्कुल आप इसमें कुछ भी मत मिलाइए, जो आपने चाशनी तैयार की है बस उसी में पानी मिलाइए और शरबत पीजिए, दूसरों को परोसिए और बस 1 मिनट में अब ये शरबत तैयार हो जाएगा। एक बार की मेहनत, उसके बाद 2 महीने तक आप इस कंसंट्रेटेड सौंफ के शरबत का आनंद ले सकते हैं। तो ये हमारी आज की 2 रेसिपी हुई और आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप इन दोनों ही रेसिपी को घर पर बनाकर ट्राई करेंगे और इस गर्मी में आप अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास के जीवों का भी ध्यान रखेंगे। जी हाँ, छत पर पंछियों के लिए पानी जरूर रखिए और शरबत, पानी, इन सारी चीजों का सेवन जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और कई बार ऐसी शरबतों का भी इस्तेमाल कीजिए, ये आपके शरीर को बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपकी दोस्त आपकी होस्ट उमा को दीजिए इजाजत और आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार। मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
2: तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं, पर स्वीट कॉर्न क्या है?
1: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें, ताकि नरमंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
2: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए।
1: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, और अधिक मिठास वाली मक्का, जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें बुआई के समय, तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए, और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्रोनिल 6 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर 2 बीज डालें, ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
2: और मैम बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
1: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न, और सिंजेंटा की सुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं, और इनकी मिठास भी 15 से 20 प्रतिशत मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊँगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
2: और मैम कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
1: खरीफ में इसे 70 से 75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं, और रबी में 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं, और 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं, इसलिए ये हमारे अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 से 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस पोटास जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें, और 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4 से 5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पन की अवस्था पर डालें जब उसमें नरमंजरी मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में, जिस समय दूध बनता है उस अवस्था में डालें। उर्वरक को बीज के 7 से 8 सेंटीमीटर के करीब डालना चाहिए।
2: और मैम खरपतवार का कैसे प्रबंध करना चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
1: जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और अन्य खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एट्राजिन 1 से 1.5 केजी को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर में बुआई के तुरंत बाद, लेकिन अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है, हल्की मिट्टी में 7 से 8 सिंचाई एवं भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
2: किस तरीके से फसल कटाई करनी चाहिए और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पण और दाना भराव का समय होता है उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें। एवं कीट प्रबंधन की मैं चर्चा कर लूँ, कीट प्रबंधन के लिए आप तनाछेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं विभिन्न प्रकार की, ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में करने से किसान भाई काफी लाभान्वित हो सकते हैं। और फसल कटाई की बात आपने छेड़ी थी तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगी कि बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है एवं इसके 2 से 3 दिनों के बाद मादा मंजरी आती है। और गर्मी के मौसम में परागण के 18 से 22 दिनों के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे रेफ्रिजरेटेड वैन में ही हम ट्रांसपोर्ट करें। और सर्दी के मौसम में परागण के 25 से 30 दिनों के बाद भुट्टे की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था में तुड़ाई की अवस्था को पहचानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से मादा मंजरी के सूखने की अवस्था में इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। और जब हम छिलका हटाते हैं तो दाने में दूध भरा होता है, इसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। तो इस अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफ़ी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं। तो और इसका सीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर या इसकी खेती करें और इसे काफ़ी लाभान्वित हुए।
2: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फायदे होते ही हैं और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी।
1: धन्यवाद।
2: आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316 जी, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम

नेत्रजन 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें, और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 सीसी की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो, और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर अवनीश कुमार सिंह, वैज्ञानिक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। आज जो जानकारी लेकर आए हैं वो है बहुउपयोगी मसाला हल्दी की खेती के बारे में। आज इसके बारे में जानेंगे हम डॉक्टर साहब से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैम।
0: आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हल्दी का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और इसके फायदे क्या क्या है।
1: जैसा कि हमारे किसान भाइयों को पता है कि हमारे दैनिक जीवन में हल्दी का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जैसे मसालों में हल्दी भारत की धरोहर है। प्राचीन काल से ही भारतवासी हल्दी का इस्तेमाल दाल, सब्जी, चटनी, अचार तथा अन्य भोज सामग्रियों को लुभावना तथा सुनहरा रंग प्रदान करने के साथ ही साथ विशेष प्रकार के सुगंध भरने के लिए करते हैं। भारतीय पकवान तो बिना हल्दी के बन नहीं सकती, और यदि बनता भी है तो उसका रंग फीका दिखता है तथा स्वाद में भी फीका पड़ जाता है। राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों के अनुसार हल्दी में कैंसर रोधी गुण विद्यमान है। शायद हल्दी के इन्हीं गुणों के कारण भारतीय लोग आदिकाल से हल्दी का इस्तेमाल भोजन में करते आ रहे हैं। प्राचीन काल से ही हल्दी प्राकृतिक सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु रही है। शुभ एवं मांगलिक अवसरों पर हल्दी का इस्तेमाल प्रधानता के साथ भारत में किया जाता है। शादी विवाह के अवसर पर हल्दी का उपयोग विभिन्न मांगलिक कार्यों में किया जाता है। घरेलू चिकित्सा पद्धति में हल्दी अनेकों मर्ज की एक अचूक औषधि है। हल्दी का विश्व में कुल उत्पादन का लगभग 86% भारत का हिस्सेदारी है। आंध्र प्रदेश हल्दी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। जहाँ तक मैं ये बता दूँ कि बिहार के भी कुछ जिलों में हल्दी की खेती हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
0: जी, ऐसे सुना गया है कि हल्दी की खेती में कुछ समस्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ज़रा उसके बारे में बताएं।
1: हल्दी की खेती में किसान भाई उसको ये ना सोचे कि क्या नुकसान होता है। उसका मतलब ये है कि नुकसान के बारे में हम आपको बता दें कि इसका मतलब ये होता है कि हल्दी की फसल को तैयार होने में 8 से 9 महीने का समय लगता है। इस प्रकार यह दो फसल अवधि ले लेती है। जो हमारे लघु सीमांत किसान हैं जिनके पास खेत कम है उनके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दो फसल ले लेता है एक हल्दी के क्रॉप। जो हमारे किसान भाई उतने टाइम में 2 या 3 फसल ले लेते हैं, इसमें आप एक ही फसल ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हल्दी का बीज दर 20 से 25 किग्रा प्रति हेक्टेयर है, जिसे खरीदने पर काफ़ी खर्च पड़ता है। यदि किसी किसान के पास इसका बीज नहीं है तो उसे बीज का अधिक खर्च करना पड़ता है। तीसरा, हल्दी उखाड़ने के बाद बाजार भेजने से पहले उसका प्रसंस्करण करना पड़ता है, जिससे अधिक श्रम एवं खर्च पड़ता है। चौथा, रोग रोधी अधिक उपज एवं उच्च गुणवत्ता वाले किस्मों के बीज किसानों को नहीं मिल पाते हैं। इसके वजह से हमारे किसान भाइयों इसमें प्रॉब्लम होती है और उसके उपज में उनको नुकसान होता है।
0: जी, तो अब आप किसान भाइयों को हल्दी के उन्नत किस्मों के बारे में बताएं ताकि वो इसकी खेती अधिक से अधिक लाभ उठा सकें इसकी खेती में।
1: हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट में, हमारे खुद के स्टेट में राजेंद्र सोनिया एक ऐसी वैरायटी है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय पूसा ढोली से इसको निकाला गया है। इसकी खेती के लिए हल्दी की उपज क्षमता 8 टन प्रति हेक्टेयर है। यह 210 दिनों में तैयार हो जाती है। इसमें करक्यूमिन, जो उसका पीलापन होता है, रंग रसायन जो उसमें पाया जाता है, उसकी मात्रा 8.5% होती है। उसी प्रकार बहुत सारी वैरायटी हैं, सोना, शोभा, कांथी, NDH-18, NDH-19, जो कि ND यूनिवर्सिटी अयोध्या से निकाली गई है, प्रतिभा, स्वर्णा, इन सभी वैरायटियों को हमारे किसान भाइयों लगा करके अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं।
0: हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है और इसकी खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी अच्छी होती है और खेत की तैयारी कैसे करेंगे?
1: हल्दी की फसल खेत के लिए गर्म एवं नम जलवायु सर्वोत्तम होती है। औसत वार्षिक वर्षा 900 से 1000 मिलीमीटर उपयुक्त होती है। बुआई तथा जमाव के समय कम वर्षा तथा पौधों के वृद्धि एवं विकास के समय अधिक वर्षा चाहिए। फसल परिपक्वता अवधि में शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और जहाँ तक हम भूमि की बात करें हल्दी के लिए जीवांश युक्त दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास का उचित प्रबंध हो तथा मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी की हम बात करें, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत 3 से 4 जुताई कल्टीवेटर या देसी हल से करके पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अंतिम जुताई के समय 25 से 30 टन गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट खेत में बराबर मात्रा में डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें।
0: तो आपने अभी हल्दी के किस्मों के बारे में बताया, साथ ही साथ जलवायु के बारे में भी जानकारी दी। अब आप हल्दी के बीज उपचार, बुआई का समय, बीज दर और बुआई की दूरी और गहराई के बारे में बताएं।
1: जहाँ तक हम बीज उपचार की बात करें किसान भाइयों से, तो बीज उपचार हम हल्दी के केस में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हल्दी की बुआई के पूर्व प्रकंदों की फफूदीनाशक इंडोफिल M45 का 2.5 ग्राम अथवा कार्बेंडाजीन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर बना लें। घोल के में कंदों को 60 मिनट लगभग 1 घंटा तक डुबोकर रखने के बाद छाया में सुखाकर 24 घंटे बाद ही बुआई करनी चाहिए। बुआई का समय, हल्दी की बुआई के समय पर इसकी उपज पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को 15 मई से 15 जून तक इसकी बुआई अवश्य कर देनी चाहिए। और बीज उपचार की हम जहाँ तक बात करें, बीज की मात्रा प्रकंदों के आधार पर निर्भर करता है। यह मुख्य रूप से स्वस्थ व रोग मातृ प्रकंद एवं प्राथमिक प्रकंदों को ही बीज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ऐसे प्रकंद जिसका वजन 20 से 25 ग्राम हो तथा प्रत्येक प्रकंद में 3 से 4 आँखें, जिसको हम बांड भी बोलते हैं, के बीज के लिए अच्छा माना जाता है। बुआई की दूरी तथा गहराई, अच्छी उपज के लिए बीज बुआई हेतु कतार से कतार दूरी 30 सेंटीमीटर तथा प्रकंद से प्रकंद की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखते हैं। प्रकंदों की बुआई 5 सेंटीमीटर गहराई में की करनी चाहिए।
0: अब इसके लिए खाद एवं उर्वरक प्रयोग की मात्रा, सिंचाई एवं जल निकास और निकाई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताएं।
1: खाद एवं उर्वरक, हल्दी की फसल अन्य फसलों की अपेक्षा भूमि से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। खेत की अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला दें। रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 150 किग्रा, फास्फोरस 60 किग्रा तथा पोटास 120 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की आधी मात्रा तथा नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय दें। तथा किसान भाई एक चीज़ें और ध्यान दें कि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा बुआई के 35 से 40 दिन बाद तथा नाइट्रोजन की शेष 1/3 मात्रा, पोटास शेष आधी मात्रा बुआई के 75 से 80 दिन के बाद दें। सिंचाई एवं जल निकास की हम बात करें तो हल्दी की फसल को पर्याप्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सिंचाई, जलवायु, भूमि की संरचना, वर्षा तथा पलवार, जिसको हम मल्चिंग भी कहते हैं, के अनुसार 10 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। प्रकंदों में के जमाव व वृद्धि विकास के लिए समय समय पर सिंचाई करना बहुत ही जरूरी है। और हम निकाई गुड़ाई और खरपतवार के बारे में हम बता दें आपको कि हल्दी के खेत में पत्तियों की पलवार, जैसे मल्चिंग, जिसे हम मल्चिंग कहते हैं, लगाने से काफ़ी हद तक खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। हल्दी की फसल में प्रायः 3 बार गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ प्रकंदों में वृद्धि एवं विकास अच्छे तरीके से होती है, जिससे हमारे किसान भाइयों प्रथम गुड़ाई बुआई के 30 दिन बाद, तृतीय बुआई के 60 दिन बाद तथा तृतीय 90 दिनों के बाद करें।
0: अंत में आप इसमें मुख्य रूप से लगने वाले कीट एवं बीमारियों और इनसे सुरक्षा के बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, साथ ही हल्दी का प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताएं।
1: हल्दी में मुख्य कीट हम किसान भाइयों को बता दें और इसका नियंत्रण हम बता दें कि हल्दी में जो पहला कीट है दीमक या कजरा पिल्लू, यह दोनों कीट पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं। पौधों के प्रारंभिक अवस्था में कजरा पिल्लू जमीन की सतह

से पौधे को काट देता है। इससे बचाव हेतु दानेदार फोराडान 3G कीटनाशी दवा का 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत तैयारी के समय ही मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। दूसरा है तना छेदक। यह कीट छेद करके भीतर घुस जाता है तथा पत्ते को खोखला बना देता है, जिससे पौधा मर जाता है। इसकी रोकथाम के लिए इमेमेक्टाक्लोर बेंजोएट कीटनाशी दवा का 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। तीसरा है थ्रिप्स। इसका उपयोग, यह कीट पौधे के हरी पत्तियों को चूसता है तथा पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोफीड कीटनाशी दवा का 1 मिलीलीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। हल्दी के कुछ प्रमुख रोग एवं नियंत्रण है। प्रकंद विगलन रोग, फसल के प्रारंभिक बढ़वार के अवस्था में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं तथा जमीन के ऊपर का तना गल जाता है। भूमि के भीतर का प्रकंद भी सड़कर गोबर की खाद की तरह हो जाता है। यह बीमारी जल भराव वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। रोगग्रस्त बीज प्रकंद बोने पर ही यह रोग लग जाता है। इसके नियंत्रण हेतु खेत में पानी नहीं रुकने दें तथा कापर ऑक्सीक्लोराइड फफूंदी नाशक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पौधों के जड़ों के पास भिगोएं तथा पौधों पर भी इसी घोल का छिड़काव करें। स्वस्थ प्रकंद की बुआई करें और इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और तीसरा ये है पूर्ण धब्बा रोग या पर्ण चत्ती रोग। इसके नियंत्रण के लिए भी मैंकोजेब फफूंदी नाशक दवा का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर इसका छिड़काव करें और इसको इससे नियंत्रण पाएं। इसका प्रसंस्करण जो है, हमारे जो किसान भाइयों को मैं बता दूं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हल्दी की खेती करने के बाद आप उसे करेंगे क्या, उसका क्या कर सकते हैं आगे, उसमें है प्रकंदों को पहले उबालें। इसमें करते क्या है, सर्वप्रथम लंबी तथा गोली प्रकंदों को अलग अलग काट लिया जाता है। इसके उपरांत लंबी प्रकंदों को अलग तथा गोले प्रकंदों को अलग अलग उबाला जाता है। प्रकंदों को एल्युमिनियम या मिट्टी के बर्तन में उबालना चाहिए। प्रकंदों को बर्तन में सुखाने के बाद ऊपर से पानी भर दिया जाता है ताकि प्रकंद पानी में डूब जाएं तथा बर्तन में मुंह पर धान या का पुआल या हल्दी के सूखी पत्तियों की परत रखकर ढक्कन से ढक दें। इसके बाद उसे धीमी आंच में उबलने दें। लंबे गाँट 1 से 2 घंटे में तथा गोले गाँट 2 से 2.5 घंटे में पूर्ण रूप से पक जाते हैं। जब बर्तन के मुंह से पीला पीला हल्दी के रंग

0: लिखे। सूखे प्रकंद को जूट के बोरे या बांस की टोकरी से रखकर रगड़ा जाता है ताकि छिलका, मिट्टी का कण तथा छोटी जड़ें बाहर निकल जाएं। अब इसे हल्दी के पाउडर का गाढ़ा घोल बनाकर उसे रंग देते हैं तथा सूखा देते हैं। बड़े पैमाने पर पालसिंग या का कार्य यांत्रिक विधि से किया जाता है। पालसिंग के बाद प्रकंदों को किसी वायुरोधी बड़े डब्बे में भंडारण कर सकते हैं या बाजार में बेच सकते हैं और हमारे किसान भाइयों इससे अधिक से अधिक आय कर सकते हैं।
1: जी तो श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हल्दी की खेती के बारे में, और आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले दिन एक नए विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि।

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
6: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सun रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, जो लेडीज होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन पे सामाजिक पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है और जब महिलाएं कामकाजी हो या फिर घरेलू हों, उन पर एक अलग तरह का दबाव आज भी महसूस वो करती होंगी।

कई बार महिलाओं पर यह दबाव होता है कि महिलाओं को सहनशील दिखना है, कई बार परफेक्ट दिखने का दबाव, कई बार करियर में अच्छा करने का दबाव, कई बार करियर के साथ घर को संभालने का दबाव, अलग अलग तरह के दबाव होते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ महिलाओं को ही जिंदगी में ऐसे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, पुरुषों को भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। पर कई बार महिलाएं अकेली पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर वो किसी को बताती भी हैं कि मुझे ये परेशानी हो रही है, करियर और घर साथ में नहीं संभल रहा, या फिर बच्चों से ऊब गई है, तो फटाक से उसे ये सवाल कर लिया जाता है कि कोई महिला होकर बच्चे से कैसे ऊब सकती है। करियर के साथ तो घर संभालना ही पड़ेगा, घर संभालने का काम तो महिलाओं का ही है ना। मतलब इतनी सारी बातें कह दी जाती है कि एक वक्त आते आते महिला ये समझना शुरू कर देती है कि उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। थोड़ा ख़राब लग रहा है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा। करियर, रिश्ता, घर, सोसाइटी, इन सब की उम्मीदों के बीच महिलाएं अपनी इमोशंस को एडजस्टमेंट समझकर दबा लेती है, और यही वजह होती है कि मेंटल हेल्थ से जुड़े शुरुआती लक्षण वो टाइम पर नहीं पहचान पाती और प्रॉब्लम धीरे धीरे बहुत गहरी होती जाती है। अगर आप में भी ऐसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, वो बाद में जाकर बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको लगातार थकान लग रहा है, मोटिवेशन की कमी लग रही है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद आप थकी थकी सी लगती हैं, छोटे छोटे काम भी आपको भारी लगने लगे हैं, जिन काम को आप बहुत पहले आराम से निपटा लिया करती थी, जो चीज़ें आपको पहले बहुत खुशी देती थी, अब वो करने की एनर्जी ही नहीं बची है, वो करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हो सकता है कि आपको पहले शॉपिंग करना पसंद था, फिल्में देखना पसंद था, खाना बनाना पसंद था, पर अब वो चीज़ें करने की इच्छा नहीं हो रही है, आपके अंदर उन चीज़ों को करने के लिए एनर्जी नहीं बची है, उनमें अब दिलचस्पी ही नहीं रही है। तो ये सिर्फ शारीरिक थकान की वजह से नहीं हो सकता है, बल्कि हो सकता है कि आप मेंटली परेशान हो, आप मेंटली थक गई हो। ये डिप्रेशन या एंग्जाइटी की शुरुआती निशानी भी हो सकती है, जिसे अक्सर महिलाएं कोई रूटीन स्ट्रेस कहकर टाल देती हैं कि चलो इतने काम के बाद ये तो थोड़ा नॉर्मल स्ट्रेस है ही। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें लगातार हो रही है तो फिर आप हो सकता है कि आप मानसिक तौर पर परेशान हों। अगर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप बात बात पर रो देती हैं, या बिना किसी वजह के आप उदासी महसूस कर रही हैं, या फिर आपको अचानक गुस्सा आ रहा है, तो आपके आसपास बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन अचानक बदले हुए मूड को समझेंगे। लेकिन आपको आपके पास होना पड़ेगा, आपको खुद को समझना पड़ेगा। जब हमारे शरीर में कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और साथ में लगातार स्ट्रेस भी होता है, तो ये दोनों मिलकर बहुत बुरी तरीके से मेंटल बैलेंस को बिगाड़ सकती है। और जब ये बदलाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो इन्हें इग्नोर करना नुकसानदेह हो सकता है। मान लीजिए कि आप छोटी छोटी बात पर आजकल गुस्सा करने लगी हैं, और इस बात से आप खुद भी परेशान होंगे कि

लेकिन अब आपको अगर रात में नींद नहीं आ रही है, या फिर आपको बार बार जगना पड़ रहा है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी आप सो रहे हैं, तो ये संकेत हो सकता है कि दिमाग आपका ओवरलोड हो चुका है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें भर गई है और आपका दिमाग थक चुका है। इसी तरीके से अगर आप कम खा रही हैं या फिर अचानक आपके खाने के पैटर्न में बदलाव आया है, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गई हैं, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नींद, खाना, अगर इन दोनों ही पैटर्न में बदलाव आप महसूस कर रहे हैं, या तो दोनों ही अगर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिरा है या फिर बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से बहुत बढ़ गया है, तो ये खतरनाक हो सकता है। और कई बार महिलाएं तो अपनी स्थिति के लिए या दूसरों की स्थिति के लिए भी खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती हैं, और ऐसे में उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाती है। जब महिलाएं ना हर छोटी छोटी बात के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने लगती है, और कहीं ना कहीं ये शुरुआत उनके घर वाले करते हैं कि उन्हें हर छोटी छोटी बात के लिए जिम्मेदार ठहराना, और एक वक्त पे महिलाएं भी ये मान लेती हैं कि अगर उनके आसपास कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, और वो अपने हर फैसले पर शक करना शुरू कर देती है कि कहीं मैंने ये गलत तो नहीं कर दिया, मेरे उस गलत फैसले की वजह से आज ये तो मुझे नहीं झेलना पड़ रहा, या फिर मेरे गलत फैसले की वजह से मेरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसी कितनी ही सारी बातें होती हैं जब महिलाएं खुद पे ब्लेम डालने लगती है, और ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। तो ये हो सकता है कि आप लो सेल्फ स्टीम से गुजर रही हो, आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम का ये संकेत हो सकता है। और अक्सर ना महिलाओं के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट बने, और ये उम्मीद जो की जाती है महिलाओं से, ये महिलाओं को और भी ज़्यादा परेशान करती है। कई बार तो महिलाओं को ऐसा भी लगता है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, और कुछ महिलाओं को आपने देखा होगा कि जो पहले बहुत फ्रेंडली थी, या फिर बहुत फ्रेंडली नहीं पर ठीक ठाक थी सामाजिक तौर पे, लेकिन वो अचानक धीरे धीरे लोगों से कटने लगी है, बातचीत करने से बचने लगी है, और अपने मन की बात उन्होंने शेयर करना बंद कर दिया है। तो इसे क्वाइट नेचर समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब थोड़ा शांति पसंद कर रही है। अगर वो लगातार ऐसा कर रही है तो हो सकता है कि वो अपने अंदर चल रहे मेंटल थकान को और अकेलेपन का संकेत दे रही है। हो सकता है कि वो अपने अंदर ही इतनी सारी बातों से परेशान हो गई है कि वो बात बाहर निकाल ही नहीं पा रही, या फिर उन्हें लगने लग गया है कि किसी से बात करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन फायदा हो सकता है, और अगर आपने इन सारे संकेतों को इग्नोर किया तो हो सकता है कि आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाएं। कई बार तो आप ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलते हैं, किसी चीज़ पर आप फोकस करना चाह रहे हैं पर वो हो नहीं पा रहा है, जबकि आप हमेशा से ऐसी नहीं थी। अचानक या फिर धीरे धीरे आप में ये बदलाव अगर दिखने लगे हैं तो ज़रूरी है कि आप टाइम पर मदद लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ना अचानक नहीं होती। उसी तरीके से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम भी अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे होती हैं, और ये सारे संकेत उनके शुरुआती संकेत हैं। और अगर आप इन संकेतों को पहचान कर टाइम पर सपोर्ट लेते हैं, फिर चाहे वो दोस्त से बात करना हो, काउंसलिंग करना हो, या फिर ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लेना भी हो, तो आप इन सारे संकेतों को बड़ी परेशानी में बदलने से रोक सकते हैं। तो इन संकेतों को अगर आप पहचानती हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आपको मेंटल हेल्थ से जुड़ी कोई भी परेशानी समझ आ रही है, खुद के अंदर कोई भी समस्या महसूस हो रही है, तो सबसे पहले खुद को समय देना शुरू करें। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ना काम के प्रेशर से खुद को थोड़ा दूर रखना चाहिए, और खुद को समय देने से आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो तेज़ी से सुधरने लगता है। खुद को समय देना यानी कि आपको जो पसंद है ना वो कीजिए, नहीं अगर कोई काम समझ आ रहा है, क्योंकि जब हम मानसिक तौर पर परेशान होते हैं तो हमारी पसंद के काम भी हमें करने की इच्छा नहीं होती है। तो बस आप खुद के साथ थोड़ी देर बैठ जाइए, खुली हवा में, नेचर के साथ, फिर देखिए धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव खुद ही नजर आने लगेंगे। इसके साथ ही एक सही रूटीन फॉलो नहीं करने की वजह से भी महिलाओं में या फिर किसी में भी ऐसी परेशानी देखी जा सकती है। तो जरूरी है कि आप एक सही रूटीन फॉलो करें। आप कोशिश करें कि हर काम का एक समय फिक्स कर दें, उसी समय पर करें, और जब आप अपने डेली लाइफ में भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरीके से काम करने लगता है, वो भी ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है, और उससे कम परेशानी होती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल सुधारें। जैसे ही आप एक सही रूटीन फॉलो करने लगेंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी लाइफ में कुछ हेल्दी एक्टिविटी जैसे कि योगा शामिल करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज को शामिल करें, और साथ ही सुबह या शाम के समय ज़रूर थोड़ा सा समय निकालें जिसमें आप कोशिश करें कि आप ना पैदल चलें।
इससे बहुत

0: फ़ायदा होता है। और सुबह और शाम के समय जब आप थोड़ा पैदल चलते हैं तो इस दौरान आप खुद के साथ भी थोड़ा वक्त बिताते हैं, और इस वक्त ये ना करें कि आप फ़ोन चला रही हैं या फिर कुछ और, नहीं, बस खुद के साथ वक्त बिताना है, खुद से बातें करनी है। पर्याप्त नींद तो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, तो कोशिश करें कि आप सही समय पर सोने जाएं, और नहीं भी नींद आ रही है तो फ़ोन यूज़ नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है, बस सोने की कोशिश करनी है। कुछ दिनों में नींद आने लगेगी और दोस्तों से और परिवार से खुलकर बात करें। कोई तो होगा आपके परिवार में जो आपको समझता होगा, आपके दोस्त होंगे, आपकी बहन, माँ या फिर कोई भी, आपका पति, उनसे बात करें, खुलकर बात करें, और ज़रूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी बिल्कुल नहीं घबराएं। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, और कई बार नींद आने में अगर परेशानी होती है तो अगर आपको दूध सूट करता है तो रात में गुनगुना दूध पीकर सोएं, और अगर उसमें हो सके तो कच्ची हल्दी मिला दें, आप थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिला दें। इससे क्या होता है कि नींद अच्छी आने में बड़ी मदद मिलती है। बस करना क्या है, शाम में या रात में आपको दूध में ये दोनों चीज़ें डालकर उबाल लेना है, और आप हल्की इलायची भी मिला सकते हैं। 3 से 5 मिनट आप उबालेंगे तो जो दूध है वो तैयार हो जाएगा, और इसे गुनगुना या बिल्कुल ठंडा आप पी सकते हैं, तो ये भी आपको नींद आने में काफ़ी मदद करता है, तो ये चीज़ें भी आप अपना सकते हैं। और अगर इन चीज़ों से भी आपको आराम नहीं हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना, आप नींद, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप में जो लक्षण थे वो अब भी जस के तस बने हुए हैं, तो फिर आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं तो डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। और अगर आपके अंदर आत्महत्या या फिर खुद को नुकसान पहुंचाने के कोई भी विचार आए तो डॉक्टर से तो मिलिए ही। और अगर आपके लक्षण इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। पैनिक अटैक भी कई बार आ जाता है और बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, तो ऐसी स्थिति में आपको मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करने की सलाह दी जाती है। तो ध्यान रखें कि अगर लक्षण 2 से 3 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आए, रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगे, या फिर पैनिक अटैक या फिर बहुत ज्यादा घबराहट होने लगे, तो मनोचिकित्सक यानी कि साइकाइट्रिस्ट से मिलना जरूरी होता है, या फिर आप काउंसलर से भी मिल सकती हैं। तो ये चीजें ध्यान रखें, खुद के दिमाग को शांत रखें, और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। खुद से प्यार करें, स्वस्थ रहें, और तभी आप अपने अपनों को भी प्यार दे पाएंगे, उन्हें स्वस्थ रख पाएंगे। तो इन्हीं कुछ बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल, और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार, आप बने रहे हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी 1, खांसी 2, खांसी 3, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो, या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण कर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
5: सुहाना सफर और ये मौसम हंसी,
4: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
6: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन एफएम। उन्नत कृषि
9: नमस्कार किसान भाइयों, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। और किसान भाइयों, अभी उर्वरक बहुत ही ज़रूरी है हमारी फसलों के लिए, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर जैव उर्वरक की बात करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है फसलों के लिए। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि आपको उर्वरक का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, ताकि आप जो मेहनत कर रहे हैं अपनी फसलों को उगाने में वो सार्थक हो सके। तो इसी विषय को लेकर, यानी कि उर्वरक के प्रयोग विधि को लेकर बहुत सारी जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं आज डॉक्टर ए के झा, जो कि मृदा वैज्ञानिक हैं सॉइल साइंस डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका।
10: धन्यवाद।
9: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों और श्रोताओं को आप ये बताएं कि उर्वरक क्या है, सही मायने में इसका मतलब क्या है?
10: उर्वरक वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है जो कि ज्यादा मात्रा में इसमें पोषक तत्व होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं यूरिया। यूरिया क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। NH2CO, NH2 हम लोग रासायनिक फॉर्मूला कहते हैं, यानी एक अमाइड वाला ये रसायन है। और इसमें नाइट्रोजन काफी मात्रा में है, यानी 40% है। इसी तरह अमोनियम सल्फेट क्या है? अमोनियम सल्फेट भी एक केमिकल है, एक रसायन है। और इस रसायन में आपको 20% उसमें जो है क्या कहते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है। इसी तरह से DAP डाइअमोनियम फॉस्फेट, ये एक रसायन है। इस रसायन में लेकिन मजे का जो है क्या कहते हैं आपको नाइट्रोजन फास्फोरस है। नाइट्रोजन भी देखते हैं तो इसमें फास्फोरस 46% है, नाइट्रोजन भी 18% के आसपास है। तो कहने का मतलब यह एक रासायनिक ऐसा पदार्थ है जिसमें कि कुछ खास तरह के, मतलब एक या कुछ खास पोषक तत्व तो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, वह एक रासायनिक उर्वरक होता है।
9: जी, अब ये उर्वरक की बात होगी, रासायनिक उर्वरक की बात होगी, लेकिन जो जैव उर्वरक हैं वो क्या होते हैं?
10: देखिए, जैसे नाम है वैसे नाम से ही पता चल रहा है, जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम करे। अभी हमने बताया है आपको कि उर्वरक ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व देता है
9: जी।
10: इसी तरह से यदि कोई जीवित पदार्थ इस काम को कर सकता है तो वो जैव उर्वरक कराएगा। अब उतना तो नहीं कर सकता है जितना ये रासायनिक उर्वरक देता है, लेकिन इसमें भी मजे की मात्रा सप्लाई करने की क्षमता होता है। अब जीवित पदार्थ जो उर्वरक का काम कर सके, जैसे आप राइजोबियम का ही कल्चर डालते हैं, ये क्या करता है? राइजोबियम कल्चर जो आपको देखिए तो यह गांठ बनाएगा दलहनी फसल में, और दलहनी फसल में गांठ बनाकर के उसको नाइट्रोजन देने का काम करेगा। इसी तरह से मान लीजिए दलहनी फसल नहीं है, वहां पर भी नाइट्रोजन देना है, तो नाइट्रोजन देने के लिए कई दूसरे हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है या एसिटोबैक्टर है या जो स्पाइरलम है, तो ये एजोटोबैक्टर का भी वहां पर आप एक इनाकुलेशन करते हैं, जो सीड है उस सीड के ऊपर उपचारित कर सकते हैं, मिट्टी के ऊपर उपचारित कर सकते हैं, तो या आप उसको उपचार करते हैं, तो यह उपचार करने से यह क्या होगा कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है इस नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करता है। इसी तरह से जैसे फॉस्फोरस घुलनकर है, फॉस्फोरस आपकी मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वो फॉस्फोरस पौधे को नहीं मिल पा रहा है। जैसे नाइट्रोजन में हमने बताया कि वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन ये पौधे को नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हमको ऐसे रूप में परिवर्तित करना है कि पौधे को मिल जाए, वही ये काम करता है। यही काम आप देखते हैं कि यूरिया की फैक्ट्री है, यूरिया की फैक्ट्री में नेफ्था नाम के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज करते हैं या नेचुरल गैस को यूज करते हैं, और वहां पर 300-400 डिग्री टेम्परेचर यदि आप लगाते हैं तब जा करके वहां पर वह जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वह उस रूप में परिवर्तित हो जाता है कि पौधा उसको ले सके। लेकिन यही काम यदि जैव उर्वरक में देखें तो जैव उर्वरक में यह काम जो आपका मुश्किल से कितना खेत का टेम्परेचर होगा 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, यही होगा, और उसी पर वो काम करने लगता है। क्यों करने लगता है और कैसे करने लगता है? क्योंकि इस दलहनी फसल में या दूसरे फसल में आपको जो उस सूक्ष्म जीवाणु के अंदर में खास तरह के एंजाइम है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम, तो इस नाइट्रोजनेज एंजाइम के चलते यह कम तापक्रम में ही यह प्रक्रिया करने लगती है और यह आपको नाइट्रोजन उपलब्ध करवा देता है। यही हम फास्फोरस घुलनकर की बात कर रहे हैं कि फास्फोरस हमारे मिट्टी में बहुत है, लेकिन वो फास्फोरस पौधा को नहीं मिल पा रहा, फिक्स हो गया हुआ है, स्थिरीकृत हो गया हुआ है। तो उस फास्फोरस को यह पुनः जो है क्या कहते हैं ऐसे रूप में कर दिया, यानी उसको घुला दिया, नाम है फास्फोरस घुलनकर, यानी उसको घुला दिया, तो ऐसे इस रूप में कर दिया कि उस फास्फोरस को पौधा ले सकता है। तो जैव उर्वरक में और उर्वरक में यही चीज मतलब अंतर है कि जो आपका रासायनिक पदार्थ है जो उर्वरक का काम करे, यानी कुछ पोषक तत्व प्रदान करने का काम करे, जैसे हमने बताया जैसे आपको यूरिया है एक ही तत्व दिया, लेकिन डीएपी में देखिए दो तत्व मिलता है, नाइट्रोजन फास्फोरस दो मिल रहा है, एनपीके फर्टिलाइजर आ रहा है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तीनों मिल रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि कुछ ही तत्व दे सकता है, एक दो तीन या कुछ गिने चुने ऐसे तत्व जो है वह आपूर्ति करता है रासायनिक उर्वरक, लेकिन है यह रसायन। लेकिन जैविक उर्वरक एक जैविक पदार्थ है जो कि इस सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाने का काम करते हैं।
9: अब जो है अलग अलग तरह के उर्वरक हैं डॉक्टर साहब, तो उनके प्रयोग के बारे में थोड़ी जानकारी दें।
10: अब देखिए बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा, जैसे नाइट्रोजन देने वाले खाद हैं जिसको नाइट्रोजनी खाद कहते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, तो नाइट्रोजन देने वाले कुछ खाद हैं, तो वह जो है क्या कहते हैं उसका यूज एफिशिएंसी थोड़ा कम होता है, तो उसको देने का अलग तरीका है। जो फॉस्फोरस वाले हैं या पोटास वाले खाद हैं उसको डालने का अलग तरीका है। वास्तव में देखिए एक सिद्धांत यहां पर है, जो भी खाद या जो भी पोषक तत्व मिट्टी में, आपको इसको दो शब्द जानना पड़ेगा किसान भाइयों को, एक कहते हैं मोबाइल, एक कहते हैं इमोबाइल। मोबाइल कहने का मतलब जो आसानी से मिट्टी में इधर से उधर चला जाता है वो मोबाइल हुआ, जैसे नाइट्रोजन मोबाइल है, लेकिन फास्फोरस और पोटास मोबाइल नहीं है, इमोबाइल लेस मोबाइल है। तो जो नाइट्रोजन वाला खाद है यानी जो मोबाइल है उसको कई बार में प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन यदि एक ही बार में प्रयोग कर दीजिएगा तो जो पौधा अभी लिया और नहीं तो वो वहां से लॉस कर जाएगा, लीच कर जाएगा, दूसरे जगह चला गया तो पौधे को नहीं मिल पाएगा। इसलिए नाइट्रोजन वाले खाद को आप देखते हैं कि कई बार में प्रयोग करते हैं उसको। जनरली आप देखिए धान में, गेहूं में, इस समय क्या अनुशंसा किया जाता है, या मक्का में आप देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है क्या कहते हैं आधी मात्रा आप डाल देते हैं, कब, जब खेत का बुआई कर रहे हैं या रुपाई कर रहे हैं। गेहूं यदि धान है तो रुपाई करते हैं, तो गेहूं है तो आप बुआई करते हैं, तो बुआई के समय आधी मात्रा को डालना चाहिए। एक महीने के बाद गेहूं की बात यदि हम करें तो फिर एक महीने के बाद आप जो है क्या कहते हैं उसकी एक चौथाई मात्रा को डालते हैं, फिर दूसरे महीने के बाद आप एक चौथाई मात्रा को यूज करते हैं। यहां पर भी यदि आप मक्का में भी देखिए तो मक्का में भी आप आधी मात्रा उसी समय शुरू में ही प्रयोग कर देते हैं, और जब घुटने भर का हुआ उस समय जो है क्या कहते हैं आप फिर 25% मात्रा प्रयोग कर देते हैं, और जब टेस्टिंग का समय आता है उसके पहले आप देखते हैं कि ये आप दूसरी मात्रा मतलब जो 25% बचा हुआ है उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन जो फास्फोरस और पोटास है यह मिट्टी में ज्यादा मोबाइल नहीं है, इसीलिए आप देखते हुए कि फास्फोरस और पोटास की अनुशंसा है कि यह खेत की तैयारी के समय या बुआई के समय ही डाल दीजिए, क्योंकि यह तो बड़ी मुश्किल से, भाई एक सीजन में कितना टाइम होगा, 3 महीना 4 महीना 5 महीना कहीं क्रॉप होगा, तो वह थोड़ा सा मोबाइल होगा, तो कुल मिलाकर के जड़ के पास जिसे आसानी से पहुंच सके, और जड़ के पास यदि पहुंच गया तब जाकर के पौधा इसे ले पाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग आपको बुआई के समय या रोपाई के समय ही करनी चाहिए।
9: जी, अब बात करते हैं जैव उर्वरक की, तो इसकी प्रयोग विधि क्या, इसे कैसे प्रयोग करेंगे?
10: देखिए ऐसा है कि इसका प्रयोग का कई तरीका है। जो जैव उर्वरक है, जैव उर्वरक में आप प्रयोग करने के लिए एक तो तरीका यह है कि आप जो बीज है बीज का उपचार करते हैं। बीज का उपचार का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए 10 किलो बीज है, उस पर आप आधा लीटर 50 ग्राम उसमें गुड़ या चीनी डाल दीजिए और उसको पानी को घोल गर्म कर दीजिए तो घुल जाएगा, जो चीनी है या गुड़ है वो घुल जाएगा। वो 10 केजी बीज पर आपने डाल दिया, अब ये चिपचिपा बन गया, आप इसके ऊपर आपने डाल दिया, उसी में 200 ग्राम का कल्चर का पैकेट है, अब तो लिक्विड कल्चर भी आने लगा है तो सॉलिड बेस्ड कल्चर है, वो आपने डाल दिया और उसको हल्के हाथ आपने इसको मिला दिया, हल्के हाथ मिला करके जिससे उसके ऊपर एक परत बन गई, तो आप परत बन गया इसको आपने छाया में सुखा लिया, सुखा करके डाल दिया। लेकिन बहुत किसान ऐसे भी हैं जो मान लीजिए बीज उपचार करना चाहते हैं उसके लिए भी, कीड़े के लिए या फफूंद के लिए, जैसे मान लीजिए ट्राइकोडर्मा से उपचार कर रहे हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं वो राइजोबियम से भी करना चाहते हैं, पीएसबी से भी करना चाहते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड से भी करना चाहते हैं, पेस्टिसाइड से भी करना चाहते हैं
9: जी,
10: तो अब वो कैसे करें? तो उसके लिए एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं FIR, यानी पहले फंजीसाइड से, यानी फफूंदनाशी यदि कोई है तो फफूंदनाशी से उपचारित कीजिए, उसके एक दो घंटे के बाद तब इंसेक्टिसाइड से आप उपचारित कीजिए, उसके बाद जो पीएसबी है फॉस्फोरस घुलनकर बीजाणु उसके कल्चर से उपचारित कीजिए, अंत में जो नाइट्रोजन वाला है नाइट्रोजन वाला से उपचारित कीजिए। तो यह FIR के सिद्धांत पर उसको उपचारित कीजिए। बहुत लोग उसमें नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए बीज उपचार नहीं कर पाते हैं, तो बीज उपचार नहीं कर पा रहे हैं, अब वो जो है मिट्टी में डालना चाहते हैं, तो मिट्टी में डालने के लिए उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। मान लीजिए यहाँ पर 200 ग्राम से आपको पूरा देख रहे हैं कि 10 केजी बीज उपचारित हो जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको प्रति एकड़ 3-3.5 केजी के आसपास आपको कल्चर डालना पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा मिट्टी ले लीजिए और या बालू ले लीजिए, क्योंकि उतने से तो आप पूरे खेत में छिड़क नहीं पाएंगे, उसमें मिला करके उसे छिड़क दीजिए। लेकिन अब जैसे कंद वाली फसल है उसमें आप करना चाहते हैं, उसको उपचार करना चाहते हैं, तो कंद वाली उसमें एक किलोग्राम कल्चर लिए, उसको 15 लीटर पानी में जो है क्या कहते हैं 4 लीटर पानी में आपने घोल दिया, अब घोल करके उसमें डुबा करके छोड़ दीजिए 15 मिनट, उसके बाद निकाल करके उसको उपचारित कर लीजिए। बहुत आदमी सीडलिंग का उपचार करते हैं, यानी जो आपका बिचड़ा है बिचड़ा का उपचार करते हैं, तो उसमें क्या करना है कि आप एक किलोग्राम कल्चर लीजिए 15 लीटर पानी में लेकर के घोल करके आप उसके जड़ को उसमें डुबा करके 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, अब उसके बाद उसमें से निकाल करके तब आप इसका प्रयोग कर लीजिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे कि आप अपने बीज में बायो फर्टिलाइजर का, अपने खेत में खेती में आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कर सकते हैं
9: जी। नाइट्रोजन वाले उर्वरक की बात कर रहे थे आप डॉक्टर साहब, तो इसके यूज एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जाए?
10: देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ दिया है कि जो आपकी नाइट्रोजन वाला खाद है इसका यूज एफिशिएंसी काफ़ी कम होता है। अभी हमने बताया भी है कि इसमें जो है जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं नाइट्रोजन वहाँ से बह करके निकल जा रहा है, तो अब नाइट्रोजन यदि यहाँ से बह करके निकल जा रहा है तो इसके लिए तो एक तो पहली बात, पहले प्रील यूरिया चलता था, प्रील यूरिया यानी सीधे एक सामान्य जो यूरिया था वो, अब आजकल बाजार में तो प्रील यूरिया वाला ज़्यादा चक्कर है नहीं, सरकार ने कुछ किया है कि अब नीम कोटेड यूरिया आ रहा है या सल्फर कोटेड या लेक कोटेड यूरिया आ रहा है, तो इससे क्या होता है इसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाती है
9: जी।
10: तो उसमें क्या होगा कि ये धीरे धीरे स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, यानी कि धीरे धीरे इसके नाइट्रोजन बह करके निकलेंगे, तो फसल को तो पूरे समय में जरूरत है, तो वो धीरे धीरे निकल करके आएगा तो उसकी यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो एक तो काम ये आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे धान वान की फसल में मान लीजिए आपके पास ये सब नहीं है, तो वहां मड बॉल बना करके, यानी कि आप तालाब की मिट्टी लिए और उसके बीच में यूरिया डाल करके गोला बना करके कई जगहों पर आपने छिड़क दिया, उससे भी आपका यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। अब एक चीज आ गया हुआ है आजकल, उसको कहते हैं लीफ कलर चार्ट, तो लीफ कलर चार्ट का प्रयोग करते हैं वो, जैसे धान की फसल में यदि हम प्रयोग करते हैं तो 14 दिन पर आप प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो 14 दिन के बाद से आप जब तक आप दाना नहीं भर रहा है तब तक आप उसका प्रयोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम खेत में जाके खड़ा हो जाते हैं।
9: अच्छा।
10: और खेत में जाके खड़ा हो गया और इस ढंग से खड़ा होते हैं कि वहां पर हमारे शरीर की छाया उस पेड़ पर पड़ती रहे, वो जो लीफ कलर चार्ट है उसमें 6 छोटी छोटी पट्टी बनी हुई है, खूब गहरे हरे रंग से लेकर के हल्का पीला हरा रंग तक, अब उससे जिससे कलर मैच हमारा पत्ती का कर रहा है, 10 पौधा हमने लिया, 10 पौधा में कोई लकड़ी गाड़ दीजिए जिसे पहचान में आ जाए कि हाँ भाई यही पौधा हमने लिया था, अब वहां पर कलर को आपने मिलान कर लिया, अब उसमें जो 4 नंबर है वो क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, यदि आपको 50% या उससे ज्यादा पौधे 4 के नीचे है, यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से मिल रहा है, तो वहां पर आपको एक कट्टा यानी 50 केजी आपको यूरिया प्रति हेक्टेयर डालना है। तो उसमें होता क्या है कि जब जब उसे भूख लगी है तभी तभी आप नाइट्रोजन डालते हैं, गेहूं के लिए भी आ गया है लीफ कलर चार्ट, तो अब जो है क्या कहते हैं आपको कम उसमें नाइट्रोजन डालना पड़ेगा और यूज एफिशिएंसी उससे बढ़ती है। तो ये सब उसके बाद जो धान की फसल में करते हैं वहां पर हम चाहते हैं अमोनियम फॉर्म में ही हो, तो अमोनियम फॉर्म में रोकने के लिए आप उसमें एनसर्ब नाम का नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर आता है उसका प्रयोग करेंगे तो यूज एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे कि आप नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, धान की फसल में भी दूसरी फसल में भी आप बढ़ा सकते हैं।
9: जी डॉक्टर साहब, इस बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं हमारे किसान भाई अब आगे से अगर उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, जो निर्देश आपको दिए हैं, दिशा निर्देश दिखाए हैं, तो आशा करते हैं कि आप उस प्रकार चलेंगे तो आप अच्छे तरीके से उर्वरक का प्रयोग करेंगे और आपकी फसल अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करेगी। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
8: उन्नत कृषि

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: Attention, attention, attention, all the ladies and gentlemen. This is to remind you all about the importance of immunization. If your kids are 5 or less who have missed a vaccine, hear this appeal. Getting them vaccinated immediately is the key. For their safety and health, it is a wise request. Protecting them from illness to be their best. And remember, vaccination is safe and it saves your children from deadly diseases.
7: So, see you at the vaccination center soon.
8: To get more information about vaccination, visit your nearest health facility center.
9: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
10: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौधे के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज. मैं हूँ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में. तो दोस्तों, आज हम विषय लेकर आए हैं हरी खाद से मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं. तो इसके बारे में आज विस्तार तौर से आप सभी को जानकारी देने के लिए हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद. मैं आप सभी को बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से. तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत.
0: सर, सबसे पहले तो ये हरी खाद किसे कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में एक जानकारी दे दीजिए.
1: मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हम लोगों की खेती चल रही है उसमें काफ़ी सघन खेती हो रही है और उसके वजह से खेत को रेस्ट नहीं मिल पाता है, समय नहीं मिल पाता है कि खेत को कुछ दिनों के लिए आराम दें ताकि खेत की जो उपजाऊ क्षमता है उसका जो दोहन हुआ है उसकी भरपाई कर सके. तो सघन खेती और इंटेंसिव क्रॉपिंग के वजह से ये आवश्यक हो जाता है कि जो जिन चीज़ों का क्षरण खेत के द्वारा खेत के से हुआ है, जिसको हमने एक्सप्लॉइट किया है, अवशोषित किया है, उसकी कुछ हद तक भरपाई कर सकें. तो भरपाई करने का एकमात्र उपाय है कि अलग से हम खेत में वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो खेत की उर्वर क्षमता को बढ़ाए रखे, उसमें जो पोषक तत्वों का लॉस हुआ है, क्षरण हुआ है, कमी हुई है, उसको मेंटेन कर सकें. तो इसके लिए खास करके जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका प्रयोग होना आवश्यक हो जाता है. और ऑर्गेनिक मैटर का जो मुख्य स्रोत है वो है हरी खाद. हरी खाद का मतलब है कि जो मैक्सिमम फोलिएज वाले, जिनकी बढ़वार बहुत अच्छी होती है, जिसमें पत्ते ज़्यादा होते हैं, शाखाएं ज़्यादा होती हैं, और उसके माध्यम से हम खेत में या तो उसको बाहर से ला करके या खेत के अंदर ही उसको पैदा करके उस खेत में उसको समावेशित कर देते हैं और जिसके वजह से जो ग्रीन बायोमास है वो खेत को प्राप्त होता है और बाद में सर करके ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ बहुत सारी जो पोषक तत्व हैं उसको मुहैया कराता है. तो हरी खाद मुख्य रूप से दलहनी फसल के रूप में जो फोलिएज वाले पौधे हैं, जैसे सनई है, ढैंचा है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मूंग है उसका इस्तेमाल करते हैं, उड़द का इस्तेमाल करते हैं, और जो दलहनी फसल नहीं है उसका भी विशेष तौर पर जब ऐसी कमी हम महसूस होती है तो उसका भी प्रयोग करते हैं. जैसे सरसों का पौधा है तो इसका भी हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं.
0: इसके फायदों के बारे में बात करते हैं, क्या कुछ फायदे हैं हरी खाद के?
1: देखिए मैडम, इसके तो बहुत फायदे हैं और किसान भाइयों को मैं ये बताना भी चाहूँगा कि एकमात्र ये साधन है, संसाधन है मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखने का. और कम से कम लागत में अगर मिट्टी की उर्वर क्षमता को आप बनाए रखना चाहते हैं, टिकाऊ बनाए रखना चाहते हैं, तो हरी खाद का आप प्रयोग करेंगे. और हरी खाद के लिए खास करके दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है. उसमें हमने पहले भी बताया कि जैसे सनई है, ढैंचा है, मूँग है, उड़द है, तो ये सारे जो दलहनी फसलें हैं और इसमें खासियत होती है कि ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित भी करते हैं और जड़ों में ही नाइट्रोजन को अवशोषित करके रखते हैं. तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि लगभग 78% नाइट्रोजन है जो मुफ्त में हमें उपलब्ध रहता है और पौधा इन नाइट्रोजन को अवशोषित करके जड़ों में फिक्स कर देता है. तो हमारी नाइट्रोजन की मांग, जो फसल की नाइट्रोजन की मांग है, वो कम हो जाती है. दूसरा, अगर हरी खाद का हम प्रयोग करते हैं तो खेत में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण करने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है. ऑर्गेनिक मैटर, जो कार्बनिक पदार्थ है खेतों में, उसकी जो कमी हो रही है उसकी मात्रा बढ़ती है, उसके वजह से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती है. इसके साथ ही साथ जो सॉइल का इरोजन है, क्षरण है उसको भी ये हरी जो हरी खाद जब हम लगाते हैं खेतों में तो उसको भी रोकता है, सॉइल के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है जिससे बायोलॉजिकल एक्टिविटी जैविक क्रियाएं बनी हुई रहती हैं, बरकरार रहती हैं, और साथ ही साथ खरपतवार नियंत्रण को अगर हम कहें कि जैविक विधि से एक अगर करना है तो हरी खाद एक बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है, उपाय है खरपतवार नियंत्रण करने का। तो इस तरह से हरी खाद के प्रयोग से कई एक प्रकार के फायदे हमारी मिट्टी को मिलते हैं, हमारे फसल को भी मिलते हैं।
0: अब बात करते हैं कि इसे किस रूप में कब उपयोग करना चाहिए।
1: मैडम आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि हरी खाद को कब और किस रूप में प्रयोग किया जाए, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हरी खाद को दो तरह से प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग दो तरह से करते हैं। एक तो जिस खेत में हमको हरी खाद का प्रयोग करना है उसी खेत में उस हरी खाद के रूप में जिस फसल को हम लगाने जा रहे हैं उसका हम बुआई उसी खेत में करेंगे, इसको बोलते हैं इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग। और जब उस हरी वो जो हमारा हरी खाद वाला फसल है जैसे ढैंचा को उसी खेत में हम बुआई करेंगे और उसी खेत में फिर पलट देंगे, तो ये कहलाएगा इन सिटू ग्रीन मैन्योरिंग। और जब ढैंचा को या सनई को या दूसरे हरी खाद को हम दूसरे खेत में लगाएंगे और फिर वहाँ से काट करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बना करके दूसरे खेत में हम प्रयोग करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तब वो एक्स सिटू ग्रीन मैन्योरिंग कहलाएगा। तो इस तरह से दो तरह से हरी खाद का प्रयोग करते हैं, और सबसे जो इसका सुगम और आसान तरीका है हरी खाद के इस्तेमाल का, इसके लिए हम दो फसलों के बीच का जो गैप होता है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस पीरियड में खेत खाली भी रहता है। जैसे गेहूं अगर हमारे यहाँ तो धान और गेहूं का फसल चक्र काफ़ी प्रचलित है, तो धान के बाद गेहूं लगाते हैं और गेहूं के बाद खेत या तो खाली रहता है या मूंग लगाते हैं। तो गेहूं कटने के बाद और पुनः धान लगाने के बीच का जो समय है 2 से 2.5 या 3 महीने का समय, उसका प्रयोग करके हम हरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हरी खाद को लगा सकते हैं। अगर हम मूंग लगा रहे हैं तो मूंग की फलियों को तोड़ने के उपरांत जब एक दो बार हम फली को तोड़ लेते हैं और जब लगभग फली ना के बराबर रहता है तब उस मूंग के पौधे को उसी खेत में हम समावेशित करते हैं, डाल देते हैं, इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तो वो भी एक ग्रीन मैन्योरिंग है। और अगर हम चाहें कि ढैंचा लगा के अगर हम ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं तो गेहूं की कटाई के उपरांत जब प्री मानसून रेन होता है तो उस प्री मानसून के द्वारा जो नमी प्राप्त होती है उस नमी का प्रयोग करके हम ढैंचा की बुआई कर सकते हैं खेतों में, और फिर 55 से 60 दिनों का जब वो पौधा हो जाता है तब उसको फिर हम उसी खेत में कैजुअल के माध्यम से हम दबा सकते हैं या एमबी प्लाव के द्वारा उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दो तरीके से हरी खाद का प्रयोग खेतों में करते हैं, और ऐसा करने से हमारी मिट्टी की उर्वर क्षमता, उपजाऊ क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है।
0: जी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता के बारे में अभी बता रहे थे कि ये बढ़ जाती है, और पैदावार को हरी खाद भी प्रभावित करती है, तो कैसे प्रभावित करती है इसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
1: जी हमने पहले आपको बताया है कि चूंकि हरी खाद में खास करके हम उन फसलों का प्रयोग करते हैं, हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि दलहनी फसल हो, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता दलहनी हरी खाद जो है उसमें होती है, तो नाइट्रोजन हमको मुफ्त में मिलता है जिसके वजह से नाइट्रोजन की मांग बढ़ जाती है और मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। दूसरा, जब हरी खाद को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो काफ़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिट्टी को उपलब्ध होता है जिसके वजह से खेत के अंदर जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसके वजह से बहुत सारी क्रियाएं जो एक्टिवेट हो जाती हैं और उसके वजह से मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं जो अनुपलब्ध फॉर्म में हैं पौधे को नहीं मिल पा रहे हैं वो भी पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात कि जब ये ग्रीन मैन्योर हरी खाद जब सड़ता है तो इसके सड़ने से दो तरह के एसिड निकलते हैं, और ह्यूमिक एसिड और फल्बिक एसिड। तो ये जो एसिड हैं, ऑर्गेनिक अम्ल हैं, जैव, इसके द्वारा क्या होता है कि जो फिक्स फॉर्म में पोषक तत्व है मिट्टी में, उसको घुला करके भी पौधे को उपलब्ध कराता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि उस पोषक तत्व जो अनुपलब्ध रूप में है उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है और पौधे उसको आसानी से ग्रहण करने लगते हैं, जिससे फसल जो हम फसल ले रहे हैं हरी खाद के बाद, उस फसल की उत्पादकता भी बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है और हमारी मिट्टी की जो भौतिक गुण हैं वो भी सुधर जाते हैं। और साथ ही साथ चूंकि इसके व्यवहार से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिट्टी की बढ़ जाती है, तो जल धारण की क्षमता बढ़ने से मिट्टी में जो भी फसल हम लगाते हैं उसको नमी की कमी नहीं होती है और उसको सुचारू रूप से नमी उपलब्ध होता रहता है, तो हमें पानी की भी बचत होती है। तो इस तरह से कई एक प्रकार से ये हरी खाद हमारे मिट्टी को भी मजबूत बनाते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं और फसल को पोषक तत्व भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ जाता है।
0: जी, इस जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और किसान भाइयों, आप हरी खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं बिना किसी हानिकारक तत्वों के। तो अगले दिन आपसे फिर मुलाकात होगी, फ्रिक्वेंसी यही याद रखें 90.8 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।
2: 1, 2, 3 बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सरकार ने HPV का टीका सभी 14 साल से ऊपर के बच्चियों के लिए मुफ्त कर दिया है। HPV का टीका लगाना शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो आज हम बात करेंगे HPV टीके की और कोशिश रहेगी कि आपके मन में जो भी सवाल हैं उनके जवाब भी हम दे सकें। जब भी कोई पहल होती है खास तौर पर सेहत के मामले में, तो हमारे परिवारजनों के मन में डर रहता है और कई सारे सवाल भी रहते हैं, खासकर जब सोशल मीडिया हमारे पास है और सोशल मीडिया और मोबाइल पर चल रही बहुत सी बातें होती है, बहुत सी अफवाहें होती है। तो उन अफवाहों से लोगों के मन में उलझन और सवाल दोनों ही पैदा होते हैं। इसलिए आज हम कुछ आम सवाल उठाएंगे और आसान भाषा में उनके जवाब देंगे। तो बस आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, आपको आज HPV टीकाकरण से जुड़े ढेर सारे सवाल मिलने वाले हैं। इसलिए क्योंकि हमने बहुत से सवाल इकट्ठे किए हैं और एक के बाद एक हम उन सवालों को पढ़ेंगे और जवाब भी देंगे। तो पहला सवाल है, HPV टीका किस लिए लगाया जाता है? दोस्तों, HPV टीका सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव में मदद करता है। ये कैंसर महिलाओं में होने वाली गंभीर बीमारियों में से एक है। अगर समय पर बचाव हो जाए तो बीमारी का खतरा काफी कम किया जा सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि महिलाएं HPV टीका जरूर लगाएं। और दूसरा सवाल है कि क्या HPV टीका सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। HPV टीका सुरक्षित माना जाता है और ये दुनिया के कई देशों में लगाया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। टीका लगने के बाद हाथ में हल्का दर्द, सूजन, हल्का बुखार, सिर दर्द या चक्कर आ सकते हैं और ये सामान्य बातें हैं। आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाती है और कोई भी टीका आप लेते हैं तो ऐसी परेशानी थोड़ी बहुत होती है जो कि कुछ दिनों में ठीक भी हो जाती है। अब तीसरा सवाल, क्या इसका कोई बड़ा दुष्प्रभाव होता है? गंभीर दुष्प्रभाव बहुत दुर्लभ है, यानी कि गंभीर दुष्प्रभाव ना के बराबर होते हैं। इसलिए आप अफवाहों पर भरोसा ना करें कि अगर आप HPV टीका अपनी बच्ची को लगवाएंगे तो उन्हें कोई परेशानी हो जाएगी। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल बचते हैं, कोई चिंता होती है, तो आप आशा दीदी, ANM CHO या फिर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भी आप बात कर सकते हैं। वो आपको और भी अच्छी तरीके से समझाएंगे कि इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है और बहुत रेयर होता है। चौथा सवाल कि ये टीका बच्चियों को ही क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, क्योंकि HPV संक्रमण आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है और ये बीमारी महिलाओं में होती है। इसलिए किशोरियों को, बच्चियों को बीमारी आने से पहले ही सुरक्षा देने के लिए टीका लगाया जाता है। कहते हैं ना कि बाद में इलाज से बेहतर है कि आप पहले ही बचाव कर ले, तो ये टीका बचाव के लिए है। पांचवा सवाल जो बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियां इस सवाल से चिंतित है कि क्या इससे भविष्य में मां बनने पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। HPV टीका मां बनने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। ये कैंसर से बचाव के लिए है। बांझपन या कमजोरी से इसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैंसर से बचाता है, सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। छठा सवाल ये है कि क्या मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही बातें सही है? बस यही बात तो आपको हम बताने आए हैं कि हर बात जो मोबाइल और सोशल मीडिया पर चल रही है वो सही नहीं होती। कई बार बिना जांचे परखे डर फैलाया जाता है और कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो किन्हीं तक एक पहुंची और उसने अपने पास वाले को दो बातें पहुंचाई, फिर तीन बातें, चार बातें, इस तरीके से बहुत बड़ी चढ़ी बात हम तक पहुंचती है। इसलिए कोई भी बात आप तक सोशल मीडिया या मोबाइल के जरिए पहुंचे तो उसे बिना जांचे परखे उस पर भरोसा ना करें। स्वास्थ्य से जुड़ी जो भी जानकारी होती है वो हमेशा आपको चाहिए कि प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से ही ले। आपको इन्हीं जगहों से सबसे भरोसेमंद जानकारी मिल सकती है। अब सातवां सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा? जी हां, अगर आपके मन के जो भी सवाल हैं और जो उलझन है वो दूर हो गए हैं तो सबसे जरूरी सवाल कि टीका कब और कहां लगेगा, इसके लिए आप अपनी आशा, ANM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। वहीं आपको सही तारीख, जगह और पात्र उम्र की जानकारी देंगे। तो साथियों, याद रखिए, अफवाह से नहीं, सही जानकारी से फैसला लें। HPV टीका बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। सेहत सही, लाभ कई की ओर से ये संदेश जनहित में जारी है। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की स्वस्थ रहें, खुश रहें और अफवाहों से बचें। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम उमंग में। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुविचार जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। लिखते हैं,
2: संभव कार्य करने के लिए ताकत चाहिए किंतु असंभव कार्य करने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण चाहिए।
0: बहुत सुंदर विचार, आप सबको धन्यवाद। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ लुकाऊ पाली छतवन से पुनीत राम सूर्यवंशी, निर्मला सिंह, निहारिका सिंह और पंकज सिंह सूर्यवंशी।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
0: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू।
2: और राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके सबके प्यारे कार्यक्रम उमंग से। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी विभिन्न खनिजों के बारे में। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यदि आई तो जरूर लिख भेजिएगा अपनी प्रतिक्रियाएं
0: जी।
2: तो अजीत जी, क्यों ना इस सप्ताह हम चर्चा करें एक ऐसी चीज की जो हम सबके चारों ओर उपलब्ध है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है, लेकिन
0: जी लेकिन उनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की
2: जी।
0: आज हम चर्चा करेंगे पेड़ों के बारे में और लेंगे उनके बारे में दुर्लभ जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं विमलेश जी से।
2: जी अजीत जी, तो श्रोताओं आपको बता दें, पेड़ हमारे ग्रह यानी पृथ्वी के सबसे पुराने बड़े और महत्वपूर्ण जीव हैं। इनकी उत्पत्ति लगभग 40 करोड़ साल पहले हुई थी। ये जानवरों और मनुष्यों की उत्पत्ति से भी बहुत पहले के हैं।
0: जी विमलेश जी, प्राप्त दुर्लभ जीवाश्मों से पता चलता है कि पेड़ पौधों के पैदा होने के लगभग 40 करोड़ वर्षों के बाद मनुष्य और शेष जीव जगत अस्तित्व में आया
2: जी।
0: विमलेश जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में है और वो ये है कि पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आए।
2: जी अजीत जी, सचमुच ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पेड़ों की उत्पत्ति से पृथ्वी पर ऑक्सीजन बढ़ी, मिट्टी बनी और कार्बनिक गैसें कम हुई, जिनसे जानवरों के लिए भूमि पर रहना आसान हुआ। बिना पेड़ों के ऑक्सीजन कम मिलती, जिसके कारण स्थलीय जीवों का रहना असंभव हो जाता
0: जी। तो ये तो बात हुई पेड़ पौधों की उत्पत्ति की
2: जी।
0: चलिए अब जानते हैं पेड़ों के बारे में कुछ रोचक बातें। इनकी दुनिया ऐसे दुर्लभ और अनोखे रहस्यों से भरी है जो श्रोताओं सचमुच हमें हैरान कर देंगी
2: जी। सचमुच, तो श्रोताओं आपको बता दें कि पेड़ों का अपना सोशल नेटवर्क होता है, जिसे वनस्पति विज्ञानी वुड वाइड वेब कहते हैं।
0: अरे वाह, वुड वाइड वेब यानी यहाँ भी इंटरनेट की तरह www है
2: जी।
0: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
2: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है
0: जी। हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
2: बिल्कुल,
0: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
2: जी।
0: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं
2: जी। ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए

0: लगते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: सुना आपने? कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।

0: attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces the...
1: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
2: हाँ बेटा।
1: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
2: यही कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते हैं।
1: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
2: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
1: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
2: हो सकता है कि...
3: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
2: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
3: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं, आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
2: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये है अब्दुल कादिर मोहम्मद फादल।
1: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुंचा दो।
2: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो, आओ आओ चलो आओ।

0: और सुनाओ कादिर,
1: तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
2: अब तो पूरा होने वाला है।
3: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
2: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
1: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
3: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं। अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
2: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
2: हाँ
3: पापा, पापा वो देखो, नील नदी है ना।
1: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
2: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
1: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
2: नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूँ।
1: अच्छा अच्छा।

0: बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे हैं। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाए।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: चलो।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, मम्मी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की मम्मी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ, खाते रहो, आओ।

0: कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल, देखिए काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे। इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई खादर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछ कर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं। कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यही कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर।
2: हाँ।
1: जानते हैं, बांध के पीछे जो झील बनाई गई है, ये मंदिर उसमें डूब गए होते। लेकिन वैज्ञानिकों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन मंदिरों को बड़ी होशियारी से घाटी से हटवाकर पहाड़ी पर स्थापित करवा दिया।
0: पापा, मैं भी देखूंगी वो मंदिर।
2: अरे मुझसे कहने का क्या फायदा बेटा, अपने कादिर अंकल से कहो।
0: अंकल ले चलेंगे ना हमें?
1: हाँ हाँ, अगर तुम एक पहेली बूझ दो तो।
0: क्या फिर से पहेली? क्या आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात।
3: नमस्कार।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ಉನ್ನತ್ ಕೃಷಿ. नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और ये है आपका अपना पसंदीदा एफएम ग्रीन. तो हर रोज़ उन्नत कृषि की बातें होती हैं, उन्नत बातें होती हैं खेती बाड़ी की, और साथ ही हमारे पशुपालक भाइयों के लिए भी हम कुछ अलग सी बातें लेते हैं. और अगर मछली पालन का शौक़ है और आप उसे आय का जरिया बना रहे हैं तो आपके लिए आज एक खास विषय हम लेकर आए हैं. जी हाँ, बिल्कुल आपके लिए ये है समेकित मत्स्य पालन. आज मछली पालन के बारे में हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर एम जेड होदा सर. और मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पशु विज्ञान विभाग में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय से हैं. सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम.
1: धन्यवाद
0: सर. सबसे पहले तो ये बता दीजिए, क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं, अभी थोड़ी क्रिएटिविटी उनकी माइंड हो रही है कि चलो मछली पाला जाए, देखते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि मछली पालन हम क्यों करें, क्यों ज़रूरी है ये?
1: देखिए, मछली पालन खास करके कोविड के बाद से हमारे जो पढ़े लिखे युवा छोटे छोटे नौकरियाँ बाहर करते थे और उनकी सारी नौकरियाँ छूट गई हैं, उसमें रोजाना हमसे हमको लगता है 3-4-5 इंजीनियर्स कैटेगरी के लोग और बड़े प्रोफेशनल्स अच्छे लोग आ रहे हैं जिनके पास जमीन काफ़ी है लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और वो सीधे हमसे मत्स्य पालन के बारे में जानकारी हासिल करने आ रहे हैं और उसको बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. मत्स्य पालन एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत ही कम समय में और बहुत कम समय में वो तकनीकी जानकारियां प्राप्त करके अपनी आय को दोगुनी कर सकते हैं. मत्स्य पालन खास करके हमारे बहुत सारे किसान हैं, मत्स्य पालन अगर आप करते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप भटके नहीं. बहुत हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं तिलापिया पालना है, पेंगीशियस पालना है और ये बहुत सारे अलग अलग टाइप की बातें करते हैं. मैं उनको ये सलाह दूंगा कि कभी भी आप जो हमारी जो 6 मेजर कार्प हैं, रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प, इन मछलियों का पालन आप सबसे पहले करें और जब इसमें आपको दक्षता मिल जाए उसके बाद आप दूसरा पालन करें. मछली पालन क्यों करें, ये सबसे बड़ा सवाल है. तो मछली पालन के लिए सबसे बड़ी बात है कि इसके मार्केट की खोज की आवश्यकता नहीं होती है. आप जिस वक्त ताज़ी मछलियाँ मारेंगे वहीं पर मार्केट अवेलेबल है और लोग आपके यहाँ से ही ले जाते हैं. ये सबसे बड़ा रीज़न है. मार्केट प्रॉब्लम इसमें ज़रा सा भी नहीं है और बहुत ही कम लागत में हम बहुत अच्छी आमदनी, जो साधारणतः 1 एकड़ के फसल में हम लोग पूरे साल फसल चक्र को अपनाते हैं तो इससे 30 से 35 हज़ार रुपए की शुद्ध आमदनी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग 1 एकड़ मत्स्य पालन करते हैं तो कम से कम हम 1,65,000 से 1.25 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी करते हैं. इसीलिए हम कहेंगे कि वो युवा जिनके पास मछली पालन के साधन उपलब्ध हैं और वो कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर लोग लीज पर भी ज़मीन लेकर के मत्स्य पालन कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, और हम लोग बहुत भागलपुर और एक बांका हमारा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा हम लोग यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं.
0: तो श्रोताओं, आपने जाना है अभी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कम लागत में आप अधिक मुनाफा पा सकते हैं, पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको. अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यहाँ पर आप जो है पूछ सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर से में आकर हमारे होदा सर से मिलके. सर, अब बात करते हैं तालाब निर्माण की. ये बहुत ज़रूरी है तालाब निर्माण के हम बारे में जाने, क्योंकि मछलियों को इन्हीं में रखना है हमें, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें तालाब निर्माण के दौरान?
1: किसान भाइयों, मत्स्य पालन आप 2-3 जगहों पर करते हैं साधारणतः. या तो आपके पास पहले से निर्मित तालाब होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो नए तालाब का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन या चौड़ में मछली पालन करते हैं. तीनों जगह पर आपको अलग अलग सावधानी बरतनी होगी. देखिए, आपके पास अगर पुराना तालाब है तो आप सबसे पहले, अगर संभव है कि आप उसकी जल निकासी कर सकते हैं तो बिल्कुल जल निकासी को करें. हमारा किसान सबसे बड़े प्रॉब्लम में ये होता है कि वो तो मछली पाल लेता है लेकिन उसको हार्वेस्ट नहीं कर पाता, उसको निकाल नहीं पाता. उसके पीछे बेसिक रीज़न है कि वो अपने कभी अपने तालाब की तलहटी को नहीं देखा है. कहीं ऊंचा होता है किसी की तलहटी, किसी कहीं नीची होती है. जब आप जाल देते हैं तो मछलियाँ एक साइड से दूसरे साइड निकल जाती हैं, आप हार्वेस्ट नहीं कर पाते हैं मछली रहते हुए भी. तो हमारा ये बिल्कुल सलाह होगा, जब आप पुरानी तालाब में सीधा मछली पालन करना चाहते हैं तो कभी भी आँख बंद करके उसमें जितनी मछलियाँ हैं सबसे पहले आप सारी मछलियों को हटा लें, संभव हो उस पानी को खाली करें और देखें कि तालाब की तलहटी कैसी है. मछली पालन के लिए मात्र हमको 1.5 मीटर पानी की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता हमें नहीं है. तो आप देख लें कि कितने लेवल पर आप 1.5 मीटर पानी का ये स्थान कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, वो ज़रूरी है। तो उसके अंदर अगल बगल बड़े बड़े पौधे हों तालाब के ऊपर तो उसको आप हटा दें, पूरी सूरज की रोशनी उसमें प्रॉपर जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था आप करें। तीसरा, जब अगर नव निर्माण आप तालाब का कर रहे हैं तो आप ध्यान दें कि तालाब की लंबाई जो है पूर्व और पश्चिम दिशा में, ये अगर होता है ना तो उसमें आप हमेशा देखते होंगे कि हवा या तो पूर्व से चलती है या पश्चिम से चलती है, तो एक लंबा सरफेस एरिया मिल जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए हमारे तालाबों में, और उसमें जो है हवा का घुलन आसानी से होता है। तो हमेशा आप कोशिश करें कि रेक्टेंगल शेप में, किताब के शेप में आप अपने तालाबों का निर्माण करें, और तालाब का निर्माण बिल्कुल गड्ढे नुमा ना करें। देखिए, आप तालाब को बिल्कुल एक कोण को आप जो है बिल्कुल एक कोण के रूप में करें, बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शेप में कर्व के रूप में होना चाहिए तलहटी से ऊपर की तरफ, जिससे कटाव ना हो। मछली मारने में आप एक तरफ से अगर जाल लेके चलते हैं, अगर ढाल साइड जो है उसका ढाल नुमा होता है तो मछली को मारते वक्त आपको बड़ी सावधानी होती है, आसानी होती है। आप बिल्कुल एक तरफ से चलते जाएंगे और सारी मछलियाँ आपकी एक तरफ आ जाएंगी। ये तालाब, अब आपने नया तालाब निर्माण किया तो आप हमको सबसे पहले क्या करना है, हमारे किसान क्या करते हैं तालाब में पानी भरे और सीधे उसमें जो है मछली को ला के डाल देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आप तालाब का निर्माण कर लेते हैं और उसके बंड को अच्छे से बनाएं, जो भिंडा होता है उसका बहुत उपयोगिता है। दो तरीके से नया तालाब बनता है, अगर आपके यहाँ पर पानी ठहरने का आपके यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध है और अच्छी ज़मीन है जहाँ पानी ठहरता हो, तो आप ये 5 मीटर के जो हम कहे थे आपको कि लगभग 1.5 मीटर 5.5-6 फीट के आसपास का जो पानी होता है, तो इसमें आप बंड में भी आधा साइज आप ले सकते हैं। जब आप 3 फीट गड्ढा करेंगे और 3 फीट जब एम्बैकमेंट को ऊंचा करेंगे तो उससे भी आपका तालाब निर्माण हो सकता है वैसी जगहों पर जहाँ पर पानी ठहरता हो, अच्छा होता हो। तो उसके बाद आप जब तालाब कर लेते हैं तो आप क्या करें कि उसमें 3-4 kg आप DAP को चारों तरफ छींट दें, 20-25 kg चूना आप उसको घोल बनाकर उसमें छींट दें, 3-4 kg यूरिया छींट दें और उसके बाद उसमें पानी को भरें। गोबर हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो पूरा डाल देते हैं तालाब में, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ पर किनारे पर जहाँ पर पानी सटता होगा वहाँ पर 3-4 जगहों पर आप आधा आधा टेलर गोबर गिरा दें, धीरे धीरे वो सीपेज करके फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन बनाता जाएगा और उससे 10-15 दिनों के बाद आप वहाँ आसानी से मछलियों को डालें, आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा।
0: जी, तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है तालाब निर्माण के समय। सर, अब बात करते हैं कि अगर हम 1 एकड़ के तालाब की बात करें और इसमें कितनी संख्या में हमको मछली डालनी चाहिए।
1: देखिए किसान भाई, मछली का बीज हमेशा नहीं मिलता है, ये हमको जो भी हमारे सबसे अच्छे मत्स्य पालक है उसको ये बात समझ लेनी होगी। अप्रैल माह के अंत से आपको अगस्त के मिड तक ही हमारा जो 6 इंडिजिनस और एग्जोटिक कार्प हैं जो वो उनका बच्चा तैयार होता है। जो हमारे अच्छे मत्स्य पालक हैं वो एक छोटा सा अलग से तालाब रखते हैं और वहाँ पर जीरा का संचय करते हैं, जिससे कि 6 महीना में अगर आप अच्छी तरीके से भोजन करते हैं तो वो मछली आपको 1-1.5 kg के आसपास हो जाती है। उस वक्त आपको बीज मिलता नहीं है, तो पुनः जो आपने बीज संरक्षित किया है उस बीज का इस्तेमाल करके फिर आप 6 महीने को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। देखिए, हम एक आज बहुत ही की पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। जो भी हमारे किसान भाई हैं जो मत्स्य पालक हैं, आप कोशिश ये करें कि बीज की संरक्षण, बीज का बचाव आप करना अगर सीख जाएंगे तो मत्स्य पालन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास अगर छोटा तालाब है तो कृषि विज्ञान केंद्र सबौर भागलपुर में हम लोग जीरा भी देते हैं, अंगुलिका भी देते हैं और हम लोग फ्राई भी देते हैं। जो हमारे आजकल हम लोग इस चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि जो हमारे मत्स्य पालक है कम से कम जिनके पास 2-3 की संख्या में तालाब है, एक तालाब में वो जीरा से फ्राई और फिंगरलिंग अंगुलिका बनाने की प्रक्रिया को सीख लें। इससे दोहरा लाभ है। दो समय जीरे का डिमांड बहुत अधिक होता है, पहला जो आप मार्च के आसपास काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, हमको मछली का बच्चा चाहिए, मछली का बच्चा चाहिए, उस वक्त कहीं बन नहीं रहा होता है, और दूसरा अगस्त के बाद। ये दो समय बहुत ही बड़ा समय होता है जहां बीज की स्कार्सिटी होती है, तो आपके पास जो बीज संरक्षित रहेगा तो आप मार्च में भी जीरा को बेच सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जितना आमदनी आप मछली उत्पादन करके 1 एकड़ के तालाब में नहीं ले सकते हैं, अंगुलिका का संरक्षण करके आप ले सकते हैं। पहला, अब बताइए एक एकड़ की तालाब है, अब डिपेंड करता है कि आप किस अवस्था की मछलियों को डालते हैं। जिसको फ्राई हम लोग कहते हैं वो एक इंच के आसपास का होता है, तो एक एकड़ के तालाब में वो 10,000 की संख्या में हम लोग फ्राई को डालते हैं। जब हमारी मछलियों का साइज एक इंच का मिले हमें तो हम लोग एक एकड़ के तालाब में 10,000, और जब हमको 3 इंच अंगुलिका जब अगर हम डालते हैं तो वो 4,000 डालते हैं, और इसकी भी मात्रा सीमित है। देखिए जो हमारा जो 6 मेजर कार्प है, जो हमारा रोहू है, सिल्वर कार्प है, ग्रास कार्प है, कतला है, मिरिगल है, ये जो हमारी जो मछलियाँ हैं उसमें जो कतला और सिल्वर कार्प है ऊपरी सतहों पर भोजन करती हैं। दूसरा जो रोहू और ग्रास कार्प है वो तालाब के मध्य सतह पर भोजन करती है, और तीसरा जो कॉमन कार्प और मिरिगल है ये तालाब की निचली सतह से भोजन लेती है। तो आप ये जान ले कि अगर 100 मछली आपको अगर डालनी है तो उसका 30% आप कतला और सिल्वर कार्प डालें, 30% आप रोहू ग्रास कार्प डालें, और 40% जो है आप डालें कॉमन कार्प और मिरिका। अगर इस संख्या में आप अगर आप देते हैं मछलियों को, साधारणतः हमारे ग्रामीण परिवेश में किसानों के दिमाग में एक भ्रम है कि जितनी ज़्यादा संख्या में हम मछलियों का बच्चा डालेंगे उत्पादन उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन इसके उल्टा रिजल्ट देखने को मिलता है। 6 महीने बाद 8 महीने बाद किसान आते हैं, सर हमारे तालाब में नहीं बढ़ रहा है मछलियाँ, तो कैसे होगा? एक तो हम लोग आहार प्रबंधन नहीं जानते हैं, संख्या बहुत बढ़ा के रखी है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खाना नहीं देते हैं, और पूरा साल आपका वेस्ट हो जाता है। तो ये मछलियों की जो मात्रा है इसको सीमित करना नहीं करिएगा तो आप मछली में जो उत्पादकता है नहीं ले सकते हैं।
0: जी सर, अभी आपने कहा कि आहार प्रबंधन हमें मालूम नहीं होता है, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: देखिए किसान भाइयों, हम लोग ग्रामीण परिवेश में मछली को तालाब में डाल के सिर्फ मछली को निकालने जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वहाँ से हमको बड़ी बड़ी मछलियाँ मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। मछलियों के उसके वजन का 2% भोजन प्रत्येक दिन चाहिए होता है। जिस दिन आपने, मैंने 4,000 संख्या आपको बताया कि एक एकड़ के तालाब में अंगुलिका को डालना है, और एक अंगुलिका का दाम 20 ग्राम होता है, और 4,000 से 20 ग्राम को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुना कर लीजिए, जो टोटल वजन आएगा उसका 2% ही भोजन देना। और मछलियों का भोजन बहुत आसान है, मछलियों का भोजन सरसों की खल्ली होती है, राइस ब्रान होता है जो हर जगह अवेलेबल होता है। आप कोशिश करें कि इसका बराबर बराबर मात्रा में आप एक पैकेट बना लें जूट के बोरे में 10-10 किलो। देखिए मैं एक नटसेल में आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। 10 किलो आपका अगर एक एकड़ का तालाब है तो 10 किलो खल्ली, 10 किलो राइस ब्रान और 50 से 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर, एग्रीमीन फोर्ट, बहुत सारे खनिज मिश्रण मिलते हैं, इसको आप एक जूट के बोरे में भर दें, इसको हल्का सा भिंगो दें और जूट के बोरे में नीचे से छोटा सा छेद कर दें, और अपने तालाब के एक किनारे पर कमर भर पानी में एक बांस गाड़ के, तालाब में दो जगहों पर ऐसा करके बांस गाड़ के आधा जूट का बोरा को पानी में डुबा दीजिए, और नीचे से देखिएगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा, सारी तालाब की मछलियाँ वहीं आकर भोजन करेंगी। और जब कभी वो खाली हो जाए आप जो है उसमें पुनः उसको भर दें, ये एकदम साधारण तरीका है। एक बात हमको ध्यान देनी है यहाँ पर, जब कभी पानी का रंग भूरा हो जाए तो आप ये समझेंगे कि वो उसमें संख्या बहुत खाने की ज़्यादा हो गई है, खाने की अधिकता हो गई है, आप उस समय कुछ समय के लिए भोजन देना बंद कर दीजिए। फिर जब पानी सामान्य कलर का हो जाए तो आप उसमें पुनः जो है ये करें। तो आपको हम समझते हैं कि, और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि आप 3 महीना पला हुआ, 4 महीना पला हुआ बच्चा कहीं से भी खरीदें, या आपने आप छोटे तालाब में उसको बनाएं, वो खरीद करके जब आप बड़े तालाब में डालते हैं तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। देखिए हमारा जो भागलपुर का एरिया है, चानन का एरिया है, और हमारे जो कोसी के एरिया है, हमारा जो किसान है सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि हम एक चीज़ के लिए ताकीद करना चाहेंगे आपको कि जब आप नदी से बीज लेते हैं तो सीधा नदी से बीज लेकर आप सीधे कभी भी अपने तालाबों में नहीं डालें। ऐसा करना आपको अब दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है, क्योंकि गंगा में जो बीज होती है, नदियों से जो बीज प्राप्त होते हैं उसमें बहुत सारे बुआरी होती हैं, बहुत सारी मागुर जो हमारी कैटफिश होती हैं, और बहुत सारी ऐसी मछलियां होती हैं जिसका संचय हमें तालाब में बिल्कुल नहीं करनी है। वो एक तरह से कहिए मांसाहारी मछलियाँ होती हैं, अगर उनको तालाब में खाना नहीं मिलेगा तो अपने से छोटे मछलियों को वो खाना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा कि जब 5 बुआरी आपके तालाब में आ गया, और एक बुआरी को उसके वजन का लगभग 3 गुना भोजन प्रत्येक दिन चाहिए होता है, अगर 5 बुआरी किसी ने आपको डाल दिया, आपने गलती से उसमें डाल दिया, तो आपने जो मछली पालना है वो सारी मछलियों को खा करके आपको बहुत बड़ी आर्थिक हानि देगा। जीरा संचय नदियों से करें, मैं इसको इसके फेवर में हूँ, लेकिन जब कभी भी आप जीरा या मछली का बच्चा का संचय बाहर से करते हैं तो उसको ला करके एक छोटे से गड्ढे में रखें और वहाँ से उसको निकाल कर रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, जो मैंने संख्या बताई है उसको गिन कर अगर आप डालेंगे तो हम आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। और मछली पालन में मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से 6 महीने में आप अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं।
0: तो ये सारी बातें जो है विस्तार में डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, आशा करते हैं कि आपको ज़रूर कुछ जानने को मिला होगा। क्या आपको नहीं करना है, क्या करना है, वो भी आपको ज़रूर मालूम चल गया होगा। तो डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले दिन अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसे फ्रीक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है कर...

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
0: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
3: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
0: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
3: 11 दोस्त?
0: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
3: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
3: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
3: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
4: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ कई। दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक हमने बहुत सारी बातें की है और बहुत सारी बीमारियों के बारे में आपको बताया है, पर आज हम बातें करने वाले हैं टीबी के बारे में। इसके पीछे खास वजह यही है कि आज पूरे विश्व में वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, और वर्ल्ड टीबी डे को मनाने की शुरुआत क्यों की गई, और इसके बारे में बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, और टीबी कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, इसे कैसे बचा जा सकता है, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, इन सब के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मिथिलेश कुमार झा सर, आप हैं STLS। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
5: सर। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज वर्ल्ड टीबी डे मनाया जा रहा है, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और कब इस वर्ल्ड टीबी डे मनाने की शुरुआत हुई थी?
7: 1882 में रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक के द्वारा जो है सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की गई। तब से लेकर के एक हम लोग सेलिब्रेशन के तौर पर 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस के रूप में मनाते हैं, जहाँ पर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुए, SWC सेंटर हुआ, सदर अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर होते हैं, वहाँ पर हम लोग जो है सो अनेक प्रकार की रैली, झांकियाँ और अनेक तरह के कार्यक्रम को चला करके या लोगों को बताते हैं कि टीबी क्या है।
5: सर, इस साल वर्ल्ड टीबी डे का थीम क्या है?
7: इस बार का स्लोगन है यस वी कैन इन टीबी, लीड बाय भारत, पावर्ड बाय पीपल ऑफ भारत। यह संदेश स्पष्ट करता है कि टीबी के खिलाफ जंग केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह जन आंदोलन बनना चाहिए, जिससे कि जो भी एनजीओ हैं, जो भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सबकी भागीदारी है कि इस बीमारी को समाप्त किया जाए।
5: बिल्कुल सर, लेकिन जब हम बीमारी को समाप्त करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उस बीमारी को समझना चाहिए कि वो बीमारी है क्या। तो सबसे पहले बताइए कि टीबी क्या है और ये कैसे फैलती है।
7: टीबी बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी कि बलगम को एक जगह से दूसरे जगह फेंकने पर जो है सो आदमी को इन्फेक्शन हो सकता है।
5: और अभी हमारे क्षेत्र में टीबी की वर्तमान स्थिति क्या है?
7: अभी हमारे जो क्षेत्र में है लगभग में प्रत्येक पीएससी में लगभग 100 जांच होती है, जिसमें कि 5 से 7 टीबी पेशेंट जो है स्पुटम पॉजिटिव जो है सो मिलता है, जिसके कि फेफड़े की टीबी होती है और कुछ अन्य है जो कि लिम्फ नोड्स हुए शरीर के। सबसे बड़ा चीज़ है कि शरीर टीबी बीमारी किसी शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फेफड़े की जो टीबी होती है उसको बहुत अच्छे से केयर करके जो है सो हम लोग दवा चलाते हैं।
5: मतलब टीबी जिसे हम समझते हैं कि सिर्फ फेफड़ों में होता है ये सही नहीं है, वो किसी भी अंग में हो सकता है।
7: नहीं, 70% जो है फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, या लिम्फ नोड्स बन के या एब्डोमिनल कॉक्स हो सकता है, यूट्रस में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जेनेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है।
5: अच्छा, तो सर टीबी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? और कई बार लक्षण बहुत सामान्य होते हैं, शायद हम उन्हें नज़रअंदाज भी कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुरुआती लक्षण को कैसे पहचानना चाहिए?
7: 2 सप्ताह से ऊपर खांसी हो रहा हो, भूख नहीं लग रहा है, हेमोपोटाइसिस यानी कि बलगम के साथ में खून आ रहा हो, शाम के समय में जो है सो बुखार लग रहा हो, ऐसे परिस्थितियाँ में जो है सो हमें नज़दीक के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जांच एवं दवा की सारी व्यवस्था उपलब्ध है।
5: सर अभी आपने जांच की बात की, तो किसी भी व्यक्ति को जांच कब करवानी चाहिए? उसे क्या, जैसे कि आपने बताया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो, तो और भी कोई ऐसे लक्षण जो समझ आए? तो कई बार हमें लगता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन होगा, मौसम की वजह से होगा, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हो सकती है जिसे हम समझ कर जाँच करवाने जाते?
7: अभी हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के नीचे स्तर से लेकर के मैंने JLMCS तक में जो व्यवस्थाएं हैं कि कम से कम जो है सो खांसी हो जाए, बुखार हो रहा हो, भूख नहीं लगे, तो लगभग सारे जो है सो डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर जरूर लिख देते हैं स्पुटम 4 APऔर एक्सरे लिखने की व्यवस्था सब जगह उपलब्ध है।
5: और जाँच के बाद अगर किसी को टीबी निकल जाता है तो

0: होने लगता है, 6 महीने पूरे भी नहीं हुए, हम महसूस करने लगते हैं कि हम स्वस्थ हो गए, और ऐसे में मरीज बीच में दवा छोड़ देता है। तो अगर ऐसा वो करता है तो इससे क्या खतरा हो सकता है?
1: जो व्यक्ति बीच में दवाइयाँ छोड़ते हैं उसको जो ऐसो MDR होने की संभावना होती है कि जो भी हम दवाइयाँ रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड या किसी जो दवाइयाँ खिला रहे हैं वो रजिस्ट जो है सो करना करेगा तो वह जो है सो पेशेंट को MDR होने की संभावना होती है। इसीलिए हमें दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, हमें 6 महीना तक दवाइयाँ पूरी तरह खानी है। उसके लिए सरकार या जो भी जन भागीदारी जिनकी है वो सारे लोग लगे हुए हैं कि हमें हर रोगी के लिए सुपरविजन की व्यवस्था है, पर्यवेक्षण की व्यवस्था है, उसके घर तक की जाने की व्यवस्था है। सब लोग जाते हैं और जाने के बाद उसे जो है सो मरीज को ठीक करने का प्रयास करते हैं।
0: सर ये भी मैंने सुना है कि अगर दवाई छोड़ दे तो ड्रग रेजिस्टेंट TB हो जाता है, तो ये अगर किसी को ड्रग रेजिस्टेंट TB हो गया तो उसके बाद क्या किया जा सकता है?
1: उसके लिए भी सरकार ने सारी व्यवस्था करके किया हुआ है कि मायागंज है, JLMCH जो है, JLMCH में भी सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। वहाँ पर जो है सो TRUNET CVNET की जांच की व्यवस्था है और वहाँ पर जो है जांच किया जाता है। जांच करने के बाद में उसमें भी 9 महीना की जो दवाइयाँ हैं वो सरकार के द्वारा जो है सो उपलब्ध हैं, जिसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं।
0: तो मतलब दवाएं तो मुफ्त हैं ही, कई बार लोग इसलिए भी जांच नहीं कराते कि पैसे लग जाएंगे।
1: जो भी जैसे 6 महीना की दवाइयां देना, उसका जांच कराना, MDR है या नहीं है, दवा रजिस्टर कर रहा है या नहीं कर रहा है, सारी दवाइयां सरकार में उपलब्ध हैं, सारी जांच की व्यवस्थाएं सरकार में उपलब्ध हैं।
0: सर MDR के बारे में आप बोल रहे हैं, MDR क्या है?
1: जो भी दवाइयाँ हम लोग जो खाते हैं जिसमें कि 4 प्रकार की दवाइयाँ चलती हैं, रिफाम्पिसिन, इथोम्बुटोल, पैराजिनामाइड, जो दवाइयाँ चलती हैं वो क्या होता है कि हमारे शरीर पर जो है रजिस्ट कर जाती है। रजिस्ट का मतलब होता है वो काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जो है हम लोग जो है सो उसे सीविनेट करवाते हैं, उसके बाद रजिस्ट है एसोनियाजाइड या रिफाम्पिसिन, यदि रजिस्ट होता है कि उसके प्रतिरोधक क्षमता उसके शरीर पर कोई काम नहीं कर रही है, तब हम लोग जो है सो उसे MDR के लिए जो है सो प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: क्या लक्षण होते हैं इस बारे में जान लिया, इलाज किस तरीके से है ये जान लिया, लेकिन सबसे बेहतर होता है कि हम किसी भी बीमारी से खुद को बचा कर रखें। तो TB से बचाव के लिए आम लोग क्या सावधानियां बरत सकते हैं?
1: जो भी TB मरीज हैं उसका जांच सभी समय पर होना, उसके परिवार के जितने फैमिली मेंबर हैं उसका भी जांच करवा लेना है। जो भी स्पुटम इधर उधर खखार जो फेंकते हैं वो इधर उधर नहीं फेंकना है, किसी एक जाकर के घर के कोने के किसी सिरे में फेंकना है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि यदि किसी को किसी मरीज घर में किसी मरीज को यदि TB हो गया है तो उसके सारे परिवार का उसका जो है सो जाँच हो जाना चाहिए। जांच के लिए जो है सो फिर वही PSC में आना है, उसको जो है सो सारी जांच करानी है।
0: जांच में TB निकल गया, मान लिया कि घर वाले भी साथ दे रहे हैं, लेकिन कई बार हम बाहर बताने से डरते हैं कि लोग भेदभाव करने लग, क्या ये सही है कि TB मरीज के साथ रहने से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है या फिर उनके साथ उठने बैठने से भी किसी को TB हो सकता है, क्या ये सही है?
1: अब यह भ्रामक बिल्कुल गलत है कि TB मरीज के साथ में हम रहेंगे तो हमें TB हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं है। मात्र है कि उस TB मरीज को हमें 6 महीना तक सब लोग मिल करके दवा खिलानी है। जितना जल्दी हम लोग दवा खिलाएंगे उतना जल्दी जो है सो रोगी ठीक होगा। और ख़ास करके ये रखना है कि जो भी TB के मरीज के घर वाले हैं उसका जाँच जो है सो सबसे बड़ा चीज़ ज़रूरी चीज़ है जो कि निःशुल्क है।
0: तो एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक TB फैल सकता है?
1: TB फैल सकता है, कम से कम जो है सो 10 आदमी को जो है सो एक मरीज से फैल सकता है।
0: तो मतलब किस तरीके से, मतलब उसका जूठा हमने खा लिया?
1: जूठा कुछ नहीं है, उसके जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं जो बलगम है वो जहाँ तहाँ यदि फेंक देगा तो फेंकने के बाद में शुरुआती दौर में 1-2 महीना बहुत जो है सो हम लोग हमारे सारे फैमिली को प्रिकॉशन के साथ में रखना है कि वो बलगम कहाँ फेंक रहा है, ये सब सारी सावधानी करनी होगी।
0: और सर पोषण से भी क्या TB का कोई संबंध है?
1: सबसे बड़ा चीज़ है पोषण, दवाइयाँ और दवाई और पोषण दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। पोषण के लिए सरकार ने घोषणा कर रखी है, 6,000 रुपया जो है सो प्रत्येक मरीज को मिलता है 6 महीना में, यानी कि 1,000 पर महीना जो है सो सरकार के द्वारा जो है सो सरकारी योजनाएं में मिलता है। कुछ पोषण के लिए जो है सो खाना पीने की भी सामग्री जो है सो लोग देते हैं और वह रोगी को जो है सो दिया जाता है।
0: सर अभी आप

0: बता रहे थे कुछ देर पहले कि टीबी कई प्रकार का होता है और शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है, तो टीबी कितने प्रकार का होता है?
1: टीबी प्रायः शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, बाल और नाखून छोड़ करके कहीं भी हो सकता है। टीबी मूलतः हमारे समाज में अभी दो प्रकार का है, एक पुलमोनरी है, एक एक्स्ट्रा पुलमोनरी है। जो कि एक्स्ट्रा पुलमोनरी जो है सो क्या होता है कि ग्लैंड टीबी हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट अटैक हो गया, यूट्रस में भी टीबी हो सकता है, और ग्लैंड टीबी हो गया, एब्डोमिनल कॉक्स हो गया, फिर बोन टीबी हो गया, बहुत सारी टीबियाँ हैं। लेकिन प्रायः 70% जो है सो हमारे फेफड़े की टीबी होती है, 30% जो है सो ये एक्स्ट्रा पुलमोनरी टीबी होती है।
0: तो अभी आप योजना के बारे में भी बता रहे थे कि सरकार 6,000 रुपये देती है, तो इसके अलावा भी और कोई योजना है जो चलाई जा रही है टीबी मरीजों के लिए?
1: टीबी मरीजों के लिए जो है सो एक निश्चय पोषण योजना है, जिसके तहत में जो है सो भोजन प्लस 6,000 रुपया देने की जो है सो सरकार की योजना है। ये काफ़ी अच्छे वर्षों से चल रहा है, जो रोगी तक पहुँच भी रहा है।
0: और निक्षय पोषण के अलावा हमने निक्षय मित्र के बारे में भी सुना है।
1: जो भी रोगी किसी को दान कर सकते हैं, सबसे बड़ा दान है यह कि अब 5 रोगी, 10 रोगी, 1 रोगी, 2 रोगी जिस जो है वह जो है सो रोगी को जो है सो दान के रूप में जो है सो आप यदि 500 रुपया का कम से कम जो है सो से अनाज देना है, और 6 महीना तक वह अनाज देना है। यह सरकार का जो है सो स्कीम है।
0: यानी कि अगर हम चाहें तो किसी टीबी मरीज की मदद कर सकते हैं, अगर हमारी नज़र में कोई है जो सक्षम नहीं है।
1: हाँ, सरकार को यदि आपकी इच्छा है कि हम टीबी मरीज को जो है सो गोद लिए हैं, तो उसको गोद लेने के बाद में उसे कम से कम 500 रुपया की जो है सो राशि का चावल का दाल, गेहूँ, सोयाबीन जो भी है या चना है, इस टाइप का, इस तरह का जो है सो भोजन उसे दे करके जो है सो सेवा आप टीबी मरीज का कर सकते।
0: तो अगर कोई निक्षय मित्र बनता है तो क्या उन्हें किसी तरीके का सर्टिफिकेट मिलता है या सरकार की तरफ से कोई ऐसा प्रोत्साहन?
1: हाँ, वह जो है सो जिला डिस्ट्रिक्ट के सदर अस्पताल के द्वारा जो है सो उसे जो है सो सर्टिफिकेट दिया जाता है।
0: तो सर, टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें।
1: टीबी मुक्त भारत जो है सो जो भी हमने बताया है, इससे सारे जो है सो टीबी मुक्त भारत योजनाएं में है, जिसको कि हम लोग के पास सारी सुविधाएं उपलब्ध है।
0: और आज सर विश्व क्षय रोग दिवस है, यानी कि वर्ल्ड टीवी डे है, तो इस पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि
1: संदेश विश्व यक्ष्मा दिवस के अंदर दिवस पर हम लोग यह संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना है हम लोगों को, मात्र जो भी रोगी हैं कहीं भी हैं, वह कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जा करके, और कुछ नहीं कहना है आपको, पुर्जा जैसे आप पुर्जा कटाते हैं, कटाने के बाद में वो उसके आप मात्र कह देंगे कि 2 सप्ताह से ऊपर खांसी है, उसके बाद आपको एक अतिथि के रूप में जो है सो आपका सम्मान के साथ में जो है आपका जांच करा देंगे, आपको दवाइयां दे देंगे, आपकी सारी देख रेख जो है सरकार के जो सहकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो आपकी मदद करेंगे।
0: सर, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तो चलाया ही जा रहा है, टीबी मुक्त भारत भी चलाया जा रहा है, तो एक और योजना है या कार्यक्रम कहें कि टीबी मुक्त पंचायत, ये क्या है?
1: टीबी मुक्त पंचायत है, इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि क्राइटेरिया के साथ में टीबी मुक्त पंचायत है, जो कि उसका जांच दर सालाना क्या है, उसको मैंने ये पोषण योजना का क्या हालत है, उसका जो है सो MDR की क्या स्थिति है, उसका जो है कॉलम है उसको पूरा करके, यदि जो है वह उसमें जांच जो है सो कम से कम 30 जांच 1,000 की आबादी पर करनी है, और यदि उतना हो जाता है तो उस पंचायत को जो है सो पंचायत मुक्त माना जाएगा।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी सारी बातें आपने बताई। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत उपयोगी लगा होगा, और ध्यान रखें कि अगर किसी को भी टीबी के लक्षण दिखें तो तुरंत जाकर जांच कराइए, और अगर किसी को टीबी हो गया है तो ऐसे में उनसे भेदभाव नहीं करना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ परहेज करना है, और ख़ास तौर से ध्यान ये रखना है कि आप उस टीबी मरीज की मदद करें, जितनी मदद हो सके आप उनकी मदद करें, उनकी दवाइयों का ध्यान रखें, उनके पोषण का ध्यान रखें, क्योंकि टीबी को अगर ठीक करना है तो ज़रूरी है कि वो दवाई सही समय पर खाएं, पूरी दवाई जो पूरी दवाई का कोर्स है 6 महीने का वो करें, साथ ही पौष्टिक खाना भी खाएं। तभी कोई भी टीबी मरीज ठीक हो सकता है। और कहते हैं कि इलाज से बेहतर है बचाव, तो कोशिश करें कि आप इस बीमारी से बचे रहें कुछ सावधानियों को अपनाकर। आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें।
2: अरे यार फिर पिट गया। बेल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा

0: कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR का 9 से 12 महीने और दूसरा MR का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UPIN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि।
8: नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आप सभी के बीच एक खास कार्यक्रम लेकर, उन्नत कृषि कार्यक्रम। इसमें खेतीबाड़ी की तो बातें होती ही हैं, लेकिन पशुपालक भाइयों के लिए उनके पशु के रखरखाव की भी बातें होती हैं। अब पशुओं के लिए जैसे हम संतुलित आहार खाते हैं मनुष्य, वैसे ही उनके लिए भी ज़रूरी है संतुलित आहार। तो आज जानेंगे हम पशुओं के लिए, खास तौर पर जो दुधारू पशु हैं उनके लिए संतुलित आहार कैसे तैयार करेंगे उसकी विधि के बारे में। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
9: नमस्कार
8: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो पशुओं के लिए संतुलित आहार क्या है इसके बारे में थोड़ा बता दें।
9: हाँ बिल्कुल, किसान बंधुओं को यह जानना जरूरी है कि पशु के लिए क्या आवश्यक है। हमारे लिए जैसे सबसे बेसिक चीज़ क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो सबसे पहले रोटी की बात आती है। इसी तरह हम देखते हैं पशुओं के लिए भी जो सबसे बेसिक ज़रूरत है वो है उसका आहार। तो संतुलित आहार वैसे आहार सामग्री को कहते हैं जो किसी विशेष पशु की 24 घंटे की निर्धारित पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, वैसे आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार पशुओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संतुलित आहार पशुओं को सिर्फ दूध उत्पादन की क्षमता को ही नहीं बढ़ाता, बल्कि पशु स्वस्थ भी रहता है, इसका शारीरिक बढ़वार भी मेंटेन रहता है। ज़्यादातर पशुपालक अपने पशुओं को भरपूर पोषण नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में शरीर का विकास तो रुकता ही है पशु का, उसका मिल्क प्रोडक्शन भी पूरा नहीं हो पाता है, उसके शरीर की प्रतिरोध क्षमता भी नहीं बढ़ पाती है और धीरे धीरे पशु बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए पशुओं के लिए सबसे जरूरी है कि उसको संतुलित आहार मिलना चाहिए, तभी उसका प्रोडक्शन मेंटेन रहेगा।
8: जी जी, तो ये संतुलित आहार क्या है आपने जाना श्रोताओं। और डॉक्टर साहब, ये जो पशुओं का आहार है, ये वर्गीकरण यानी पशुओं के आहार वर्गीकरण क्या होता है, और जो अलग अलग पशु हैं, पशु वर्ग हैं, उनके लिए अलग अलग आहार प्रणाली भी है, तो ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी।
9: हाँ बिल्कुल, जैसे आप पूछेंगे कि एक गाय कितना खाना खाएगी, तो ये यही सब चीज़ समझने के लिए हम इसके आहार का वर्गीकरण कहते हैं कि इसकी आवश्यकता के अनुसार इसको जो हम अलग अलग राशन तैयार करते हैं अलग अलग आहार, उसको हम वर्गीकरण में समझते हैं। सबसे पहले आता है मेंटेनेंस राशन। अगर कोई पशु ना दूध देता हो, ना उसका शरीर बढ़ रहा हो, ना वो कोई काम कर रहा हो, तो उसके शरीर के नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए जो खाने की मात्रा की आवश्यकता होती है उसको मेंटेनेंस राशन कहते हैं। इसमें शरीर ना बढ़ रहा है ना कमज़ोर हो रहा है, जैसे स्थिति है वैसी संतुलित अवस्था में बनी रहे, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। एक पशु को मिलने वाला वह आहार की आवश्यकता है जिसमें उसका शरीर का फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो और वो शरीर को मेंटेन रख पाए। इसके अलावा आता है जैसे कोई दूध दे रही है पशु, तो निश्चित रूप से वो दूध हर रोज़ उसके शरीर से न्यूट्रिएंट निकलता है। गाय का दूध खा के हम मजबूत हो जाएंगे, तो क्या गाय दूध दे रही है तो वो कमज़ोर नहीं हो जाएगी अगर उसकी पोषण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाए तो? तो निश्चित रूप से जो दूध जो मेंटेनेंस राशन है उसके अतिरिक्त जो हम उसको दूध उत्पादन के लिए देंगे राशन, जो आहार देंगे उसको प्रोडक्शन राशन या लैक्टेशन राशन में रखते हैं
8: जी।
9: और कभी कभी पशु प्रेग्नेंट होती है तो निश्चित रूप से उसके शरीर में एक और जीव है जीटस जो है, वो बच्चा बढ़ रहा है तो एक तो गाय गर्भवती है दूध भी दे रही है, तो एक तो निकल रहा है न्यूट्रिएंट्स मेमोरी ग्लैंड से दूध से हमारे प्लेट में आ रहा है, और दूसरा जो बच्चा पेट में बढ़ रहा है उसकी भी आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से जो गर्भवती गाय है उसको हम प्रेग्नेंट हो तो 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक अलग से कंसंट्रेट राशन मेंटेनेंस राशन की अतिरिक्त देते हैं तो वो उसका रिक्वायरमेंट पूरा करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी राशन कहते हैं
8: जी।
9: और कुछ पशु आप काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, गांव में किसान खेत जोतते हैं, बैलगाड़ी चलाते हैं, तो वैसे एनिमल को वर्क एनिमल कहते हैं, और उसको वर्क राशन एक तरह से उसके काम के अनुसार जितना आप काम लेते हैं उसके अनुसार उसको भोजन कंसंट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। और एक कैटेगरी आती है उसको कहते हैं सिक एनिमल राशन। सिक यदि पशु बीमार है, हम लोग में ही अगर पेट खराब हो जाए तो हम वो सारा चीज नहीं खा पाते हैं जो डेली खाते हैं, तो उसके लिए जरूरी है अधिक पाचनशील खाना हम दें, ऐसा आहार जो शीघ्र ही पाचन हो जाए, शरीर में आसानी से पच जाए, तो बीमार पशुओं के लिए अलग से राशन तैयार करने की जरूरत होती है
8: जी। तो ये थे जो पशुओं के आहार वर्गीकरण के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि कैसे कैसे आहार का वर्गीकरण किया गया है, कौन कौन से बेसिस पर। और डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि जो दुधारू पशु हैं, ऐसे तो जो गर्भवती पशुएं होती हैं उनके बाद भी हम दूध लेते हैं उनसे, तो उनके न्यूट्रिएंट्स निकल ही जाते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं जो आमतौर पर जो हमारे पशु हैं उनमें अगर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो क्या कुछ बीमारी हो सकते हैं?
9: निश्चित रूप से जैसे हम इंसान खाना खाते हैं, यदि खाने में बहुत पोषक तत्व की कमी होती है तो वो बीमारी लगभग पशुओं में भी बहुत बीमारियां होती है। जैसे कि कैल्शियम, आप दूध लेते हैं पशु से तो दूध में कैल्शियम निकलता है, तो जो बहुत अधिक दूध देने वाली गाय है उसमें अक्सर मिल्क फीवर जैसी बीमारी देखी जाती है।
8: अच्छा।
9: बच्चा देने के बाद जब आप उससे लगातार दूध ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें कैल्शियम की कमी होते जाती है। ऐसी स्थिति में पशुओं का खाना पीना बंद हो जाता है, वो बैठ जाती है और एक तरह से वो एक बीमारी की अवस्था है, तो आपको उसको कैल्शियम अलग से इंट्रावीनस या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना पड़ता है, इसलिए ये मिल्क फीवर जैसी बीमारी होती है। इसके अलावा है यदि उसको फास्फोरस की कमी हो जाए, तो आप सुने होंगे गांव में किसान कहते हैं कि पशु मिट्टी खाती है या ईटा खाने लगी है, खपड़ा खाने लगी है, तो वो उसकी बुरी आदत वाइसेस नहीं है, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी को बताता है, जो उसे आपके दिया हुआ खाना से नहीं मिलता है वो मिट्टी से सीधा लेकर के पूरा करना चाहता है। तो अगर पशु मिट्टी खा रहा हो तो उसमें फास्फोरस की कमी होती है, और इस बीमारी को पाइका कहते हैं। और जनरली पशुओं में इनफर्टिलिटी जैसी बांझपन की समस्या का भी ये कारण होता है जो फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो इसके बाद है यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, एनर्जी की कमी हो, तो उस केस में हम कीटोसिस देखते हैं। एनिमल के मुंह से मीठा स्मेल आ रहा हो और वो बीमार पड़ा हुआ हो, निश्चित रूप से ऐसी स्थिति को कीटोसिस कहते हैं। और ख़ास करके शीप गोट में एक बीमारी होती है, उसको प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहते हैं। एनर्जी की कमी हो जाए और एनिमल प्रेग्नेंट हो तो उसमें एक कंडीशन, बॉडी कंडीशन होता है, उसको कहते हैं प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। इसके बाद एक मैग्नीशियम है, उसकी कमी से अगर खाने में मैग्नीशियम की कमी हो तो ग्रास टिटानी नाम की बीमारी होती है। आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया होता है, आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर होता है और मेटाबॉलिक डिस्टॉर्डर भी होता है। इसी तरह हम देखते हैं विटामिन ए का कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां होती है। तो सेलेनियम, विटामिन ई, ये सारी चीज़ न्यूट्रिएंट में निश्चित रूप से होना चाहिए ताकि उसके डेफिशिएंसी डिजीज को दूर किया जा सके।
8: डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं कि क्या कमी से, पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारे ग्रामीण किसान हैं वो अपने मवेशियों के लिए घर पर ही संतुलित पशु आहार तैयार करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे?
9: निश्चित रूप से हर किसान को इतनी जानकारी होनी चाहिए कि उनके पास जो दुधारू पशु है, जो उनके पास बछड़े हैं, गाय है, बाछी है, सबके लिए उनको खाना तैयार करने की विधि आनी चाहिए कि कैसे हम खाना तैयार करें। तो सामान्य जो उसका नियम है, सबसे पहले कि 2.5 से 3% बॉडी वेट का उसको ड्राई मैटर, शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे 100 kg का बाछी है तो उसके लिए हम कितना खाना की ज़रूरत होती है, तो निश्चित रूप से 2.5 से 3% बॉडी वेट का है, मतलब 2.5 से 3 kg ये शुष्क पदार्थ है। ये ऐसा खाना है जिसमें कि बिल्कुल पानी की मात्रा नहीं है। अब ये टोटल ड्राई मैटर में 1/3 कंसंट्रेट देते हैं, अनाज दाना मिश्रण देते हैं, और 2/3 2/3 हिस्सा इसका हम चारा देते हैं। चारा में भी हम 1/3 देते हैं हरा चारा और 2/3 देते हैं सूखा चारा। और हरा चारा जो देते हैं उसमें भी 1/3 देते हैं लेगुमिनस और 2/3 देते हैं नॉन लेगुमिनस। तो इस तरह से हम उसका बैलेंस राशन घर पर बनाना सीख जाएंगे हमारे लोकल अवेलेबल मटेरियल से। तो हम देखते हैं मक्का हो, चोकर हो, गेहूं हो, खल्ली हो, खनिज मिश्रण हो, ये सब को मिला करके हम प्रतिदिन पशु के लिए अपने स्तर पर खाना तैयार कर सकते हैं। और बछड़े या बछड़ियों के लिए कम से कम 1 kg से लेकर के 1.5-2 kg तक प्रतिदिन उसके बढ़ते उम्र के अनुसार उसके आहार में हम दाना डाल सकते हैं। ऐसा बनाना सीखिए कि अगर 100 kg अनाज का दाना मिश्रण तैयार कर रहे हैं तो इसमें मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा, ये सब की मात्रा लगभग 50% हो, और एक अनाज अगर डालना हो तो वो आप 35%, कभी कभी मक्का बहुत कम रेट पे मिलता है तो उसको ज़्यादा डाला जाता है, कभी गेहूं का ही दाम कम हो जाता है तो गेहूं को भी आप अधिक मात्रा में डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कुछ प्रोटीन का सोर्स। प्रोटीन के सोर्स में हम जनरली खल्ली डालते हैं या दाल डालते हैं, तो ये कम से कम 25-30% हिस्सा होना चाहिए। और इसके बाद हम चोकर है, जो गेहूं का राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, ये सब आता है, इसको भी 15-20% तक हम पशु के खाने में डाल सकते हैं। इसके बाद सबसे आवश्यक चीज़ है उसमें मिनरल मिक्सर की मात्रा 2-3% तक देनी चाहिए, और 1% नमक की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। और जब गाय दूध दे रही है तो एक गाय के लिए प्रति 3 kg दूध में वृद्धि के लिए हम 1 kg अनाज डाल सकते हैं, और भैंस के लिए प्रति 2.5 kg दूध में वृद्धि के लिए 1 kg अनाज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम पशु का खाना अपने घर पर तैयार कर सकते हैं।
8: जी, तो ये विधि हो गई संतुलित आहार आप कैसे बना सकते हैं पशुओं के लिए घर पर, और संतुलित आहार के फायदे के बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
9: बिल्कुल, जब आप अपनाएंगे संतुलित आहार पशुओं के लिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको एक सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि कम लागत पर स्थानीय रूप से उपलब्ध फीड संसाधनों का आप सही इस्तेमाल कर पाएंगे। होता क्या है, हमारे पास जब भूसा अधिक हो तो हम भूसा ही सिर्फ खिलाते हैं, दूसरा चीज़ नहीं खिलाते हैं, तो पशु का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। लेकिन भूसा में कुछ आप अनाज मिला करके भूसा को पानी में भींगा करके ऐसे खिलाएंगे तो निश्चित रूप से पशु को फायदा होगा। इसके बाद है कि अधिक वसा और SNF की मात्रा को मेंटेन किया जा सकता है। जो दूध देते हैं पशु उसमें दूध में वसा की मात्रा के अनुसार कभी कभी उसका दाम निर्धारित किया जाता है, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद है आपके आय में वृद्धि होती है। निश्चित रूप से अगर आपका प्रोडक्शन अधिक होगा तो आपको आय अधिक होगा। और पशुओं में एक समस्या देखी जाती है अक्सर बांझपन की। पशु एक बच्चा देता है तो दूसरे बार उसको गर्म होना और उसको कंसीव कराना एक मुसीबत सी होती है। लेकिन अगर आप संतुलित आहार देते हैं, संतुलित आहार अपने पशुओं को खिलाते हैं, तो ये प्रजनन क्षमता में सुधार होता है और पशु में जो बांझपन की समस्या है उसको दूर करता है। इसके बाद है अंतर ब्याने की अवधि, अंतर ब्यात अवधि। दो बच्चा देने के बीच की अवधि को यह कम करता है। पशुओं में सामान्य सुधार होता है, स्वास्थ्य का सुधार होता है और जो बछड़ा है, जो बाछी है नए, उसके शरीर में वृद्धि होती है, तेजी से उसका शरीर विकसित होता है।
8: जी, तो ये कुछ फ़ायदे हैं संतुलित आहार के पशुओं के लिए। और तो सभी श्रोताओं से मैं आग्रह करूँगी, आप अपने पशुओं को संतुलित आहार, पशु आहार ज़रूर दें, उनके अच्छी वृद्धि के लिए, उनके शरीर के अच्छे विकास के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
10: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
11: खुद भी बचे देश भी बचाए।
12: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
13: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
14: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
13: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
15: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
16: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered विकसित भारत।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से
17: 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70-75% और दोपहर में 30-40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4-8 जुलाई के दौरान 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़वा की उन्नत किस्में हैं वकुला KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़वा, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10-15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुमान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का, कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसे ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: കൃഷി. नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूं आरजे अनु. आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि. और इसमें हम बातें करते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी और हमारे किसान भाइयों के लिए हर रोज़ कुछ अलग अलग विषय लेकर आते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों का जो ये जानकारी का सिलसिला है वो बढ़ता जाए, उनके पास जानकारियों का ज्ञान जो है वो बढ़ता जाए. और साथ ही इस कड़ी में हम आज एक और विषय लेकर आए हैं. ये थोड़ा हटकर विषय है और मुझे लगता है कि किसान भाइयों को, बहुत सारे किसान भाई जो हैं इसके बारे में नहीं भी जानते होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे. जो नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत कुछ आज जानने को मिलने वाला है. जी हाँ, मैं बता दूं कि आज हमारा विषय है बेबी कॉर्न की खेती और आज इसके बारे में बहुत सारी बातें हम जानेंगे. और सबसे पहले जो हमारे श्रोतागण हैं जो खेती बाड़ी से नहीं जुड़े हैं वो नहीं जानते होंगे बेबी कॉर्न क्या होता है और खेती के बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक होता है. तो आज इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर रश्मि कुमारी मैम और मैं आपको बता दूं ये हैं पौधा प्रजनन एवं अनुवांशिकी विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और पूरी जानकारी आज आपको देंगी बेबी कॉर्न की खेती से जुड़ी. तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: नमस्ते.
0: जैसे कि हमारा विषय है बेबी कॉर्न की खेती, खेती की बात तो हम करेंगे लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि बेबी कॉर्न होता क्या है.
1: जी, बेबी कॉर्न भुट्टा ही होता है जो अपरिपक्व एवं अविकसित अवस्था में होता है. इसे शिशु मक्का भी कहते हैं और ये बीज बनने से पूर्व ही उपयोग में लाया जाता है. इसे तैयार करने के लिए भुट्टे की परपरागण की क्रिया को अवरुद्ध कर दिया जाता है जिससे इसमें दाने नहीं बन पाते. परागण की क्रिया से पहले नर फूलों को नष्ट कर दिया जाता है और मादा फूलों को रहने दिया जाता है जिससे भुट्टे में दाने का विकास नहीं हो पाता. इन्हीं दाने रहित भुट्टे को बेबी कॉर्न कहते हैं. इसकी लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है. इसका रंग क्रीम से हल्का पीला होता है. बेबी कॉर्न स्वादिष्ट व पौष्टिक सब्जी है तथा पत्तों में लिपटी होने के कारण कीटनाशक दवाओं के प्रभाव से मुक्त होती है. इसमें सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फास्फोरस, कैल्शियम, लोहा, थायमिन, राइबोफ्लेविन आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी सब्जी है.
0: मतलब सब्जी भी है और इससे कई प्रकार के और व्यंजन भी
1: बना सकते हैं. बहुत सारे व्यंजन बनते हैं. जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसका उपयोग सूप, सलाद, सब्जी, पकौड़ा, बिरयानी, मुरब्बा, चटनी, हलवा एंड और बहुत सारी चाइनीज डिशेज बनाने में किया जाता है.
0: जी, तो ये तो बातें हुई कि बेबी कॉर्न क्या है ये आप सभी ने जाना. अब बात करते हैं उत्पादन तकनीक की, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है उसकी जानकारी दें मैम.
1: जी, इसके लिए सबसे पहले इसके बुआई के समय के बारे में मैं बता दूं. इसके बुआई का समय भारत में इसे वैसे तो पूरे वर्ष भर लगाया जा सकता है लेकिन बेबी कॉर्न की बुआई खरीफ में जून जुलाई, रबी में अक्टूबर नवंबर तथा गर्मी में फरवरी मार्च में करनी चाहिए. अगस्त से नवंबर के बीच लगाए गए बेबी कॉर्न सर्वोत्तम किस्म के होते हैं. खेत की तैयारी के विषय में बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से मिलाएं.
0: जी,
1: बीज उपचार के लिए बुआई से पूर्व बीजों को कवकनाशियों तथा कीटनाशियों से उपचारित कर लेना चाहिए ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचाया जा सके. इसके लिए बेविस्टीन या कैप्टन को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में अच्छे से मिलाएं. इसकी बीज दर 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है.
0: तो इसके साथ ही बुआई की विधि भी जानना चाहेंगे हम.
1: इसके लिए रिजर मशीन की मदद से मेड़ का निर्माण करें और इसे पंक्तिबद्ध तरीके से लगाया जाता है. इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 40 से 50 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए. बीज रोपते समय हर मेड़ पर 2 बीज प्रति छिद्र, इसे हिल भी कहा जाता है, लगाना चाहिए जो कि और बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए. बुआई के 12 से 15 दिनों के बाद एक छेद में केवल एक स्वस्थ अंकुर छोड़ें और अन्य को हटा दें. इसमें प्रति हेक्टेयर 125,000 से 1.5 लाख पौधों की संख्या रखना उपयुक्त रहता है. इसकी उपयुक्त किस्में भी हैं बहुत सारी. तो इसकी कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जैसे कि HM4, प्रकाश, HQPM1, HIM129, HIM14, गोल्डन बेबी इत्यादि, ये अधिक फलन देने वाले प्रभेद मैंने बताया आपको। खरीफ की अवधि में कम सिल्किंग अवधि के की प्रजाति को चुनते हैं, जैसे 45 से 50 दिन की अवधि के जो प्रजाति हैं उनको हम चुनते हैं, बसंत के लिए 75 से 80 दिन वाले, तथा रबी में भी 120 से 130 दिन के अंतराल पर हमें फलन देने वाले प्रभेदों का चयन करना चाहिए।
0: जी, तो यहाँ पर आपने किसान भाइयों हमारे श्रोताओं जाना कि बुआई का समय कैसे होता है, खेत की तैयारी कैसे की जाती है, बुआई की विधि क्या होती है, तो साथ ही उपयुक्त किस्मों के बारे में जाने, कौन कौन से किस्म अच्छे हो सकते हैं आपके लिए फलन के लिए। अब बात करते हैं उर्वरक की, तो उर्वरक किस प्रकार के इसमें डालने चाहिए और समय क्या होनी चाहिए, मैम जी बताइए।
1: उर्वरक प्रबंधन के लिए मृदा जांच के आधार पर पोषकों का प्रयोग करें। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक हेक्टेयर खेत में 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटाश डालनी चाहिए। खेत में जिंक की कमी होने पर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट डाल दें। फास्फोरस, पोटाश, जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालनी चाहिए, तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में प्रयोग करना चाहिए, जैसे 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4 पत्तों की अवस्था पर, और 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर, तथा 25% नाइट्रोजन नर मंजरी को तोड़ने के पूर्व, 15% नाइट्रोजन नर मंजरी के तोड़ने के बाद। इस तरह से हम नाइट्रोजन की जितनी आवश्यकता है, जो डोज है उसको विभिन्न भागों में बांटकर हम प्रयोग करते हैं। खरपतवार प्रबंधन के लिए एट्राजिन 1 से 1.5 किलोग्राम 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर हम लोग यूज़ करते हैं। बीज बोने के 2 दिन के भीतर ही इसका छिड़काव कर लें। पौधों की घुटनों तक की ऊँचाई की स्थिति में कल्टीवेटर से गुराई जरूर करें। जल प्रबंधन के लिए विभिन्न संवेदनशील स्टेजेज हैं जिसमें हम जल प्रबंधन अनिवार्य होता है, इसके लिए युवा पौध की अवस्था में जल देना जरूरी होता है। इसके बाद पौध की घुटनों तक की ऊंचाई की स्थिति में हम जल प्रबंधन अनिवार्य है जो कि देना चाहिए। सिल्क आते समय कॉप में जब सिल्क आता है उस समय भी जल प्रबंधन अति अनिवार्य, तथा बेबी कॉर्न को तोड़ते समय ये भी अनिवार्य है। तो इस तरह से हम 4 अवस्था हैं जिसमें जल प्रबंधन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है
0: जी।
1: ये भी ध्यान रखें कि पानी मेड़ों के ऊपर नहीं बहना चाहिए, सामान्य रूप से नालियों में 2/3 ऊंचाई तक ही पानी देना चाहिए,
0: मतलब जल प्रबंधन बहुत ही जरूरी है इसमें। और साथ ही मैम अक्सर देखा जाता है कि कोई भी फसल हो उसमें कीट व्याधि का प्रकोप अक्सर लग जाता है, जिस वजह से हमारे किसान भाई जो हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बेबी कॉर्न में भी कुछ ऐसा ही होगा, तो कौन कौन से कीट जो हैं इस पर हमला कर सकते हैं और कैसे बचें हम उससे?
1: कीट प्रबंधन के लिए बेबी कॉर्न के लिए तना भेदक, गुलाबी तना भेदक तथा सोरगम तना मक्खी एक गंभीर समस्या है। इसकी रोकथाम के लिए बीज जमने के 10 से 20 दिन पश्चात 2.5 ग्राम कार्बेरिल प्रति लीटर पानी में घोलकर 1 या 2 छिड़काव पौधे के गोभ में अवश्य करें। वैसे तो बेबी कॉर्न पत्तियों में लिपटी होने की वजह से इसमें कीट व्याधियों का प्रकोप कम होता है, लेकिन जब प्रकोप हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं,
0: मतलब ज्यादा इसमें कीट व्याधि परेशान नहीं करती। और इसके बाद सही तरीका, इसके तोड़ने का क्या सही तरीका है?
1: इसके तोड़ने बेबी कॉर्न के हार्वेस्टिंग से पहले हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी नर मंजरी को तोड़ना अति आवश्यक है, जिससे कि इसकी गुणवत्ता पे प्रभाव ना पड़े।
0: अच्छा।
1: नर मंजरी के रहने पे इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए बेबी कॉर्न की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए डीटेसलिंग एक प्रक्रिया है जो कि अनिवार्य प्रक्रिया है। पौधे के सबसे ऊपरी पट्टी के टेसल निकलते ही इसे तुरंत हटा लेना चाहिए, इसे पंक्तिबद्ध तरीके से करना चाहिए। डीटेसलिंग की क्रिया में पत्तों को नहीं हटाना चाहिए क्योंकि इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है तथा बेबी कॉर्न की औसत उपज कम हो जाती है। यह देखा गया है कि डिटेसलिंग में यदि 1 से 3 पत्ती को हटाया जाता है तो इससे उपज 15 से 20% कम हो जाती है। और बेबी कॉर्न तोड़ने का सही तरीका, इसके लिए हम ध्यान देंगे कि बेबी कॉर्न को 2 से 3 सेंटीमीटर जब सिल्क आ जाता है उस समय तोड़ें, कॉब में लगी पत्ती को ना तोड़ें। बेबी कॉर्न को सुबह या शाम में तोड़ें जिससे कि नमी बनी रहे और हमारा जो उत्पाद है वो प्रभावित ना हो। खरीफ में प्रतिदिन एवं रवि में 1 दिन छोड़कर सिल्क आने के बाद 1 से 3 दिन के अंतर पे कॉब की तुड़ाई कर लें।
0: तो इस प्रकार आपने जाना श्रोताओं की डी टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है बेबी कॉर्न तोड़ने से पहले। और इसके साथ ही मैम ये जो उपज की बात आती है, क्या उपज क्षमता क्या है इसकी?
1: हाँ, बेबी कॉर्न की उपज की क्षमता छिलका रहित, जब हम लोग छिलका हटा देते हैं तो बेबी कॉर्न की 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता है। अच्छी प्रजाति जो रबी में हम लोग लेते हैं वो 20 से 25 क्विंटल तक भी दे सकती है। हरा चारा 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हम लोग ले सकते हैं, और हरे चारे में काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी होती है। 13% प्रोटीन, 44% वसा, फाइबर ये 34% तथा राख की मात्रा 6% पाई जाती है। ये पशुओं के लिए बहुत ही उपयोगी और स्वास्थ्यवर्धक है इसका चारा। फसल कटाई के उपरांत भी ध्यान देना होता है, इसका कुछ खास प्रबंधन है, उसकी अलग तकनीक है। इसके लिए पूर्व शीतलन एक प्रक्रिया है। बेबी कॉर्न का शीतलन फसल कटाई के 1 से 2 घंटे बाद कर लेना चाहिए, क्योंकि आसपास के तापमान से इसके गुण और स्वाद तेजी से खराब होने लगते हैं। और इसके बाद हम लोग वर्गीकरण करेंगे। पूर्व शीतलन के बाद बेबी कॉर्न को छीलकर उनकी लंबाई के मुताबिक वर्गीकरण करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपोर्ट क्वालिटी क्रॉप है तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे। जैसे जो बड़े साइज का है 10 से 13 सेंटीमीटर इसको बड़े श्रेणी में डालते हैं, मध्यम श्रेणी में 7 से 10 सेंटीमीटर के कॉप को, तथा छोटे कॉप जो कि 4 से 7 सेंटीमीटर है उसको छोटी श्रेणी में डालते हैं। तो इस तरह से इसका वर्गीकरण कर देते हैं हम लोग, जिससे कि हम अपने उत्पाद को आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें और लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ इसके डिब्बाबंदी तथा विपणन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। बेबी कॉर्न का विपणन ताज़ा भुट्टो डिब्बाबंद उत्पादों तथा अचार के रूप में किया जाता है। इसके अचार की अमेरिका तथा यूरोप में बहुत मांग है। बेबी कॉर्न की डिब्बाबंदी ज़्यादा खाद्य प्रसंस्करण करने वाली फैक्ट्रियों में होता है। अच्छा। इसलिए बेबी कॉर्न की खेती का विकास आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण जनों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। किसान भाई 80 से 90 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर इसकी खेती से लाभान्वित हो सकते हैं प्रति फसल। किसानों के हित रक्षण के लिए बेबी कॉर्न से मक्का उत्पादन प्रांतों जैसे बिहार तथा अन्य प्रांत में विदेशी मुद्रा अर्जित करने के स्रोत के रूप में अच्छी संभावना है। इस तरह से किसान भाई बेबी कॉर्न की खेती कर लाभान्वित हो सकते हैं।
0: मतलब अगर भारत के किसान भी अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो 80 से 90 हज़ार प्रति हेक्टेयर उनकी जो है आमदनी, प्रति फसल उनकी आमदनी हो सकती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसकी मांग इंडिया में भी, भारत में भी काफ़ी बढ़ती जा रही है। इसके बहुत सारे प्रसंस्कृत पदार्थ जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, तो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि स्वादिष्ट भी काफ़ी होता है ये। तो श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं। वैसे तो हमारे किसान भाई खुद ही बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो होती हैं अगर वो आपको मिल जाएं तो उसी तरह से यहाँ पर आपको हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी देते रहेंगे जिससे कि आपको खेती करने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए 90.8 MHz और सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है। टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
6: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
6: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
6: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
6: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
6: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: CIET NCERT presents ऑडियो बुक गणित प्रकाश, टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 8,
9: चैप्टर नंबर 1, A square and a cube. On the left side of the page, a QR code is provided, scanning which we can reach out to the additional resources for this chapter. Queen Ratna Manjuri had a will written that described her fortune of Ratnas, precious stones, and also included a puzzle. Her son, Khoisnam, and their 99 relatives were invited to the reading of her will. She wanted to leave all of her ratnas to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pester Khoisnam forever. She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzles. She left the following note in her will. I have created a puzzle. If all 100 of you answer it at the same time, you will share the ratnas equally. However, if you are the first one to solve the problem, you will get to keep the entire inheritance to yourself. Good luck. The minister took Khoisnam and his 99 relatives to the secret room in the mansion containing 100 lockers. The minister explained, each person is assigned a number from 1 to 100. Person 1 opens every locker. Person 2 toggles every second locker, that is, closes it if it is open, opens it if it is closed. Person 3 toggles every third locker, 3rd, 6th, 9th, and so on. Person 4 toggles every 4th locker, 4th, 8th, 12th, and so on. This continues until all 100 get their turn. In the end, only some lockers remain open. The open lockers reveal the code to the fortune in the safe. There is a question mark which reads, before the process begins, Khoisnam realizes that he already knows which lockers will be open at the end. How did he figure out the answer? Hint provided is, find out how many times each locker is toggled. There is a picture on this page with a pic of Khoisnam and the minister in the mansion. Page number 2. If a locker is toggled an odd number of times, it will be open. Otherwise, it will be closed. The number of times a locker is toggled is the same as the number of factors of the locker number. For example, for locker #6, person 1 opens it, person 2 closes it, person 3 opens it, and person 6 closes it. The numbers 1, 2, 3 and 6 are factors of 6. If the number of factors is even, the locker will be toggled by an even number of people and it will eventually be closed. On the right side, there is a block in which number 6 is written and below it 1 into 6 is mentioned, below that 2 into 3, and below that we have factors are 1, 2, 3 and 6. Note that each factor of a number has a partner factor so that the product of the pair of factors yields the given number. Here, 1 and 6 form a pair of partner factors of 6 and 2 and 3 form another pair. Does every number have an even number of factors? There are 3 blocks in different colors here. First one reads 1, that is equal to 1 into 1. The only factor

0: has two integral square roots. The positive square root of a number is denoted by the symbol under root. For example, square root 9 is equal to 3. Fourth one, a number obtained by multiplying a number by itself 3 times is called a cube. For example, 1, 8, 27, etc. are cubes. Fifth point, a number is a perfect square if its prime factors can be split into two identical groups. Sixth point, a number is a perfect cube if its prime factors can be split into three identical groups. Seventh point, the symbol cube root denotes cube root. For example, cube root of 27 is equal to 3. Page number 18. Puzzle time. Square pairs. We have the following numbers: 3, 6, 10, 15, 1. They are arranged such that each pair of adjacent numbers add up to a square. 3 plus 6 is equal to 9. 6 plus 10 is equal to 16. 10 plus 15 is equal to 25. 15 plus 1 is equal to 16. Try arranging the numbers 1 to 17 without repetition in a row in a similar way. The sum of every adjacent pair of numbers should be a square. Can you arrange them in more than one way? If not, can you explain why? We are provided with blank boxes for the same purpose. We are supposed to arrange the numbers from 1 to 17. Can you do the same with numbers from 1 to 32 again without repetition? But this time, arranging all the numbers in a circle. We are provided with square boxes in the form of a circle. And this page has a picture with kids trying to solve the puzzle provided here. Chapter 1 ends here.
1: Ganit Prakash, you are just listening to this audiobook, textbook of mathematics for grade 8. Narration, Swarnlata Sharma. Sound recordist, Manju Kumari. Production assistant, Kusum Lata. Directed and produced by Vimle.
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन टीबी के कारण को जानो खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो टीबी रोग हवा में फैले रखो अपना औरों का ध्यान घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे रोग मुक्त हम हो जाएंगे खांसी खोखो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो रहे न टीबी नाम मिटा दो खांसी खोखो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए
3: खुद भी बचे देश भी बचाए
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा
5: सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो जल्दी से आशा दीदी से करो बात बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना
6: सुहाना सफर और ये मौसम हंसी
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का तो सभी करो एक जरूरी काम करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम टीका सुरक्षित है टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM
9: Thank you.
8: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं अनु और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे हर रोज के खास कार्यक्रम। जी हां, किसान भाइयों को समर्पित हमारा यह कार्यक्रम उन्नत कृषि कार्यक्रम, तो इसमें बातें होती हैं उन्नत खेती बाड़ी की। और आज हम लेकर आए हैं धान के बारे में कुछ बातें। जी हाँ, आज हम जानेंगे कैसे इनके रोगों का प्रबंधन करें, धान में लगने वाले रोग का प्रबंधन हम ससमय कैसे कर पाएं। तो इस विषय को कर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार। मैं आपको बता दूं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम।
9: धन्यवाद
8: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बिहार क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो बिहार क्षेत्र में जो लगने वाले धान हैं उनमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
9: बिहार में मुख्यतः जो है कुछ फफूंद से रोग लगते हैं, कुछ बैक्टीरिया से लगते हैं, कुछ विषाणु से, लेकिन मुख्यतः यहाँ कुछ रोग हैं जो कि किसान भाई जानते भी होंगे। जैसे कि अगर फफूंद से जो रोग होते हैं उसमें आजकल फाल्स मट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फाल्स मट की जिसको कई जगह कलिया बीमारी भी कहा जाता है। अच्छा। इसके साथ बैक्टीरिया से जो बीमारी होता है या जीवाणु से जो बीमारी होता है उसको हम लोग जीवाणु पर्ण अंगमारी या अंग्रेजी में उसको बैक्टीरियल लिप ब्लाइट कहते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। इसके साथ ही जो है ब्राउन स्पॉट, जो कि भूरा धब्बा, पत्तियों पर भूरा धब्बा आ जाता है। साथ ही साथ जो है इसमें सीथ ब्लाइट होता है। सीथ ब्लाइट में जो होता है वो पत्तों पे जो है जैसे सांप के जो ऊपर जो होता है चकता चकता होता है, उस तरह से चकता चकता हो जाता है।
8: अच्छा।
9: इसके साथ ही जो है कुछ न्यूट्रिएंट से कमी के कारण बीमारी होता है, जैसे कि जिसको कि खैरा बीमारी कहते हैं। किसान भाई जानते होंगे कि जिंक की कमी से, और ऐसा कहा भी जाता है कि 3 साल के अंतराल पे आप अपने खेत में जो है एक बार जरूर जिंक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जिंक की कमी होने के कारण से बिचड़ा जब आप लगाते हैं उसके बाद जो है इसका जो है सिम्टम दिखाई देने लगता है। तो ये जो प्रमुख रोग हैं मुख्यतः जो है आज के जमाने में, आज के स्थिति में, आज के परिस्थिति में ये बीमारी आ रहे हैं। लेकिन किसान भाई को मैं ये कहूँगा कि फाल्स मट जो है अभी इमर्जिंग प्रॉब्लम है, जिसको कि उसमें आप जानते हैं कि जब धान पक जाता है उसके बाली में जो है पीले रंग का जो हल्दी के समान अब जब खेत में के अंदर जाते हैं तो आपके कपड़ों पे वो चीज़ लग जाता है।
8: अच्छा।
9: और ये बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल देखा जाता है, तो इसको किसान भाइयों को पहले से इसका प्रबंधन करना पड़ेगा। नहीं तो फिर इसका प्रबंधन अगर पहले से नहीं करेंगे तो इससे बचाव आप नहीं कर सकते। इसलिए ये प्रमुख रोग हैं जो कि बिहार के विभिन्न भागों में किसानों के द्वारा बताए हुए और हम लोगों के द्वारा भी जो है किसान जो जगह जगह रिपोर्ट करते हैं उसके अनुसार ये प्रमुख रोग हैं। लेकिन मुख्यतः किसान भाई आप लोग फाल्स मट या कलिया बीमारी पे आप लोग विशेष कर ध्यान देंगे, और ये मोस्टली आप देखेंगे कि जो हाइब्रिड धान है उसमें इसका बीमारी का प्रकोप होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और हाइब्रिड में क्योंकि आप नत्रजन नाइट्रोजन या जो आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा मात्रा में करते हैं, और हाइब्रिड में जो है ये इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। अगर पिछले साल किसी किसान भाई के खेत में बीमारी आया हो तो उसका प्रबंधन के लिए अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि आने के बाद आप इससे बचाव आप करना मुश्किल होता है। इसके बचाव करने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप जो है जब फ्लावर आ जाए या फूल बन जाए या 50% फ्लावर आ जाए उस समय एक छिड़काव जरूर कर दें। अगर आपके विगत वर्ष में ये बीमारी आपके खेत में या कहीं भी किसान अपने गांव में या कहीं भी आया हो, क्योंकि इसके फफूंद जो हैं 11 महीने तक मिट्टी में जो है जीवित रह सकते हैं।
8: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिहार क्षेत्र में लगने वाले धान में रोग, और रोग प्रबंधन के लिए अभी इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
9: जैसे किसान भाई अभी तो लगा रहे होंगे, जैसे कि अभी तैयारी कर रहे होंगे धान का, गेहूं तो अभी हो गया होगा, खेत आपका खाली होगा, और अभी के स्थिति में क्योंकि अभी आपका उत्तम समय है आप उसको कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं कि आपके खेत में जो है बहुत सा बैक्टीरिया, मिट्टी जनित कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फफूंद मिट्टी जनित होते हैं, तो मिट्टी का अब बाद के अवस्था में क्योंकि उसके जो कारक हैं वो मिट्टी में हमेशा रहते हैं, तो उस कारक को आपको मारना होगा। अगर उसका जीवन चक्र अगर आप रोक देंगे तो वो जो है आप उससे बचाव कर सकते हैं,
8: वो खुद ब खुद मर जाएगा।
9: जी अभी का स्थिति में ये है कि अब अभी जो उत्तम समय, क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है,
8: बिल्कुल,
9: तो आप अगर गहरी जुताई करेंगे, क्योंकि हम लोग बताते भी हैं लेकिन अभी समय है, क्योंकि अभी के समय में उपयुक्त यही है, क्योंकि धान तो आप अभी आप लगाने की तैयारी कर रहे होंगे तो अभी का उपयुक्त, क्योंकि खेत आपका खाली होगा तो आप गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई करने से जो नीचे का मिट्टी है ऊपर आ जाता है और जिससे जितने भी आपके फफूंद के कारक होंगे या जीवाणु के कारक होंगे, या इवन जीवाणु और फफूंद ही नहीं, आप कीट भी जो होंगे वो ऊपर के सतह पर आ जाएंगे।
10: अच्छा।
9: और धूप लगने के कारण से वो जो है मर जाएंगे। तो अभी का समय काफ़ी उत्तम है, किसान भाई अगर इसको करेंगे तो न केवल धान के रोग से आप उसके कीट से भी बचाव कर सकते हैं
10: गहरी जुताई से।
9: जी
10: जी डॉक्टर साहब, रोग प्रबंधन के लिए क्या बीजोपचार बहुत ज़रूरी है?
9: जैसे कि हम जानते हैं कि बीमारी कई तरह से होता है, जो फफूंद जो है, जैसे कि पहले मैं कहा भी कि कुछ फफूंद जो है मिट्टी जनित होते हैं, कुछ फफूंद जो है बीज जनित होते हैं, कुछ जो है हवा के द्वारा आते हैं।
10: अच्छा।
9: तो आपको जो है आपको ऐसा बीज का इस्तेमाल करना है कि वो जो है उसमें जो है रोग लगने का चांसेस कम रहेगा। तो आजकल सरकार का भी ये है कि हमको बीज उपचार करना है। बीज उपचार करने से ये फ़ायदा है कि आप जो है एक आवरण बन जाता है और आप बाज़ार में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है फफूंद नाशक, जो कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमिक फंजीसाइड का मिश्रण का जो मिलता है बाज़ार में, जिसमें कि मैनकोजेब होता है और कार्बेंडाजिम होता है, उसका मात्रा जो है आप 2 ग्राम मात्रा लेकर आप जो है बीज उपचार बीज लगाने के पहले, क्योंकि आप जब बिचड़ा लगाते हैं कि एक बार पैसा आप इतना लगाते हैं, बीज खरीदते हैं, फिर उसका बीज स्थल तैयार करते हैं, तो बीज लगाने के पहले आप बीज उपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा क्या है, जो 2 फफूंद नाशक हैं जो कि ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, वो क्या करता है कि आपके ऊपरी आवरण से जो भी फफूंद लगेगा, जैसे कि ब्राउन स्पॉट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बिचड़ा में ब्राउन स्पॉट बहुत देखा जाता है, कहीं कहीं ब्लास्ट भी देखा जाता है, झोंका बीमारी भी देखा जाता है, और ख़ासकर जो है देखेंगे कि जो सेंटेड राइस है, जो सुगंधित धान है, उसमें होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसलिए जो 2 फफूंद नाशक है उसमें 1 फफूंद नाशक जो है आपके आवरण को जो भी बीमारी लगेगा उसको रोकेगा, और दूसरा जो फफूंद नाशक है जो कि सिस्टेमिक फंजीसाइड है, वो बाद के अवस्था में भी जो पौधा आपका बड़ा हो जाता है तो वो जो है उससे रोगों से आपको बचाव करेगा। इसलिए किसान भाई का मेरा सलाह है कि जब भी आप बिचड़ा लगाएं, बीज उपचार जो है 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो फफूंद नाशक का जो मिश्रण आता है, इसका 2 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इस्तेमाल करें और उसके बाद ही उसको आप लोग अपने खेत में बिचड़ा लगाएं।
10: एक जो सवाल है किसान भाइयों की तरफ से आता है डॉक्टर साहब, कि कम पानी और अधिक पानी की स्थिति में कौन से रोग लगते हैं और उनका हम कैसे निवारण करें, ये जानना चाहते हैं हमारे किसान।
9: जैसे कि हम जानते हैं कि कोई कोई एरिया में जो है ऊपरी सतह होता है, इसको कि अपलैंड कहा जाता है, कोई कोई जो है लोलैंड होता है। अपलैंड में क्या होता है कि पानी उसमें ठहरता नहीं और लोलैंड में जो है पानी लगा रहता है,
10: अधिक जमा हो जाता है।
9: जी, तो अपलैंड की स्थिति में दूसरा बीमारी लगता है और उसका बचाव के लिए आपको अलग से, क्योंकि पहचान जब तक आपको होगा नहीं तब तक आप जान नहीं पाएंगे, और लोलैंड की स्थिति में दूसरे बीमारी का लगता है। तो ऊपरी सतह पे या अपलैंड की स्थिति में प्रमुख रूप से 2 बीमारी हैं जो कि देखा जाता है प्राय बिहार में। पहला जो है भूरी चित्ती, जिसको अंग्रेजी में ब्राउन स्पॉट कहा जाता है, और दूसरा जो है ब्लास्ट है, जिसको कि झोंका कहा जाता है। अब इसको जो है जो भूरी चित्ती है, आप देखेंगे कि जैसे बिचड़ा लगाते हैं पत्तियों पे भूरे रंग के छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं और बाद के दिनों में जो है ये धब्बे आपस में मिल जाते हैं, तो ये मुख्यतः जो है अपलैंड की स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में बीज उपचार तो ज़रूर करें आप, उसके बाद जो है आप कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा, अगर मान लीजिए कि आपके अगर बिचड़ा में आ जाए या खड़ी फसल में आ जाए तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम मात्रा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो बीमारी है जिसको कि हम लोग झोंका या ब्लास्ट कहते हैं, पूरा का पूरा पौधा आपका ब्लास्टेड मतलब पूरा जला हुआ दिखाई देगा, और ख़ासकर आप देखेंगे कि आप जो सेंटेड है उसमें ये ज़्यादा लगता है। उसके लिए, उसके बचाव के लिए आपको करना क्या है कि ये भी ऊपरी ज़मीन में होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ट्राईसाइक्लाजोल नाम का एक फफूंद नाशक आता है, उसका जो है 0.5 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की प्रति लीटर में आप पानी में डाल के, या 500 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमा जो दूसरा आपका प्रश्न था, जिसमें कि कहा गया कि निचली सतह में 2 बीमारी होने का चांसेस रहता है, जो बिहार में मुख्यतः देखा जाता है। पहला जो है बैक्टीरियल लिप ब्लाइट है, जिसको कि पर्णअंग मारी कहा जाता है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला बीमारी है। ये बीमारी दो अवस्था में होता है। पहली अवस्था में जब आप बिचड़ा लगाते हैं तो उस स्थिति में पूरा पौधा आपका जला हुआ दिखाई देता है, और दूसरा स्टेज है जब आपका टिलरिंग स्टेज होता है उसमें आपको ये ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो उस स्थिति में आपके लिए जो है बैक्टीरियासाइड का इस्तेमाल करना है। लेकिन ध्यान देने योग्य ये बात है इसमें कि आपको बैक्टीरियासाइड के साथ एक फफूंद नाशक का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना है। अगर ये बीमारी आ जाता है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 किलोग्राम मात्रा और स्ट्रिप्टोसाइक्लिन का 50 ग्राम मात्रा प्रति 1000 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरा जो बीमारी है जिसको कि कहा गया शीत ब्लाइट, मैं पहले भी आपको बताया था शीत ब्लाइट के बारे में
10: जी।
9: जब पानी ज़्यादा रहता है तो इसमें सतह जो शीत रीजन है वहाँ पे ये पहले बीमारी का कारण दिखाई देना शुरू करता है, और बाद में जब पत्तियों पे ये सांप के ऊपर जैसे चकता होता है उस तरह से धब्बे बन जाते हैं। और ये बीमारी ऐसा है कि दोनों बीमारी अगर एक खेत का पानी बैक्टीरियल लिप ब्लाइट में भी और इसमें भी एक खेत का पानी दूसरे खेत में जाता है तो वो भी खेत जो है आक्रांत हो जाता है। तो इस बीमारी से बचाव करने के लिए, शीत ब्लाइट के बचाव करने के लिए आप वेलिडामाइसिन का आप जो है अब 2 कंसंट्रेशन में आता है तो उसका जो है 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के आप उसका छिड़काव कर सकते हैं।
10: तो यहाँ पर किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, आपने जाना कि धान में कौन कौन से रोग लगते हैं, आप उनका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो आशा करते हैं ये ज़रूर आपके लिए मददगार साबित होगा आज का ये वार्ता। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी, याद रखें 90.8 MHz। नमस्कार। उन्नत कृषि

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हो तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक,
4: जिसे मिटाना है जड़ तक।
5: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य। सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
6: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ, मैं बताती हूँ।

0: कभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
2: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75 प्रतिशत और दोपहर में 30 से 40 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316 जी, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहें और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छाया छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गला घोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: उन्नत कृषि। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 एफएम ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए खास विषय हर रोज की तरह लेकर आते हैं, तो आज भी बिल्कुल कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती के बारे में आज हम जानेंगे। और इस खास विषय को लेकर हमारे बीच हैं डॉक्टर मंकेश कुमार, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद मैडम।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कतरनी धान के बारे में थोड़ा सा बताएं और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो बताएं।
1: नमस्कार कृषक बंधुओं, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं जो आप सब कतरनी धान की खेती, खासकर भागलपुर और बांका और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग कतरनी धान की खेती बहुत बढ़ चढ़ कर रहे हैं और जिस हिसाब से ये किसान आगे बढ़कर खेती कर रहे हैं, मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वार्ता शुरुआत करता हूं। मैं डॉक्टर मंकेश कुमार हूं, मैं पौधा प्रजनन विभाग में कनीय वैज्ञानिक हूं और मेरा काम विशेषकर सुगंधित चावल और खासकर कतरनी पर ही रहा है। तो कतरनी धान जो आप किसान बंधु जानते ही हैं, कतरनी धान जो है बिहार का एक गौरव है, खासकर भागलपुर ज़िले का एक पहचान इसे जाना जाता है। तो ये एक बहुत प्रचलित सुगंधित चावल है जो मध्यम पतला दाना होता है इसका, और एक नदी जो चानन नाम की नदी है जो बांका ज़िले में बहती है, उस नदी के आसपास के इलाकों में इसको लगाने के बाद इसमें एक विशेष तरह की खुशबू आती है। साथ ही साथ बांका के अलावा जैसे भागलपुर में दो प्रखंड हैं, जैसे आपका सुल्तानगंज है और आपका भागलपुर के दो प्रखंड और मुंगेर के भी दो तीन प्रखंड हैं और बांका के चार पाँच प्रखंड हैं, इसमें कतरनी धान में अजीब एक विशेष प्रकार की गुणवत्ता वाली कतरनी धान होती है, जिसके कारण इसको 2017 में एक भौगोलिक सूचकांक का टैग प्राप्त हुआ है। इस टैग के प्राप्त होने के बाद किसानों को एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, जो उनको एक कतरनी धान उगाने के लिए एक अधिकार प्राप्त, एक पेटेंट की तरह एक अधिकार, स्पेशल अधिकार देती है, जिसके चलते उसको कमर्शियल लेवल पर भी ले जा सक करके वो अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं थोड़ा खेती की, तो कतरनी धान के बिचड़े लगाने की क्या विधि होगी?
1: किसान बंधुओं, कतरनी धान का बिचड़ा जैसे अन्य धान लगाया जाता है उसी प्रकार लगाते हैं, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बस ये है कि इसमें कतरनी धान जैसे लंबे दिनों की प्रजाति है, तो इसको किसान बंधु इसको जुलाई के दूसरे हफ्ता में इसको लगाएं, जिसका बीज दर लगभग 25-15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। और बीज लगाने से पहले बीजोपचार अगर कर दे तो किसान बंधुओं को आगे कीट और व्याधियों की समस्याओं से भी निजात मिल सकता है। तो बीजोपचार के लिए बेबिस्टिन जो है पाउडर है 2-3 ग्राम प्रति किलोग्राम, या ट्राइकोडर्मा जो एक फंजाई होता है उसको बाज़ार में उपलब्ध होता है, उसका 7.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के साथ पीएसबी कल्चर के साथ मिला करके, और एजेटोबैक्टर भी अगर चाहें तो एजेटोबैक्टर का कल्चर भी साथ में मिला करके बीज को ट्रीट करें, और उसके साथ ट्रीट करने के बाद उसको गीले जूट बैग में उसको रखते हैं करीब 24 घंटे के लिए, और उसके बाद देखें कि बीज अगर अंकुरित हो रहा है, हल्का अंकुरित हो गया है, तो उसको एक उप जो बिचड़े लगाने के लिए थोड़ा सा ऊपरी जमीन को ऊपर करके एक क्यारी बनाते हुए ऊपर उसके बीज को छिड़काव करें, और फिर आप देखेंगे कि बीज मुश्किल से 3 या 4 दिन के अंदर काफ़ी अच्छे रूप में और हेल्दी बीज का जो है जर्मिनेशन हो जाता है। तो आप बीज उपचार करें, उसके बाद बुआई का समय जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, उसका बुआई जो है 15 से 25 जुलाई के बीच में करना चाहिए, या आप चाहेंगे कि पहले हम कर दें जून के माह में कर दें और हमारा फसल अच्छा आएगा उपज, तो ऐसा नहीं है। आपको ये, क्योंकि ये प्रकाश संवेदनशील प्रजाति है, तो पहले लगाएंगे आप तो इससे उसके उपज में असर पड़ेगा, उसके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा होगा लेकिन उसका दाना कम बनेगा, इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको 15 से 25 जुलाई के बीच के समय में ही उसको लगाएं। और रोपने के लिए आप 20 से 25 दिन के बिचड़े को आप यूज कर सकते हैं, उसको आप क्यारी से अच्छे तरह से उखाड़े, उसको पानी उसका रहना चाहिए, जड़ नहीं टूटना चाहिए उखाड़ते समय। और प्रति खूंटा बिचड़ी बिचड़ा जो है आपको 3 से 4 से ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मतलब एक हिल पे या एक जगह 4 से 5 पौधे से ज़्यादा मत लगाइए, उससे ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा है नहीं। रोपाई की दूरी आप चाहें तो 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति पौधे से पौधे के बीच में और पंक्ति के से पंक्ति के बीच में रखें तो ज़्यादा अच्छा आपका फसल होगा। जी
0: जी डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई हैं बिचड़े लगाने की विधि की, अब बात करते हैं थोड़ा सस्य क्रियाओं की, तो क्या कुछ सस्य क्रियाएं होंगी कतरनी धान में?
1: जी जी, ये कतरनी धान, जैसे किसान बंधु आपको कतरनी धान की जो खेती करते हैं उनको अनुभव होता ही होगा कि कतरनी धान में आप अन्य जैसे फसल धान की प्रजातियाँ हैं जैसे उसमें उर्वरक आप ज़्यादा डालते हैं, छिड़काव मतलब इंसेक्टिसाइड का या जो भी खरपतवार नाशी जो केमिकल है उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन आप लोगों का अनुभव ये बताता होगा कि कतरनी धान में ये सभी चीज़ों की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो इसका उल्टा ये परिणाम है कि अगर आप खाद अगर ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे या ज़्यादा रसायन का प्रयोग करेंगे तो कतरनी का जो विशेष गुण है जिसके लिए वो जाना जाता है वो उसमें नहीं रहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कतरनी धान में जो रिकमेंडेड डोज ऑफ फर्टिलाइज़र है या जैविक खेती जो किया जाए उस पर ही आप ज़्यादा उस पर आप आगे बढ़ें। तो इसमें जो खाद हरे खाद का ऊपर अगर उपयोग करते हैं तो सबसे बढ़िया है। इसके लिए जो ढांचा जो कहते हैं एक वो उसको आप परती ज़मीन जैसे रवि का फसल कटने के बाद परती ज़मीन जो रहता है उसमें आप ढांचा का प्रयोग करें, उसको आप बीज जो है आप जून माह के अंत में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के रूप में छिड़काव कर दें। और जब वो पौधा ढांचा का 55 से 60 दिन का हो जाए जो जुलाई के अंत तक जब कतरनी को रोपने का जब समय आए तब उस ढांचा को काट दें, उसको दबा दें उस खेत में और FIM का प्रयोग करें तो ज़मीन जो है बहुत ही अच्छा कंडीशन में आ जाता है जिससे कतरनी का खेती बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो सामान्यतः NPK का 40 30 और 20 का ये रेशियो होना चाहिए और इससे ज़्यादा आप NPK का प्रयोग ना करें। जो है आप जिंक फॉस्फोरस और पोटास की संपूर्ण मात्रा का प्रयोग खेत की तैयारी करते समय दे दें और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है पहले तो आप एक आधी मात्रा बुआई के समय करें, फिर 1/3 भाग 7 दिन पर और शेष 1/3 भाग कल्ले निकलने पर आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी करते समय डाल दें। बासमती धान जो है उर्वरक की में उर्वरक की मांग कम होती है इसलिए कार्बनिक खेती को ही ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। कार्बनिक खेती करने से पोषक तत्वों की आपूर्ति गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद तथा जैसे मुर्गी पोल्ट्री का जो बीट है आदि स्रोतों से पूरी करनी चाहिए। तो कार्बनिक खादों को खेत के में रोपाई से 2 सप्ताह पहले मिला देना चाहिए क्योंकि आप रोपाई करने के बाद डालेंगे तो कोई उसका ज़्यादा असर नहीं होगा। और इसके लिए खरपतवार रोग और कीट नियंत्रण के लिए जैविक संसाधनों का ही प्रयोग करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो खरपतवार जैसे आप कहते हैं कि खरीफ के फसल में खरपतवार का भी ज़्यादा समस्या होता है तो खरपतवार के लिए आप रोपनी के 3 से 5 दिन के अंदर ब्यूटाक्लोर 50 EC का प्रयोग करें, उसको 15 किलोग्राम 50 ब्यूटाक्लोर लेकर के 500 लीटर जल में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें और उसके बाद रोपनी के 25 से 30 दिनों के बाद एक बिस्पारी वेक सोडियम 10 ग्राम प्रतिशत जो है SC 25 ग्राम सक्रिय दवा को 500 लीटर प्रति हेक्टेयर जल के में घोल करके आप करें। तो ये आपका सस्य क्रियाएं है, ये कतरनी की ये जो है जिसको आप अपना सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, अब अगर फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद भंडारण किस प्रकार से करें?
1: जी जी, जैसे कतरनी में आप मैंने कहा था कि कतरनी जो है लंबे दिन की प्रजाति है और ये पकने की जो अवधि है इसकी 150 दिन से ऊपर होती है। इसका मतलब है कि ये जब ये पकता है तो हमारा जाड़ा का सीजन में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो समस्या ये होती है कि उस टाइम धूप निकलना बंद हो जाता है और दाने में मॉइस्चर का प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा रहता है तो किसानों को इसका भंडारण में समस्या आती है। तो आप ये भंडारण के समय ये ध्यान रखें कि इसमें 14% तक नमी रहे ये भंडारण के समय और इसको अच्छी तरह से सुखा लेने का कोशिश करें और नई बोरी का प्रयोग करें, पुरानी बोरियों को ना यूज़ करें। अगर पुरानी जो बोरी है तो उसमें आप कोशिश करें कि दाना जो है पूरा पुराना धान का दाना उसमें ना रहे, उसको झड़वा दें। और गोदाम वाले भंडारण वाले गोदाम को अच्छी तरह से साफ कर चार लीटर मालाथियान या DDBP का 100 लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर देना चाहिए। और कुछ लोग मटके में भी भंडारण करते हैं तो उसमें भंडारण करने के लिए आप 500 ग्राम सूखी नीम की पत्तियों को डालकर सूखा डालकर धुआं करें तथा ऊपर से बंद करके वायु अवरोधी करें। किसान भाइयों, इसमें एक मैं कहना चाहूँगा कि कतरनी जो एक सुगंधित धान है तो इसमें आप कोशिश करें कि जब छांव में इसको जब सुखाएंगे तो इसका जो सुगंध है ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहता है। अगर तेज़ तीखे धूप में अगर सुखाएंगे तो इसका सुगंध जो है थोड़ा कम हो जाता है, जैसा मेरा अनुभव है। तो जब खिली धूप हो और कहीं छांव में इसको सुखाएं तो इसका सुगंध जो है बहुत दिनों तक बरकरार रहता है।
0: जी जी डॉक्टर साहब, और कतरनी धान में देखा जाता है कि विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि और कीट भी लगते हैं, तो इसका उपचार कैसे करें?
1: जी जी, कतरनी धान एक सुगंधित प्रजाति होने के चलते ये जो कीटों के लिए बहुत आकर्षण का ये फसल होता है। जी
0: सुगंध की
1: जी, तो इसमें एक गंधी वर्ग एक कीड़ा होता है जो ज़्यादातर सुगंधित के धानों में पाया ज़्यादा अटैक करता है। तो उसके लिए ये गंधी वर्ग जो है ये जब बालियां निकल जाती हैं तो इसके बालियों से रस चूस करके बालियों को सुखा देता है। तो इसके लिए आप मालाथियन या कार्बोरिल 30 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। और इसमें एक येलो स्टेम बोरर का एक प्रॉब्लम है जो पीला तना छेदक कहा जाता है इसको।
0: अच्छा।
1: तो उसके लिए आपको आपको जैसे इसका प्रकोप नर्सरी के टाइम से ही शुरू हो जाता है, पीला तना छेदक उसमें अंडा देना शुरू कर देता है। तो जब आप रोपनी करते रहें करने जाएं तो आपको आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब उसका आप जो ऊपर का पत्ता का हिस्सा है उसको तोड़ दें तो ऊपर के पत्ते के हिस्से में जो इसका अंडा है वो हट जाएगा और रोग मुक्त हो, ये कीड़ा के अंडे से रहित हो जाएगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फसल लगने के बाद रासायनिक विधि द्वारा नियंत्रण करने के लिए रोपनी के 3 हफ्ता के बाद आप कार्बोफ्यूरॉन प्रति 33 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 4-8-10-10 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर एक कारटाप एक दवा आती है जिसकी 10 ग्राम प्रति 25 kg प्रति हेक्टेयर का एक बार प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद 20 दिनों के बाद मोनोक्रोटोफॉस 36 cc जो है 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में या क्लोरोपाइरीफॉस एक दवा आती है जो 20 cc इसका स्ट्रेंथ होता है और 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अगर जैविक तरीके से अगर इसका नियंत्रण करना चाहें तो सबसे बेहतर है क्योंकि इससे इसका सुगंध बरकरार रहता है। तो जैविक नियंत्रण के लिए रुपाई के 30 दिनों के बाद 10 दिनों के अंतराल पर एक ट्राइको कार्ड आता है जो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा भी ये कई किसानों को दिया गया है और ये ट्राइको कार्ड हमारे यहाँ अवेलेबल भी है। इसका प्रयोग करेंगे तो ये येलो स्टेम बोरर का जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है।
0: जी, अब अंत में बात आती है उत्पादकता बढ़ाने की, तो क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि कतरनी धान की उत्पादकता को हम बढ़ा सकें?
1: जी जी, ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि कतरनी का जो उत्पादन है उत्पादकता जो है वो 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है क्योंकि वो प्रजाति जो है लंबा होता है और अपने दाना के वजन से ये जो है जब पकता है तो ये गिर जाता है। इसके चलते इसमें जो है उपज बहुत कम हो जाता है। साथ ही साथ ये दिक्कत है ये कि जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड है वो बहुत लंबी है तो जो किसान गेहूँ लगाना चाहते हैं वो लगा नहीं सकते हैं दिसंबर के माह में। तो उत्पादकता मतलब किसान जो है कतरनी की धान की खेती नहीं करना चाहते हैं, इसके चलते इसकी कम उत्पादकता भी जिम्मेदार है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारे कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2013 या 12 के आसपास किसानों के यहाँ से शुद्ध कतरनी को ला करके उसमें एक ब्रीडिंग प्रोग्राम किया और बौना कतरनी को डेवलप किया है और वो अंतिम चरण के स्टेज में है। और उस बौने कतरनी के में ये खासियत है कि वो उसकी उत्पादकता 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और उसके पकने की अवधि भी कतरनी से 15 से 20 दिनों की कम है। तो अगर ये बौने प्रजाति किसानों के बीच में आएगी तो इसकी उत्पादकता अधिक होने के चलते किसान भी इसको लगाएंगे और इसको लगाने के साथ साथ किसानों का जो है इससे आय भी वृद्धि हो सकता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और कतरनी धान की वैज्ञानिक खेती को लेकर बहुत सारे किसानों के मन में उत्सुकता रहती है, बहुत सारे सवाल भी रहते हैं, जिसका जवाब आपने दिया। और मुझे लगता है कि हमारे बिहार क्षेत्र में, हमारे भागलपुर क्षेत्र में खास कतरनी धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और लोग इसे पसंद भी करते हैं, बाज़ार में भी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है इसके खास विशेषताओं की वजह से। तो आज जो भी वैज्ञानिक खेती के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है, आशा करते हैं हमारे किसान भाइयों को ज़रूर पसंद आया होगा और ज़रूर आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: सुनो सुनो सुनो सभी, एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण है करवाना।
6: सुहाना सफर और ये मौसम हसी,
5: टीको ये मौसम है टीकाकरण करवाने का। तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
7: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। स्वागत करती हूं आपका आपके कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। दोस्तों, सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या फिर बुजुर्ग हो। लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास वक्त ही नहीं होता, और आज के समय में जब महिलाएं घर और बाहर दोनों संभाल रही हैं तो ऐसी स्थिति में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। और ऐसे में उनके शरीर में बहुत सारे विटामिन की कमी हो जाती है, और विटामिन की कमी यानी कि उनके शरीर में अलग अलग तरह के बदलाव दिखने लगते हैं। तो आइए जानते हैं कि महिला में विटामिन की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा भी काम करती हैं तो थक जाती हैं, आपको कमजोरी होती है और एनर्जी की बहुत कमी होती है, तो आपको हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो। और विटामिन B12 की जब कमी होती है तो आपके RBC कम हो जाते हैं, जिससे शरीर तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाती और आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। और अगर आपको बता दें तो आपको लगातार थकान तो लगती ही है, साथ ही दिमाग भी धुंधला सा लगता है, आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं, और कई सारी महिलाओं को चक्कर भी आते हैं। अगर आपको इन सारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको विटामिन B12 की कमी है। इसके साथ ही आपके हाथ पैर भी सुन्न हो जाते हैं।
10: अगर इन सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ रहा है तो विटामिन B12 की कमी है, और विटामिन B12 की कमी महिलाओं में बहुत कॉमन है, खासकर जो महिलाएं शाकाहारी खाना खाती हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी है। तो अगर विटामिन B12 की कमी की वजह से आपके अंदर ये सारे बदलाव, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो आप क्या करें। वैसे इसके अलावा भी और कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे चक्कर आना मैंने बताया, सांस फूलना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन होना, याददाश्त कमजोर हो जाना, या फिर आपके चेहरे की ग्लो कम हो जाती है, आपका चेहरा पीलापन सा लगता है, जीभ में जलन होती है या फिर मुंह में छाले हो जाते हैं, कभी कभी अचानक दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। जब हमारे शरीर को भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो दिल पर दबाव बढ़ जाता है, इसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती है या तो फिर धक धक होने लगता है, और ये सारे जो लक्षण हैं वो विटामिन B12 की कमी से जुड़े हुए लक्षण हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे की ग्लो कम हो गई है, आपके चेहरे में थोड़ा पीलापन आ गया है, तो भी ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण हैं। क्या होता है कि विटामिन B12 की कमी के कारण ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है, इससे स्किन और चेहरा हमारा पीला या बहुत ही फीका दिखने लगता है और हमारा जो नेचुरल ग्लो है वो कम हो जाता है। जब पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हमारे दिमाग के सेल्स और न्यूरॉन को भी ये प्रभावित करता है, जिससे हमारी याददाश्त कमजोर होने लगती है। तो ये सारे जो लक्षण हैं आप को अगर दिख रहे हैं तो आपके अंदर B12 की कमी है, और B12 की कमी को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि डाइट में हरी सब्जियां, दालें, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल और साबुत अनाज शामिल करें। इससे क्या होगा, B, C, D, E जो भी ज़रूरी मिनरल्स हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, अभी हमने विटामिन डी और ई के बारे में भी बात की, सी के बारे में भी बताया आपको। अगर आपके अंदर विटामिन B7 की कमी है या फिर विटामिन ई की कमी है तो आपके बालों का टेक्सचर बदलने लगता है, आपके बाल काफ़ी रफ हो जाते हैं, आपकी स्किन भी रफ हो जाती है और आपके नाखून भी आसानी से टूटने लगते हैं। और अगर बात करें विटामिन डी की कमी की वजह से आपके बाल झड़ते हैं, आपका मूड स्विंग्स होता है, हड्डियों का दर्द होता है आपको, आप अगर उठेंगे बैठेंगे भी तो आपकी हड्डियां जो होते हैं वो चटकने की आवाज़ आएंगी। तो ये जो लक्षण दिखते हैं वो विटामिन डी की कमी से दिखते हैं। वहीं अगर हम बात करें विटामिन सी की, अगर विटामिन सी आपके अंदर कम है तो मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम, गला खराब हो जाएगा या फिर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है, तो आपके अंदर विटामिन सी की कमी है। और ये लक्षण हालांकि जिंक की कमी से भी जुड़े हो सकते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स यानी कि विटामिन सी और जिंक आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि आप इन सारे विटामिन्स का ध्यान रखें। और अगर हम बात करें विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की, तो ये ना मूड रेगुलेशन में मदद करता है, आपका मूड कैसा होगा। अगर आपके अंदर विटामिन डी और बी कॉम्प्लेक्स की कमी है तो आप बहुत चिड़चिड़े से रहेंगे, आप किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपको घबराहट होगी और हो सकता है कि आपको हल्का डिप्रेशन भी हो। कुछ महिलाओं में आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी रहती हैं, उनका मूड कभी काफ़ी अच्छा रहता है, कभी काफ़ी ख़राब रहता है, यानी कि उनका मूड कभी बैलेंस तरीके से नहीं रहता है, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है या तो फिर बी कॉम्प्लेक्स की कमी होती है। और अगर हम बात करें विटामिन ए और विटामिन ई की, तो विटामिन ए और विटामिन ई की कमी से आपकी स्किन डल हो जाती है, बहुत जल्दी ड्राई होने लगती है, और अगर आपको कोई मामूली सी भी चोट लगती है तो उसे भरने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि विटामिन ए और विटामिन ई सेल रिपेयर में काफ़ी मदद करते हैं और आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी हेल्दी रखते हैं। और अगर इसकी कमी होती है तो आपके मामूली से चोट भी बहुत मुश्किल से भरते हैं, आपकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है, तो सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि आप बैलेंस्ड डाइट अपनाएं, यानी कि अपने खान पान में हरी सब्जियां, दाल, अंडे, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल, साबुत अनाज शामिल करने से आपको विटामिन B, C, D, E और बहुत सारे ज़रूरी मिनरल्स बहुत ही नेचुरली मिल जाते हैं आपको। तो ध्यान रखें कि आप, बहुत मुश्किल नहीं है इस डाइट को फॉलो करना, आप हरी सब्जियां अपने खाने में खा सकते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा खाएं, दूध दही खाएं और साथ ही ड्राई फ्रूट्स खाएं, और मौसमी फल तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और सस्ते भी होते हैं, तो मौसमी फल खाएं, साबुत अनाज स्वादिष्ट तरीके से बना के खाएं, और दाल खाना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के बारे में तो हमेशा कहा जाता है कि आप धूप में जरूर बैठे, और खास तौर से सुबह की धूप बहुत जरूरी होती है। हालांकि मुश्किल होता है थोड़ा, अगर आप कामकाजी महिला हैं, आपको बाहर जाना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि आप सुबह की धूप जरूर ले। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी जाती है, और ये विटामिन डी की कमी को रोकने का सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका भी है। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, धूप में बैठिए, कोई काम कर लीजिए। धूप में आप बैठते हुए पेपर पढ़ सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा तरीका है विटामिन डी की कमी को दूर करने का, धूप में बैठिए रोजाना 15 से 20 मिनट। इसके अलावा आप स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर करें, आपकी नींद बहुत जरूरी होती है। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं और नींद नहीं आती है आपको, तो भी आप कितना भी खाएं, कुछ भी करें, वो आपके शरीर में अब्सॉर्ब ही नहीं होगा। जब हम सो रहे होते हैं तो वही वक्त होता है जब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा काम चल रहा होता है, जो भी हमने खाया पिया होता है उससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह अब्सॉर्ब करना होता है वो नींद के दौरान ही होता है। इसके अलावा आप ध्यान करें, योगा करें, गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लें। इन सारी चीज़ों से क्या होता है कि आपके हार्मोनल बैलेंस सुधरते हैं, जिससे विटामिन बहुत ही बेहतर तरीके से आपके शरीर में अब्सॉर्ब होते हैं। यानी कि आप खा बहुत रहे हैं लेकिन आपके शरीर को लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, आप योगा नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बहुत चिंता करते हुए खाएंगे तो भी उस खाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसी वजह से। और अगर आपने ये तय किया है कि विटामिन डी या ई, जो भी विटामिन की आपके अंदर कमी है, उन कमी को दूर करने के लिए आप सप्लीमेंट्स लेंगे या कोई दवाई लेने वाले हैं, तो ध्यान रखें कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई लेना बहुत हानिकारक हो सकता है। जी हाँ, बहुत हानिकारक हो सकता है। आपने सोचा कि कैल्शियम की गोलियां ले लेते हैं या फिर विटामिन B12 की गोलियां ले लेते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी गोली नहीं खानी है, डॉक्टर से सलाह लें। और उसके बाद ही अगर आपको डॉक्टर कहते हैं कि खान पान से इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं तो ज़रूर वो बहुत ही बेहतरीन तरीका होगा, लेकिन अगर डॉक्टर सलाह देते हैं तो ही आप किसी सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर रहें। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि इन कमी के बारे में जानने के लिए आप रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहें, ताकि अगर आपके अंदर किसी विटामिन की कमी हो गई है तो वो जल्दी ही पता लग जाए और खान पान से ही उसे ठीक किया जा सके। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखिए, और अगर आपको चक्कर आ रहा है या फिर कोई भी आम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो उसे सीरियसली ले, हल्के में ना ले, और अपने खान पान का, अपनी दिनचर्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखें।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MRT का 9 से 12 महीने और दूसरा MRT का 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर है, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MRT का लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों इतने जीरो?
5: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
6: कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 ग्रीन FM। उन्नत कृषि। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे जुड़ चुके हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ RJ अनु और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे हर रोज़ के इस कार्यक्रम जिसका नाम है उन्नत कृषि कार्यक्रम। किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी हमारा यह कार्यक्रम, जिसमें उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलता है, खेती से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने को मिलता है, और साथ ही हम हर रोज़ एक अलग विषय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज एक खास विषय फिर से हम लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। खासतौर पर बिहार के जो हमारे किसान भाई और बहन हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बिहार में इसकी जो खेती है बहुत अधिक स्तर पर की जाती है। तो आज हम बात करने वाले हैं परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो परवल की वैज्ञानिक खेती के बारे में जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी जो समस्याएं हैं उनके हल को पाना चाहते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आप सभी के लिए एक जो विषय है वो परवल से जुड़ा लेकर आए हैं, और इस विषय के बारे में सारी जानकारी आपको देने के लिए हमारे बीच हैं डॉक्टर RB वर्मा सर। और मैं आपको बता दूं, ये हैं हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
7: धन्यवाद
6: सर। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्र की बात करते हैं, हमारे जो किसान हैं बिहार में उनके लिए अगर वो परवल की खेती करना चाहते हैं तो क्या स्थिति है बिहार में, खासतौर पर उनकी जानकारी दें।
7: देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें जो है परवल एक ऐसी फसल है जो कम से कम इसको 8 से 9 महीने तक इससे हम आमदनी लेते हैं। इसको हम फरवरी में लगाते हैं और सीधे अक्टूबर तक इससे हम फल की हार्वेस्टिंग करते हैं, जिससे किसान भाइयों को आमदनी होती रहती है। तो ये 8 से 9 महीने भरपूर मतलब पैदावार देती है और किसानों भाई की आमदनी बढ़ाती है। इसका क्षेत्रफल जो है, हम देखिए, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पॉइंटेड गार्ड का या परवल का क्षेत्रफल जो है लगभग 75,000 हेक्टेयर एरिया में पूरे बिहार में इसकी खेती की जाती है, जिससे 757,000 टन का प्रोडक्शन इसका होता है जो है। और अगर प्रोडक्टिविटी उत्पादकता अगर देखी जाए तो इसका जो है 13.68 टन प्रति हेक्टेयर इसकी पैदावार है। तो इतनी अधिक पैदावार लेकर के किसान भाई देखते हैं मार्केट में रेट भी इसका

0: कितना अच्छा खासा मिलता है, तो कभी भी 40-30 रुपए से कम नहीं होता है। तो इससे बहुत अच्छी पैदावार मिलती है और बहुत अच्छा इससे किसान भाई फायदा ले सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, अभी तो आपने ये बताया कि अगर खेती करना चाहते हैं बिहार में तो इसकी क्या स्थिति है, मतलब कि कैसे पैदावार बढ़ा करके आप जो आय है उस अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। अब विशेषता की ओर बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं परवल को लेकर, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
0: देखिए, परवल एक ऐसी फसल है जिसको अगर बिहार की दृष्टि से देखिए या वैसे भी न्यूट्रिशन की दृष्टि से देखिए, पोषण तत्व की दृष्टि से देखिए, बीमारियों की दृष्टि से देखिए, तो हर एक दृष्टि से देखिए, तो उसकी अच्छाई को देखते हुए, उसके फायदे को देखते हुए इसको हम जो है ग्रीन गोल्ड ऑफ दियारा भी बोलते हैं। ये दियारा लैंड का हरा सोना भी इसको बोलते हैं, किंग ऑफ वेजिटेबल भी, सब्जियों का राजा भी इसको बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: और ये ग्रीन पोटैटो भी बोलते हैं इसको, इसको हरा पोटैटो भी बोलते हैं। इसकी इतनी अहमियत है, खासियत आप देखिए, ये अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो इसमें एनर्जी कैलोरी बहुत कम होती है, तो जब एनर्जी बहुत कम होती है तो इसके शुगर के पेशेंट भी, ये आप देखते हैं किसी को फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो उसमें भी परवल की सब्जी को जनरली रिकमेंड किया जाता है कि आप परवल का चोखा बनाइए, भरता बना के खाइए, या परवल की आप सब्जी बना के खाइए, इसलिए उसमें कैलोरी कम है। दूसरी चीज़ अगर देखिए, आजकल जो हेल्थ कॉन्शियस आदमी होता है फैट की बात करता है, आलू जैसे खा लिया कहते नहीं बड़ा फैटी है आलू, जबकि फैट उसमें नहीं होता है, मिसकंसेप्शन है, उसको हम रोस्टेड करते हैं तब होता है। तो ऐसे पोटैटो इसमें पॉइंटेड गार्ड में परवल में भी देखिए 0.3% फैट बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए जो जिनका भी मोटापा अगर बढ़ रहा है उस आदमी को भी कहते हैं कि हम आप परवल की सब्जी खाइए, आपके मोटापा को कम करेगा। वेट लूज़र है, ये इम्यूनिटी क्रिएट करता है। अभी आज के समय जो COVID-19 के समय आप देख रहे हैं, लोग इम्यूनिटी बूस्टर हर चीज़ें लिया करते हैं, तो ये ऐसी एक फसल है जो इम्यूनिटी बूस्टर है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जैसे विटामिन ए की बात करें, विटामिन सी की बात करें, इसमें आयरन की बात करें, प्रोटीन देखिए इसमें 2 ग्राम होता है, इसमें फाइबर जो ऐसी चीज़ है जो कि आपको मार्केट से नहीं मिलती है, ये सब्जी और फलों से ही फाइबर मिलती है, तो इसमें 3 ग्राम लगभग फाइबर होता है, जो कि अगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ देखा जाए, पोषक तत्व की तरफ से देखा जाए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फाइबर का होना उसमें
1: जी।
0: इसके अतिरिक्त हमारे पास विटामिन सी जो देखते हैं, जो स्कर्वी रोग से लड़ने की या ठंड से कोल्ड से लड़ने की क्षमता रखता है, वो भी इसमें भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे पोषक तत्व है जो कि जो है
1: परवल में, हाँ
0: परवल में पाए जाते हैं, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर हैं, हमको सर्दी जुकाम खांसी ये सब से बचाते भी जाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन हमको देते हैं, कम एनर्जी देते हैं, इसलिए इसको जो है वेट लूजर भी कहा जाता है। तो ये सब सारे इसके गुण है जिसके आधार पे इसको हम प्रयोग में लाते हैं
1: जी। और बिहार में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इसे, खास तौर पर अगर मैं बात करूं परवल की, तो परवल के बहुत सारे व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताए हैं। और पोषक तत्व की बात की डॉक्टर साहब ने कि इसमें बहुत सारे गुण हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी पाया जाता है, और अभी सबसे ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसे बरकरार रखें इस सिचुएशन में, तो इसलिए परवल की जो विशेषताएँ हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे। डॉक्टर साहब, खेती की ओर बढ़ते हैं, तो किस समय में परवल की खेती की जाती है और साथ ही क्या प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं इसकी खेती में, वो भी बता दें हमारे श्रोताओं।
0: परवल की खेती, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने कहा, परवल की खेती का देखिए अब ये बहुत उपयुक्त समय आ गया है। हाँ देखिए, परवल लगाने का सबसे उपयुक्त समय जो होता है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 माह जो बहुत ही महत्वपूर्ण है लगाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इस समय में इसमें फलत भी बहुत तगड़ी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसमें कोई भी किसान अपने लतेर को काट करके नहीं देता है लगाने के लिए। और इसमें प्रोपोगेशन जो होता है वो लतेर से होता है, इसकी कटिंग काट करके ही हम लगाते हैं, तो कटिंग काटेंगे तो हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना बहुत ही फलन देता है, इसलिए किसान भाई इसमें काटता नहीं है। तो इसके लगाने में अगर कहिए, जहाँ पानी जुलाई अगस्त सितंबर तक जो पूरा पानी भर रहता है, अक्टूबर में रिसीट होता है पानी जो है, तो अक्टूबर नवंबर में हम लगाते हैं इसे दियारा लैंड में। तो इसके लगाने का सबसे अच्छा समय अगर उस दृष्टि से देखा जाए, हमारी फलत भी कम ख़त्म हो जाती है, हमारे पास लतेर भी बच जाती है, तो ये अक्टूबर नवंबर का महीना ये सबसे बेस्ट है। अक्टूबर सबसे बेस्ट है, नवंबर के महीने में जाने में आपकी ठंडी बढ़ जाएगी, जैसे ठंडी बढ़ेगी उसमें स्प्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो ये माह जो है आपका अक्टूबर का, इसको लगाने के लिए अभी ये बहुत उपयुक्त समय है। आप इस समय से आप कटिंग ले जाइए और कटिंग ले जा करके आप अपने खेत पे लगा दीजिए। इसमें लगाने के लिए, इसमें लगाने के तमाम तरीके हैं, इसमें आप मचान विधि भी लगाते हैं, टेलिस विधि भी लगाते हैं, फ्लैट में भी लगाते हैं, तो जो किसान भाई जो है इस समय ले जा रहे हैं, पहले आप उसके लिए आप जो है पिट तैयार कर लीजिए। तो आप 2x2 मीटर पे तैयार करिए या 2x1 मीटर पे तैयार करिए। 2x2 होगा 2 मीटर से लेकर के 2 मीटर तक जो है कतार से कतार की दूरी, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 मीटर पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 2 मीटर। तो इस रेशियो में आप लगाएंगे तो लगभग आपका जो है 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर आपको पड़ेंगे, यानी 5000 पौधे जो है प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। अगर 2x2 पे लगाएंगे तो 2500 पौधे आपके प्रति हेक्टेयर पड़ेंगे। तो आपको जहाँ भी लगाना है, चाहे 2x2 मीटर पे लगाना है या 2x1 मीटर पे लगाना है, जहाँ भी आपको लगाना है आप जो है वहाँ 1x1x1 1x1x1 क्यूबिक सेंटीमीटर का आप गड्ढा खोद लीजिए। उस गड्ढे में आप जो है गोबर की खाद लीजिए, 2 से 3 किलो आप गोबर की खाद लीजिए, थोड़ा सा उसमें बालू मिलाइए, थोड़ी सी आप नॉर्मल मिट्टी ले लीजिए और मिट्टी लेकर के आप उसमें थोड़ा सा आप जो है फ्यूराडान डालिए 2 ग्राम, एटलीस्ट 2 ग्राम जो है पर पिट जो है, 200 ग्राम अगर संभव है तो आप जो है नीम की खली डालिए। तो ये सब डाल करके उस पिट को आप जो है भर दीजिए, पिट को भर दीजिए, और जिससे उस पिट को भर देने के बाद से उसमें आप जो है लतेर लीजिए कम से कम 80 सेंटीमीटर का, 80 सेंटीमीटर लंबी आप लतेर ले लीजिए और उसको अंग्रेजी के 8 के आकार का बना लीजिए। और अंग्रेजी के 8 के आकार का बनाने के बाद जो है उसी पिट में जो है उसको 6 इंच गहराई पे जो है आप जो है बीच वाला पोर्शन अच्छी तरह से उसको दबा दीजिए। साइड से आप चाहें तो हल्का हल्का जो थोड़ा बहुत दिखाई पड़े उतना आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन बीच से उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए। इतना उसके साथ कोई मरोहत मत करिए, इतना ज़बरदस्त दबाइए उसको ताकि कहीं से एयर उसमें पास न करने पाए। जब एयर पास कर जाए, पता चला कि आपने लगाया और उसमें सिंचाई किया, तो सिंचाई करने के बाद जैसे उसमें एयर पास हो जाएगा तो हवा पास होने के बाद उस जड़ को सुखा देगा। तो कोशिश ये करना है कि उसका संबंध मिट्टी से बहुत अच्छा हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि दबाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, उसको खूब अच्छी तरह से दबाइए जिससे सॉइल का और उस लतेर का कंटेक्ट बहुत बढ़िया हो सके
1: जी।
0: अब उसको दबाने के बाद आप उसको जो है आप जो है ढक दीजिए पुआल से या किसी चीज़ से ढक दीजिए और हल्का सा उस पर फवारे से इरिगेशन कर दीजिए। और ये इरिगेशन जो है 2-3 दिन तक आप करते रहिए सुबह शाम जो है, जिससे आपको हल्का हल्का ज़्यादा पानी नहीं देना है इसमें जो है, जिससे उसके स्प्राउटिंग होने में सुविधा हो। इसको थोड़ी सी गर्मी मिलती है, जैसे पुआल आप डाल देते हैं थोड़ी सी गर्मी मिलती है, स्प्राउटिंग नमी मिलती है, प्रॉपर मॉइस्चर मिलता है, तो ये जो है अभी ये निकल जाएगा बड़ी आसानी से, इसमें स्फुटन हो जाएगा। अब ये है कि जब ये अक्टूबर में आप इसका स्फुटन हो जाएगा, इसमें से कल्ले निकल जाएंगे, स्प्राउटिंग जब हो जाएगी, तो इसके लिए सबसे क्रिटिकल मंथ जो होता है वो दिसंबर जनवरी, नवंबर दिसंबर जनवरी। नवंबर में थोड़ा सा गर्मी रहती है लेकिन दिसंबर जनवरी में बिल्कुल गर्मी नहीं रहती, एकदम ठंडी रहती है। और ठंडी इसके लिए ये बर्दाश्त नहीं करता है, ठंडी फ्रास्ट तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। तो इस 2 महीने में आप उसको बचाना होगा आपको। तो बचाने के लिए काम क्या करना होगा, आपको जो है बर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की सड़ी खाद हो तो उसके थाले के आसपास थोड़ा सा डाल दीजिए, जिससे वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बनाए रहेगा। और ऊपर से हल्का सा पुआल का भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, जिससे उसके ऊपर जब फ्रास्ट का मौसम देखिए तो या ठंडा बहुत लगने वाला हो तो उस समय थोड़ा सा उसको जो है पुआल अगर किसी से ढक दीजिए या हल्की सी उस पर सिंचाई कर दीजिए जिससे उस पर ठंडी का असर ना पड़े, हल्का हल्का सिंचाई कर दीजिए जिससे ठंडी का असर ना पड़े। तो ये 2 महीना बचा के ले चले जाइए, जैसे ही गर्मी का महीना आएगा आपका फरवरी आनवर्ड, जैसे ही फरवरी आएगा थोड़ा बहुत टेम्परेचर जब जैसे निकलना शुरू हो जाएगा तो इससे जितनी भी नोट्स है उसमें 7-8 नोट आपने बताया हमने कि 80 सेंटीमीटर आपने लंबा ले लिया था और उसमें कम से कम 8 से 10 नोट उसमें थे, तो जितने नोट से सबसे आपकी जो है बहुत बढ़िया उसमें से कल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, या कल्ले पहले से निकल गए हैं तो उसकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। और ये आपकी फरवरी शुरू से ही निकलना शुरू हो जाएगा और मार्च तक आपकी फ्रूटिंग में फसल आ जाएगी बहुत अच्छी। और मार्च के बाद आप हार्वेस्टिंग शुरू करिए और 1 सप्ताह के अंतराल पे इसमें हम हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे अगर ज़्यादा छोड़ देंगे तो उसमें पकने की संभावना रहती है, तो 1 सप्ताह के अंतराल पे आप इसकी हार्वेस्टिंग करते जाइए, जो मेच्योर है खाने लायक है टेंडर है आप उसको हार्वेस्ट करिए और बाकी जो छोटे हैं उसको आप छोड़ दीजिए, फिर बढ़ने दीजिए, 1 सप्ताह बाद उसमें फिर आप हार्वेस्टिंग कर लीजिए।
1: जी, तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं कि कैसे आपको परवल की खेती करनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे किसान भाई जो है परवल की खेती करने में रुचि भी रखते हैं, क्योंकि जो बिहार में अगर सब्जियों की बात करें तो परवल हर लोग जो है इसे पसंद करते हैं और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है मांग बाज़ार में। डॉक्टर साहब, ये तो बातें हो गई खेती की, लेकिन प्रजातियाँ किस प्रकार की हमें चुननी चाहिए, कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दे।
0: देखिए, परवल की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ तो नहीं, बहुत लिमिटेड प्रजातियाँ हैं इसकी जो है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, जाते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाल से ही इसको ले आते हैं, जैसे कि हमारे जो है लेकिन उस समय तब उनको परवल की लतेर मिलती है जब उसकी क्राप ओवर हो जाती है, जब फलत नहीं रहती है, तो ऐसे में उस फसल में फलत है या नहीं है वो लेके चले आते हैं, अपने यहाँ लगाते हैं, पता चला उनकी फसल फ्लॉप हो जाती है। तो ऐसे में प्रजातियों का चयन जो है बड़े सोच समझ के करना है, कम से कम एक फलन अवस्था में जब पौधा हो तो किसान भाई को चाहिए कि वो जा करके एक बार जो है खेत पर विजिट करें, देख लें कि उनके पसंद की कौन सी प्रजाति अच्छी है और उसी प्रजाति का चयन करें। तो जैसे कुछ प्रजातियां जो इम्पोर्टेंट, जैसे राजेंद्र परवल 1 है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण अलौकिक है, नरेंद्र परवल 260 है, नरेंद्र परवल 390 है, तो इस तरह की ये प्रजातियां हैं। नीमिया भी एक प्रजाति इसमें आती है, तो ये सब प्रजातियां हैं जिसको आप जिसका आप चयन कर सकते हैं, अच्छी प्रजातियाँ हैं। लेकिन बिहार किसी विश्वविद्यालय के द्वारा कुछ प्रजातियों का चयन किया गया है, जैसे इसमें BRPG 12-1 है जो सफ़ेद रंग की होती है और बड़े आकार की, बड़े लंबे आकार की होती है, कम से 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इस समय जो है। तो आप ऐसे प्रजातियों को देकर के, 12-9 है जो हम लोग अभी सिलेक्शन में लिए हैं, बहुत से किसान के यहाँ फील्ड पे भी लगा हुआ है, तो आप इन प्रजातियों को देख करके आप इनमें से सिलेक्शन कर सकते हैं और आप अपने खेत के लिए आप चुनाव कर सकते हैं, जो आपके क्षेत्र के लिए विकसित की जा रही है और इसी क्षेत्र के लिए वो ज़्यादा उपयुक्त है
1: जी।
0: तो इन प्रजातियों का सिलेक्शन करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं
1: जी। तो ये तो बात हो गई कि किस प्रकार की प्रजातियां आपको चुननी है, कैसी चुननी है। अब खाद और उर्वरक की बात करते हैं डॉक्टर साहब की, किस प्रकार के खाद और उर्वरक और कैसे देने चाहिए, किस समय देने चाहिए कि जो बढ़वार है वो अच्छी हो।
0: देखिए, अभी हमने बताया था कि जब इसको आप लगा रहे हैं तो पिट में ही इसको आप लगाएंगे, गड्ढा खोद करके 1 क्यूबिक फीट का आपने गड्ढा खोद लिया है, तो 1 क्यूबिक फीट गड्ढे में जो है हमने बताया था कि आप जो 1 से 2 किलो आप जो है गोबर की खाद ले लेंगे और उसके बाद से थोड़ा सा ये आपका जो है नत्रजन इसमें जो देते हैं 90-60-60 के रेट से देते हैं किलो केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से
1: जी।
0: तो उसमें जो है 9 ग्राम का ये पर पिट जो है आप जो है 9 से 10 ग्राम पर पिट आप जो नाइट्रोजन जो है 6 से 7 ग्राम आपका जो है फास्फोरस एंड पोटास इस तरह से उसको मिला करके जो है और उसमें नीम की खली 200 ग्राम जो है फ्यूराडान ये सब मिला करके आप गड्ढे को भरते हैं, तो ये उसका फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है। और ये आप देंगे इसका आधा नाइट्रोजन का मात्रा जो आप इसी समय जब बुआई जब करते हैं उसी समय दे देंगे, लेकिन फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देंगे। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है, जनवरी के लास्ट में यानी फरवरी के फर्स्ट वीक में, उस समय जब कल्ले निकलने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि थोड़ा सा फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट चाहिए ताकि उससे ग्रोथ भी फास्ट हो। तो जो आपका बचा हुआ नत्रजन है तो उसको उस समय आप जो बचे हुए नत्रजन को उस पिट के चारों तरफ जो है हल्का सा गोबर की खाद में मिला करके पिट के चारों तरफ उसको दे दीजिए, तो उससे आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी और आपकी फसल बहुत तेज चलेगी
1: जी। यहाँ पर खाद और उर्वरक आपने जाना कि आपको किस प्रकार देने हैं, और कई बार समस्याएं भी आती है परवल की खेती के दौरान डॉक्टर साहब, तो जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में हम जानना चाहेंगे और कैसे हमारे किसान भाई उनका निदान करें।
0: देखिए किसान भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। किसान भाई अक्सर जो पूछते हैं कि हमारे खेत में जो फूल तो बहुत आ रहे हैं लेकिन फल नहीं आते हैं, एक फलन की समस्या इस क्रॉप में होती है और वह क्यों होती है, किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह से जान लें। जनरली होता क्या है कि इसमें 2 तरह का फूल आता है, एक नर फूल अलग पौधे पर आता है और मादा फूल अलग पौधे पर आता है। तो नर फूल जो आता है उसमें फल नहीं लगता है, केवल फूल फूल ही रहता है, और मादा फूल पौधा जो होता है, जो मादा फूल आती है उसी पे केवल फल लगता है। तो किसान भाई समझते क्या है जनरली जो है कि जिस पे फल नहीं लगता है केवल फूल आया है, वो समझते हैं कि ये बेकार पौधा है और उस पौधे को उस खेत से उखाड़ करके बाहर फेंक देते हैं। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें कि ये ऐसा पौधा है जिसमें नर और मादा पौधा दोनों अलग अलग होता है, तो जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात सही सही उस खेत में नहीं होगा तो आपके फसल में फूल तो आएगा लेकिन फल नहीं आएगा। वो हल्का छोटा सा जो फूल रहेगा फल के रूप में जो रहता है, मादा फूल की पहचान होती है कि आप जब भी फूल को देखिएगा तो नीचे फल लिए हुए निकलता है, जैसे आप लौकी में देखते हैं, कद्दू में देखते हैं, कदीमा में
1: जी,
0: तो वो नीचे फल लिए हुए निकला रहता है। लेकिन जो नर फूल होता है वो फल लिए हुए नहीं निकलता है, वैसे सीधे निकलता है। तो ये पहचान लीजिए, तो ये पहचान करके उसका अनुपात आप जो है एक संबंधे दस जरूर रखिए। जब तक आप एक संबंधे दस, मतलब एक पौधा अगर नर का रखते हैं तो दस पौधा मादा का जरूर रखिए। जब नर और मादा का अनुपात संतुलित रहेगा ऐसे स्थिति में वहाँ निषेचन क्रिया सही तरीके संपन्न होगी और उसमें फलन की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। दूसरा किसान भाई एक और कर सकते हैं, उस खेत में आप मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। मधुमक्खियाँ जो थी परागण का काम भी करती हैं, तो मधुमक्खी का मधुमक्खी भी आपको मिलेगी और परागण का परागण भी होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मेजर समस्या है कि सेक्स रेशियो जो है, जो अनुपात है उसका नर और मादा का अनुपात है, उसके संतुलन को बनाए रखना जो है बहुत जरूरी है इस चीज़ के पीछे। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें एक जो है फल मक्खी भी आती है, तो फल मक्खी आती है तो उसके लिए किसान भाई ये कर सकते हैं, आप जैसे फेरोमोन ट्रैप आता है, आप फेरोमोन ट्रैप जो है एक एकड़ में 8-10 जगह आप लगा दीजिए। वो फेरोमोन ट्रैप में जितने मेल उसके जो है होते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो सब जाके फल मक्खी के जितने नर होते हैं उसमें जा करके जो है मर जाएंगे। जो ट्रैप होता है उसमें नीचे पॉइजन भरा होता है, तो वो और मेल अट्रैक्टेंट होता है, वो तो वो अट्रैक्ट होकर के जाता है वहाँ पे जो है।
1: अच्छा।
0: और अट्रैक्ट होकर जैसे जाता है उसके अंदर पॉइजन भरता, वहीं वो मर जाता। तो जब मेल की पॉपुलेशन खत्म हो जाती है तो उसका फिर प्रसारण आगे जो है नहीं हो पाता है, आपकी फसल सुरक्षित रह जाती है
1: जी।
0: तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो फल मक्खी की व्यवस्था आप जो ट्रैप का कर लें और दूसरा नर और मादा का अनुपात जो है बराबर मात्रा में बनाए रखें।
1: तो ये कुछ समस्याएं होती हैं जिनका हल डॉक्टर साहब ने आपको बताया, और इसके साथ ही परवल की जो वैज्ञानिक खेती है यहाँ पर पूरी तरीके से आपने जाना कि आप कब खेती कर सकते हैं, प्रजातियाँ क्या क्या होती हैं, खाद और उर्वरक आपको किस तरीके से देने चाहिए, विशेषताओं के बारे में भी आपने जाना। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन और एक खास विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: सुनो सुनो मेहरबान कदरदान, मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची बहनों भाइयों अड़ोसी पड़ोसी आंटी अंकल, मेरी बात पर भी दो जरा ध्यान।
3: अरे टीकू, स्क्रिप्ट में मेरा डायलॉग है, तुम ढोल बजाओ मैं बताती हूँ। सुनो सुनो एक

0: खाना।
1: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
2: चल टिक्की, अभी हमें और भी गांव जाना है।
3: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: सुनो सुनो सुनो सभी एक जरूरी बात, आया मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण फिर एक बार। अगर आपके घर या पड़ोस में है 5 साल या उससे छोटे बच्चे जिनका कोई भी टीका छूट गया हो तो सोचते क्या हो, जल्दी से आशा दीदी से करो बात। बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र है लेकर जाना और उनका टीकाकरण।

0: टीको, ये मौसम है टीकाकरण करवाने का, तो सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना है। आंधी के दौरान हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। बांका, गया, रोहतास और कैमूर में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 40% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 4 से 8 जुलाई के दौरान 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान समय में मानसून की स्थिति कमजोर है। ऐसी स्थिति को देखते हुए किसान भाई बहनों को सलाह दी जाती है कि जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाले धान की किस्मों का बिचड़ा गिराए और बीज स्थली में नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से जीवन रक्षक सिंचाई जरूर करें। धान की किस्मों जैसे सबौर मोती धान, सबौर सोना आदि, इन किस्मों की सीधी बुआई भी किसान भाई बहन कर सकते हैं। किसान भाई बहन आपको बता दें कि इस समय श्री अन्न यानी कि मोटे अनाजों की खेती भी की जा सकती है। मोटे अनाजों की खेती के लिए उचास भूमि का चयन करें। मड़ुआ की उन्नत किस्में हैं वकुला, KMR 316G, PU 67, VL 379 राजेंद्र मड़ुआ, RU 8 और RU 3, और कौनी की उन्नत किस्में हैं राजेंद्र कौनी 1। इन किस्मों की बुआई किसान भाई बहन कर सकते हैं। जो अरहर की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, उचास जमीन में अरहर की बुआई के लिए खेत की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। बहार, पूसा 9, राजेंद्र अरहर 1, राजेंद्र अरहर 2, इन किस्मों की बुआई 60x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें और अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम गंधक का प्रयोग करें। और किसान भाई बहन ध्यान दें कि अरहर की अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। जो मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो और खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना जरूरी होता है। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे सुवान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11 है। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। और जिनके खेत में सब्जियां हैं वो किसान भाई बहन ध्यान दें, भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ और लौकी की फसलों में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना जरूरी होता है। और ध्यान दें कि पत्ती खाने वाली सुंडियों और फल छेदक कीटों की नियमित निगरानी करते रहे और अगर इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो ऐसी स्थिति में डाइमेथोएट 30 cc की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। किसी भी प्रकार का छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। किसान भाई बहनों, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो और स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें। खरीफ प्याज के लिए NO53, एग्री फाउंड, डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर, ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी होता है। बीजोपचार करने से पौधे स्वस्थ होते हैं और फसल अच्छी होती है। खरीफ प्याज के लिए बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। और जो किसान भाई बहन बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची की फल तुड़ाई के बाद बगीचों में जरूरी छटाई कर ले जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप और हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं और अन्य पौध अवशेषों को इकट्ठा करके उन्हें हटा दे। इससे कीट और रोगों का प्रकोप कम होता है और पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि और विकास को बढ़ावा मिलता है। पशुपालक भाई बहन ध्यान दें, दुधारू पशुओं को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए छायादार और हवादार स्थानों पर रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में साफ और ताजा पीने का पानी उपलब्ध कराएं। गलाघोटों और लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की जरूरत होती है, सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: हर समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।

0: ഭാരത് കൃഷി.
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी एफएम ग्रीन और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहां पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
1: मैम, बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
2: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं और ऐसे इसका नाम कैलोशाइबा इंडिका है और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे एनआरसी सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है, इसका कुछ करेक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
1: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
2: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम अच्छा। लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे, इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें, उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं, अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे, स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं, पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं, जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं। उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। अच्छा। इसके बाद ये दो तरीके में से, या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं, या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं, तो इसमें पूरे बैग में छेद, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है, वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नीचे पैंदा में दो छेद हम लोग कर देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12 से 15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीविकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीविकृत कर देते हैं, और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं, उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12 से 15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसिलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसिलियम अच्छे से रन कर जाता है, तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है, जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं, लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं, या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए, या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है, इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू, नदी की पेटी का जो बालू होता है, वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है, उस भूसा का राख भी हम लोग आते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें, तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और दोसा सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं, तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले ली, ये सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको, यदि 2 साल सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है, तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीविकृत करते हैं, ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटलिक कुछ चीज़ हो, पत्थर हो या घास फूस हो, तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है। लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है, या कुछ पत्ता है, ये सब है, तो वो सब को हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीविकृत करेंगे, निर्जीविकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं, केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं, उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीविकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 ग्राम और 1 लीटर पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीविकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी करते हैं, तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग करते हैं, तो इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब माइसिलियम पूरा रन कर जाता है बैग में, तब उसका केसिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं, और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत डाल देते हैं। और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन पानी हम लोग को नमी देना होता है, गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको दो बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम एक बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं नमी दे रहे हैं बिल्कुल फुहारे से देना है और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए, इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद यह तुराई योग्य हो जाता है और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
1: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
2: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सड़ा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है उस बालू का उपयोग कर सकते हैं, प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इन सब सामग्रियों को जैसे सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ न पुराने ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिए लेंगे 1 भागिए लेंगे। और यदि हमारे पास 2 साल पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, हम टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर ले करके हम लोग उसको मिलाते हैं और फिर केसिंग हमारा उसके अगला प्रक्रिया निर्जीवित करना ये हम लोग करते हैं फिर उसका यूज करते हैं।
1: और अंत में मैम मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है, तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वह ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है जो हमारा फसल कक्ष है उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बन डाइजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें स्पॉन का चयन करें वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से गिलहरी से ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीका है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज़ और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेज़ी से लंबा होता है फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित उसको नोच करके ज़मीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो कोप्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि ये आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए, बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि हम लोग को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि।

0: जानते हैं कि खसरा कितनी गंभीर बीमारी है? टीके ना लगवाने से इससे हजारों बच्चे हर साल अपनी जान गंवाते हैं, इसलिए बच्चों को इसका टीका लगवाना बहुत जरूरी है। पहला MR टीका 9 से 12 महीने और दूसरा MR टीका 16 से 24 महीने की उम्र में लगवाना है।
1: जो बच्चे कमजोर हैं, अल्पोषित या जिनको नियमित संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिन्हें सांस की तकलीफ है या फिर हल्का बुखार या दस्त है, उन्हें जल्दी से जल्दी MR टीका लगवाना चाहिए। अगर किसी बीमारी या किसी भी कारण से बच्चे को ये टीके नहीं लग पाए हों, तो बच्चों को 5 साल की उम्र तक आप डॉक्टर या ANM से सलाह लेकर इसे लगवा सकते हैं।
0: बाकी जानकारी आप आशा दीदी और ANM से ले सकते हैं।
2: सच में है पते की बात,
3: खसरा रुबेला है बीमारी घातक, जिसे मिटाना है जड़ तक।
4: जीरो के आगे जीरो, जीरो के पीछे जीरो, आगे जीरो पीछे जीरो। टीको क्यों है इतने जीरो?
1: जीरो नहीं, बल्कि मैं उन जीरो डोज बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ जो पेंटावेलेंट के सबसे बुनियादी टीके के साथ साथ 12 VPD यानी वैक्सीन द्वारा रोके जाने वाली बीमारियों से सुरक्षित नहीं हो पाते हैं, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उन बच्चों और उनके परिवार को बहुत नुकसान होता है।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
1: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थाई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: तो इसका हल क्या है?
1: चलो बताता हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है,
0: तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेंगी कई जानलेवा बीमारी। UMN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रहे, स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।
5: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं एनीमिया के बारे में एक विशेष भेंटवार्ता में। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर शालू गुप्ता और भेंट करता है सुजाता स्मार्ट से। तो आइए हम इस भेंटवार्ता को सुनते हैं और जानते हैं एनीमिया के बारे में विस्तार से। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए।
7: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका कम्युनिटी रेडियो और मैं हूँ स्मार्ट से सुजाता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या पर जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना, क्या ये सिर्फ काम की वजह से है या फिर एनीमिया के संकेत हैं? इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शालू गुप्ता, जो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद। नमस्कार श्रोता और नमस्कार सुजाता जी।
7: मैम, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एनीमिया क्या होता है और ये कितना आम हो गया है।
8: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मुझे जुड़ने का मौका दिया अपने कम्युनिटी रेडियो के तहत, जिससे कि मैं लोगों को इस बारे में कुछ बता सकूं। अगर आप एनीमिया का मतलब सरल शब्दों में चाहें तो यह है शरीर में खून की कमी होना। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर में, जिसका काम होता है कि ऑक्सीजन को खून के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाए। जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन सही तरीके से शरीर में नहीं पहुंच पाती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान और सुस्ती महसूस होती है। और आयरन की कमी की वजह से और कई कारणों की वजह से इस हीमोग्लोबिन की मात्रा में जब कमी होती है उसे एनीमिया हम कहते हैं। थोड़ा बदलाव खाने में अब आने लगा है, लोग जंक फूड खाने लगे हैं, जिससे ऊर्जा तो मिलती है लेकिन जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन है, ये सब नहीं मिलते हैं। इन वजहों से भी शरीर में खून कम हो जाता है और एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा साफ सफाई की कमी, पेट में कीड़े होना, महिलाओं में

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर
1: सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो एफएम ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

ना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर।
1: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नज़र आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते, इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे, तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल ले, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफी मददगार साबित होता है और हमारी स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, 2 चम्मच दही और 1 चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ, जुड़िए जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा, ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, उसके साथ आप स्टिक रहे। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर लें और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना, तो अगर आपको वहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही है या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट जरूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं सस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
1: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
2: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा ज़मीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
1: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
2: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो ज़मीन है, उस पे हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लाविंग करते हैं, और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं वतर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफ़ी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लाविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है? हम सीधी बुआई करने के लिए, जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पे लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पे जो धान होता है उस पे सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसकी वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़ें काफ़ी अच्छे से पकड़ ले हमारी मिट्टी को। तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
3: पडलिंग यानी कि
2: हम कई बार, एक पडलर होता है तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया अपने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेते हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को, हम अपने बिछड़े जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लैंड में लाकर लगाते हैं तो वो मेन लैंड में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लैंड के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या किया हमने, पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला और निकाल कर उसने अपने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान ज़रूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस पे कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में। वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हमने जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पर पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो, और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया हमने कहीं पर भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डेपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डेपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने जो नर्सरी जो लगाया था पहले, तो वो 20 से 25 दिन पुराना था। यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्लेई होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी। तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरीगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरीगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डेपॉग नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25, मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे 1 से 2 सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषता ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब अंदर घुसाते नहीं भी, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईल्ड भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईल्ड जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो जैसे आपने हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी

0: तो ये हमारी तीन तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर अगर किसानों के पास मैकेनिकल ड्रिलिंग, मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है, तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, और जैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होते जाएगी कुछ अपने डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वो ऐसा मशीन होता है जिसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद, मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने तीन बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पर डिपेंडेंट है ये सब।
1: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
0: जी,
1: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
0: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्री विधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुवाई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुवाई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली तीन तरीके की होती है, एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उसको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे एक से एक 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले एक दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड, तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग, मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें, और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो मैंने श्री विधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी, तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पे भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो वो जड़ें आपस में मिल जाएंगी, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए।

0: और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डपॉग नर्सरी। तो ये डपॉग नर्सरी हम श्री विधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्री विधि में यूजली डपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी हैं हमारे।
1: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितनी तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
1: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखे विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: 19 कृषि।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: ഉന്നത് കൃഷി. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा. दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में. किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में. धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है. साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है. अगर हम इन सारी बातों को समझे तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफी महत्वपूर्ण होती है. उच्च उपज प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें. साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत जरूरी है. तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन. मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका सस्य विज्ञान विभाग से. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में.
1: धन्यवाद उमा, सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है, और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है. यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं, और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है. इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है.
0: मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन जरूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए. तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं?
1: पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए. अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है. साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए. धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो.
0: अगर मैम एक हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो एक हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की जरूरत होती है?
1: एक हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है.
0: और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
1: सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए, और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है.
0: जी मैम, और बीजोपचार बहुत जरूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीजोपचार करना चाहिए?
1: उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने. बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है, क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है. इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है. तो बीजोपचार करने के दो तरीके हैं. पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं. इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं. लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए, और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए. इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं, और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं, और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो वो बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं, और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए, ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे. तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं. इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं. रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदी नाशी से उपचार करना चाहिए.
2: फफूंदी नासी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बैवेस्टीन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए।
0: जी मैम, और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं?
2: पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है, वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डेपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो, और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड, और डेपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी खासियत ये है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है, तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें यानी कि 2 to 3 प्लॉइंग्स करना चाहिए, और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादोयुक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्रक्रियाएँ आसानी से की जा सके, और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहां पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहां पे कर सके। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं।
0: और मैम, अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
2: 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में समान रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है, और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमजोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम 3रे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 केजी जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 केजी चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं।
0: मैम, अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं?
2: रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े, जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है, जो कि हम ऊपरी जमीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सौबर, दीप, सहभागी, शुष्क, सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं, वो जैसे कि राजेंद्र, श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं, उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए।
0: तो किसान भाई बहन, मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम, आपने जो जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद उमा।
0: किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि उन्नत कृषि
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, लीची के

0: ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
1: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
0: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुद्दे को खाते, और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
1: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
0: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है, इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
1: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं, तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते हैं?
0: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं, जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़ो कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि इस सारे कीट का प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
0: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छंटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छंटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, मतलब लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुँचाने वाला कीट है उसको खा जाता है, जैसे मकड़िया, लेडीबर्ड बिटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच

0: जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं दो तीन केमिकल का नाम यहाँ पे जिक्र करूँगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में और मैं अनु आप सभी के लिए खास विषय लेकर आ चुकी हूँ, आम के मूल्य संवर्धन एवं परिरक्षण। इस विषय को लेकर आज हमारे बीच है अनिता मैम। मैं आप सभी को बता दूं कि अनिता मैम SMS हैं KVK सबौर में और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत। तो आज बहुत सारी बातें आज मैडम से हम जानेंगे, आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद के बारे में, क्यों परिरक्षित करना चाहिए आम के मूल्य संवर्धित उत्पादों का या फिर आम को। तो आज इसके बारे में सबसे पहले मैम से जानते हैं कि आम के क्या कुछ फ़ायदे हैं। मैम
2: हाँ, थैंक यू अनु। आम के फलों, आम को जो कहा जाता है हमारे यहाँ कि फलों का राजा, आम फलों का राजा है, तो आम फलों का राजा ये काफ़ी पुराने समय से कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि आम फलों का राजा कहा जा रहा है उसके पीछे सही में कारण है। यह आम का फल काफ़ी पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, गुणकारी होता है। इसके फल में विटामिन ए और कैरोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ 100 ग्राम जो है उसमें प्रति 100 ग्राम में 4500 IU पाया जाता है विटामिन ए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा हुआ। इसके अलावा इसमें विटामिन सी संतरा और सेब से कई गुना ज़्यादा पाया जाता है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि आम में मक्खन, जो हम मक्खन कहते हैं, काफ़ी शक्तिवर्धक है, मक्खन के मुकाबले की शक्ति होती है।
1: अच्छा।
2: इसके अलावा इसकी गुठली, जिसको कि हम लोग सोचते हैं कि कोई काम का नहीं है, लेकिन उस गुठली से उसका जो गिरी होता है, उसके अंदर गुठली के अंदर जो गिरी होता है उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग सुखा करके आटा के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसका छिलका जो है, उसका छिलका को हम सुखा कर जलाने के काम में ला सकते हैं। इसके गुठलियों के रेशा से बुश बनाया जाता है। इसके बाद यहाँ तक के चिकित्सक कहते हैं कि आम जो है वह ब्लड और वजन बढ़ाने में कारगर साबित होता है, यदि इसके हम नियमित रूप से अपने डाइट में लें। यदि कितने लोग दुबले पतले हैं, वो वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए आम एक बहुत अच्छा आहार है। और इसके अलावा इसके नियमित सेवन से त्वचा में निखार आता है, इसमें चूंकि विटामिन मिनरल्स पाया जाता है तो ऑटोमेटिक है, और ये एनर्जी रिच फूड है, तो इसमें त्वचा में निखार आता है। जो यूरिन संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो दूर होता है, और यूरिन मूत्र जो है हमारा खुलकर आता है, शरीर में स्फूर्ति आती है, नर्वस सिस्टम में किसी तरह का खराबी हो तो वो भी इसके सेवन से दूर होता है। नींद आने की किन्हीं को समस्या को नींद नहीं आती है, तो इनका आप सेवन करेंगे तो आपको नींद भी आएगा। और जो गर्भवती स्त्रियां यदि इसका सेवन करती है तो उसके बच्चे सुंदर और स्वस्थ बच्चे को वो जन्म देती है। इसका सेवन करने से कमजोरी दूर होता है, और यदि हम रात में सोने से पूर्व ताजा रस का सेवन करें तो कब्ज दूर होता है। और गुठली का जो गिरी होता है उसको, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसको हम लोग आटे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसको यदि महीन चूर्ण बना लें तो मंजन की भांति उसको हम दांत साफ करते हैं तो पायरिया आदि रोग से हम लोग को
1: छुटकारा
2: मिलता है। इस तरह से हम देखते हैं कि आम का बहुत फायदा है। यहाँ खाने को छोड़कर यदि उसका औषधीय भी गुण है, उसका काफी पौष्टिक वैल्यू है, और उसको हमें सेवन अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, अब बात करते हैं परिरक्षण और मूल्य संवर्धन की, तो इसकी क्यों जरूरत पड़ी, क्यों करते हैं हम परिरक्षण और मूल्य संवर्धन?
2: अनु, ऐसा है कि जो भी हमारा फल सब्जी या भी कोई भी कृषि का उत्पाद होता है वह मौसमी होता है, तो उसका उसमें कुछ उसमें अलग अलग कैटेगरी है। कुछ तो होते हैं कि जैसे कि हम उसका यदि तोड़ लिए तो 2 महीना 3 महीना तक भी हम उसको सुरक्षित आराम से रख सकते हैं, जैसे कि अनाज दलहन ये वगैरह है। और कुछ होते हैं कि आप 10 दिन 15 दिन ही रख सकते हैं, जैसे कि और से सब्जी फल में आते हैं। कुछ होते हैं कि 1 सप्ताह ही रख सकते हैं, जैसे कि आलू प्याज है उसको भी कई महीने रख सकते हैं। लेकिन जैसे फूल गोभी है तो 1 सप्ताह रख सकते हैं, वो भी मतलब 1 सप्ताह से तक में उसको खर्च कर देना, ख़त्म कर देना, उससे उसका क्वालिटी ख़राब होने लगता है। 2-3 दिन तक ही वो फ्रेश रहता है। कुछ चीज़ तो ऐसे है कि 1-2 दिन में ही हमारा ख़राब होने लगता है। तो उसकी सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है परिरक्षण एवं मूल्य संवर्धन का, कि बेमौसम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना। यदि जो चीज़ की मौसमी है, यदि उसका हम कोई प्रोसेसिंग नहीं, प्रसंस्करण नहीं करते हैं, परिरक्षण नहीं करते हैं, मूल्य संवर्धन नहीं करते हैं, तो वो खराब हो जाएगा। लेकिन यदि हम इन प्रक्रियाओं को अपनाते हैं तो उसका हम लाइफ को बढ़ा देते हैं। वो जिस मौसम में उसकी उपलब्धता नहीं रहना चाहिए उस मौसम में भी वो उपलब्ध होता है। दूसरा कि यदि हम कोई जो किसी चीज़ को उत्पादन में जो खर्च लगता है उससे परिरक्षित करने में कम खर्च लगता है। तो जैसे कि हम सरकार आंकड़ों की यदि बात करें तो लगभग 40% जो हमारा फल सब्जी है वह उत्पादन होकर जो उपभोक्ता तक जाने से पहले ही खत्म हो जाता है। यदि उसको हम परिरक्षित करके बचा लेते हैं तो हम एक तरह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा लिए, क्योंकि जो खराब हो रहा था उसको बचा लिए। इसके बाद यदि हम इसको घरेलू स्तर पर करके महिलाएं करती हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ऑक्सीजन में यूज करती है तो खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा हासिल होता है। इसके अलावा यदि वो इसको स्वरोजगार रूप में अपनाती है तो आमदनी भी होता है, रोजगार भी होता है। घर बैठे महिलाएं इसका करती है तो महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। युवाएं इसको करते हैं तो युवाओं का पलायन हमारा रोकता है, उनको घर में अपने रोजगार मिल जाता है। इस तरह से हम काफी फल सब्जी का काफी महत्व है और इसको हमें अवश्य करना चाहिए।
1: जी मैम, देखा जाता है कि तेल युक्त अचार तो बनाए जाते हैं आम के, लेकिन क्या लोगों के मन में सवाल है कि क्या तेल रहित अचार इसके बनाए जा सकते हैं?
2: बिल्कुल अनु, तेल रहित अचार हम बना सकते हैं और तेल रहित अचार आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है।
1: अच्छा।
2: इसको बनाने के लिए कच्चे आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसमें 20% नमक, 7.5% पीसी लाल मिर्च और 1% हींग जो है जो हमारा आम को मेजर कर लेते हैं उसके भार के अनुसार उसमें मिलाते हैं और मिश्रण को बार बार हिलाते हुए उसे कुछ घंटे धूप में रखते हैं। उसके बाद उसको बोतल में डाल देते हैं और 4-5 दिन तक उसको धूप में लगाते हैं। उसके बाद फिर वो खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसको आप अच्छे स्वच्छ जगह पर भंडारित कर दीजिए, उसको उपयोग कीजिए। इसमें आपको तेल की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: हाँ, मतलब आप अगर तेल आपको पसंद नहीं है और तेल रहित आप अचार बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है इससे। मैम, अब बात करते हैं आम के मूल्य संवर्धित उत्पाद की। ये जानकारी सभी लोग जानना चाहते हैं कि कौन कौन से मूल्य संवर्धित उत्पाद हम बना सकते हैं इससे।
2: आम के बहुत ढेरों सारे मूल्य संवर्धित उत्पाद है, जैसे एक तो आप तेल रहित अचार मैंने आपको बताया, इसके अलावा तेल युक्त अचार जो कि हम सदियों से बनाते हैं, ये घर की हर गृहिणियाँ बनाती हैं, जिसपे लगता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमचूर जो पाउडर बनाते हैं वो भी लगभग हमको लगता है घर की हर महिलाएं बनाती ही है। तो अमचूर बनाती हैं महिलाएं जनरली, वो सुखा कर बनाती हैं आम की फांकों को, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यदि आम की फांकों को आप पोटासियम मेटाबसल्फाइड के 0.2% घोल में 5 मिनट तक डुबोने के पश्चात धूप में सुखाते हैं तो आमचूर का क्वालिटी गुणवत्ता आपका ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे आमतौर पर महिलाएं उसको सीधे धूप में सुखा करके बनाती हैं, लेकिन यदि ये आप एक स्टेप कर लेती हैं तो आपका आमचूर का गुणवत्ता बढ़ जाता है। इसके अलावा आप पन्ना भी, आजकल जब धूप होता है तो हर घर में पन्ना बनता है, यहाँ तक कि चौक चौराहे पर भी पन्ना मिलता है और दिल्ली जैसे शहर में पैक्ड पैकेजिंग करके भी पन्ना बिकता है, मतलब इसका काफ़ी मार्केट है। तो ये पन्ना आप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आम के कच्चे फलों को भून लें या उबाल लें, उसका गूदा निकाल लेते हैं और उसमें प्रति किलो गूदे में 0.8 kg शक्कर, 0.4 liter पानी, 80 g नमक, 20 g काली मिर्च और 20 g साइट्रिक अम्ल मिलाकर गर्म करते हैं। तो उसके बाद इसके जैसे स्क्वैश को हम लोग बोतल में भरते हैं उसी तरह बोतल में भर देते हैं और इसमें KMS पोटासियम मेटाबसल्फाइड बोतल में भरने से पूर्व उसमें हम लोग मिला देते हैं कि जैसे 5 लीटर है तो उसमें 3 g के अंदाज से उसमें के दर से उसमें मिला करके उसको पैक कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आमचूर बना सकते हैं, पन्ना बना सकते हैं। इसके अलावा जो आम का कच्चा आम हमारा काफी आंधी में गिर के बर्बाद हो जाता है, उस आम का हम लोग कच्चे आम का स्क्वैश बना सकते हैं। कच्चे आम का स्क्वैश बनाने के लिए आप आंधी में गिरे हुए फल भी ले सकते हैं या फिर प्रॉप फल भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो ले सकते हैं। उस फलों को आप अच्छे से धो कर स्टील के चाकू से छिलका उसका हटा दें, टुकड़ों में काट लें। यदि गुठली वाला है तो टुकड़े में नहीं भी काटते हैं तो उसको पूरा डाल दें, लेकिन यदि गुठली नहीं हुआ है तो टुकड़े में काट करके बीज का जो आपका बीज है उसको निकालना अति आवश्यक है, नहीं तो उसको पकाएंगे तो वो चूंकि हार्ड नहीं हुआ रहता है तो वो स्वाद को खराब कर देता है। इसलिए यदि छोटा फल है तो उसको टुकड़ों में अवश्य काट करके बीज का जो बीज है उसको निकाल लीजिए। यदि आपका पूरा मैच्योर है तो गुठले में नहीं भी टुकड़े में काटते हैं तो उसको एज सच भी आप उबाल सकते हैं। तो या तो आप टुकड़े में काटिए या फिर गुठली सहित है तो आप उसको ऐसे छील करके बराबर पानी के साथ उसको हम लोग पूर्ण रूप से गल जाए तब तक उसको हम लोग उबालते हैं। उसका उबालने के बाद उसको या हमारे पास यदि मशीन है पल्पर है तो पल्पर में डाल करके उसको गुदा को अलग कर लेते हैं, रेशा बीज को अलग कर लेते हैं। यदि नहीं है तो हम हाथ से मसल करके गुठली को हटा देते हैं। मिक्सी है तो मिक्सी में उसको हम लोग थोड़ा पीस लेते हैं। उसके बाद कपड़े से मसलिन के कपड़ा मार्किन के कपड़ा से छान करके उसके गुदा को हटा लेते हैं, रेशा को साइड कर देते हैं। इसके बाद उस जो आपका गुदा हुआ है उस गुदे को हम लोग थोड़ा सा हल्का सा भफा लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाथ लगाए हैं, भफा करके उसको रख लेते हैं, ठंडाने देते हैं। और हम लोग जितना रस निकला उस रस को मेजर करके उसका डेढ़ा चीनी लेते हैं, चीनी का आधा पानी लेते हैं। चीनी पानी का हम लोग आंच पे चढ़ा करके जब तक चीनी नहीं गल जाए तब तक पकाते हैं, उसके बाद हाँ चाशनी बनाते हैं। उसका प्रति केजी चीनी के उसमें हम लोग 4 से 5 ग्राम क्योंकि कच्चे आम का बनाने से 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डालते हैं। उसके बाद जब चाशनी हमारा चाशनी और आम दोनों जो आम का रस दोनों ठंडा जाता है तो धीरे धीरे आम के चाशनी को हम लोग आम में डालते हैं, गूदा में डालते हैं और धीरे धीरे चलाते रहते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग जब पूरे अच्छे से मिल जाता है तो 5 लीटर स्क्वैश में आपको 3 ग्राम KMS की दर से थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और आप इसको अब ये आपका बॉटलिंग कर देते हैं और इसको आप पैक करके रख दीजिए। इसको जब पीना हो तो 3 से 4 भाग पानी मिलाकर 1 भाग ये मिलाकर के आप इसको पीजिए और इसका आनंद लीजिए। इसी तरह से आप पके आम का भी स्क्वैश बना सकते हैं, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। आपको पके आम में जैसे यहाँ आप 4 ग्राम साइट्रिक एसिड डाले तो वहाँ 5 से 6 ग्राम साइट्रिक एसिड डालिए प्रति केजी चीनी के हिसाब से। और उसको आपको कच्चा आम को आपको उबालना पड़ा पानी से तो उसमें उबालना नहीं, उसको सीधा छिलका को हटा करके उसके गुदे को निकाल लेना है, गुदा को भफा लेना है। भफा के जैसे कच्चे आम के लिए प्रक्रिया है उसी तरह पके आम के स्क्वैश बनाने की भी प्रक्रिया वही है। इसी तरह से आप उसका स्क्वैश बना सकते हैं। इसके बाद आपका आम का जैम बना सकते हैं। ये कच्चा और पके दोनों आम का जैम बना सकते हैं। इसके लिए मान लीजिए कच्चा आम है तो उसको छील करके टुकड़ों में काट लीजिए, फिर थोड़ा सा पानी में इसे गर्म करके गुदा को नरम कर लेते हैं। अब गुदे की मात्रा का 3/4 या बराबर, मान लीजिए खट्टा आम है तो बराबर चीनी दे दीजिए, यदि पका आम है तो 3/4 में चीनी मिला करके पकाते हैं। उसी यदि पका आम, ये तो कच्चे आम का हो गया, यदि पका आम हम लेते हैं तो पका आम का गुदा लेते हैं उसी के मात्रा में चीनी डालकर उसको पकाते हैं। अब चाहे कच्चा आम को पका रहे हो चाहे पका आम को पका रहे हो, पकाने के बाद जो जितना आप चीनी डाले हैं प्रति केजी चीनी के हिसाब से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड डाल देते हैं हम उसमें। यदि कच्चा आम है तो उसमें आप 4 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं और पका आम ज़्यादा पका है तो 6 ग्राम भी साइट्रिक एसिड डाल सकते हैं। उसके बाद जब इसका तापमान 105 से 180 डिग्री तक पहुंच जाए तब इसको हम लोग उतार करके इसमें 0.02% सोडियम बेंजोएट थोड़े से पानी में घोल करके उसमें मिला देते हैं और इसके बाद उसको हम लोग अच्छे डब्बे में साफ किया हुआ डब्बा में उसको गरम गरम ही डाल करके देते हैं। फिर जब ठंडा जाता है तो उसके ऊपर एक मोम का लेयर डाल करके उसको हम पैक कर देते हैं। इस तरह से हम लोग आम का जैम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आम का मुरब्बा भी बना सकते हैं। आम का मुरब्बा बनाने के लिए पूर्णतः विकसित और स्वस्थ एवं अधपका आम का चयन करना चाहिए। उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, फिर आम के छिलकों को हटा करके उसका 9 सेंटीमीटर मोटाई और आम की गोलाई में बड़े बड़े टुकड़े काट लीजिए। अब उसके बाद अब इन टुकड़ों को 2 से 3% नमक के घोल में डुबाएं ताकि इन्हें काला होने से बचाया जा सकता है। इन टुकड़ों को पतले कपड़े में लपेटकर खौलते पानी में 5 से 10 मिनट तक डुबोएं। बाद में इन्हें सूखे कपड़े पर फैलाकर सुखाएं। थोड़ी देर बाद इन टुकड़ों में जो स्टील या लकड़ी का सिकचा हो या फिर फॉर्क हो उससे थोड़ा छेद कर दीजिए और एक बर्तन में आम के टुकड़े के वजन के बराबर चीनी लेकर पानी में चाशनी तैयार करें। पानी और चीनी का अनुपात 1:3 होना चाहिए। उसमें आप इसके 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से साइट्रिक अम्ल मिला दें। चाशनी तैयार हो जाने पर उसमें आम के टुकड़े को डाल दें और तब तक गर्म करें जब तक चाशनी 3-4 तार ना छोड़ने लगे। अब मुरब्बे को ठंडा कर दें और ठंडा होने पर उसे स्वच्छ जीवाणु रहित बोतलों में भर दें। उसके बाद आप उसको पैक कर दीजिए, उसको चाहें तो उसके ढक्कन को मोम से भी सील कर सकते हैं, फिर आप इसका आनंद लीजिए। इस तरह से हम लोग विविध मूल्य संवर्धित उत्पाद बना सकते हैं, उसका परिरक्षण करके विविध परिरक्षित उत्पाद बना करके उसका सालों भर मजा ले सकते हैं, इसको रोजगार ले कर सकते हैं और अपने घर के खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा को भी पूर्ण कर सकते हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और श्रोताओं आशा करते हैं कि आप भी आम के जो मूल्य संवर्धित उत्पाद हैं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनाएं जैसे कि मैडम ने आपको बताया। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
3: उन्नत कृषि।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि। नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं आरजे अनु को। आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ श्रोताओं, उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी बातें। तो आज भी एक खास विषय और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत लीची और आम के बागों का प्रबंधन कैसे करें। तो इस विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रूबी रानी। मैं आपको बता दूँ, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। मैडम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
1: मैडम। जैसे कि आज का जो हमारा विषय है, अच्छे फलन के लिए तुड़ाई उपरांत आम और लीची के बागों का प्रबंधन, तो इनके तोड़ने के बाद बाग का प्रबंधन कैसे करना चाहिए हमारे सभी किसान भाइयों को जो बागवानी कर रहे हैं इस फल की, और ताकि आने वाले समय में अच्छी फलन उन्हें प्राप्त हो सके।
2: किसान भाइयों, बागवानों, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी बगीचे की उत्पादकता एवं उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बहुत आवश्यक है कि बगीचे का समुचित प्रबंधन किया जाए। वास्तव में होता क्या है कि किसान को जब फूल आने लगते हैं पौधों में, चाहे लीची में चाहे आम में, तब वो पूछना शुरू करते हैं कि अब इसमें क्या करें ताकि मेरा फलन ज़्यादा हो। लेकिन ये आवश्यक है कि तुड़ाई के बाद ही उसका सही ढंग से प्रबंधन करें, चाहे कीट व्याधि का प्रबंधन हो, चाहे पोषण प्रबंधन हो, चाहे उसकी तुड़ाई हो, प्रूनिंग हो, और कुछ भी तरह की जो है समस्याएं हैं उसका प्रबंधन अगर सालों भर वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो कीट व्याधि का भी प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ फल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है, जिससे बागवान को उत्पाद का अधिक मूल्य और मुनाफा प्राप्त होता है।
1: जी,
2: तो हम एक एक करके बताना चाहेंगे कि लीची और आम में तुड़ाई के उपरांत
1: क्या
2: करना चाहिए, बगीचे में क्या करना चाहिए ताकि अगले साल में आने वाले फलन जो हो वो ज़्यादा अच्छा हो और अच्छी उत्पाद गुणवत्ता युक्त भी हो।
1: जी मैम, अब कुछ क्रियाकलाप की बात करते हैं, तो क्या कुछ क्रियाकलाप करना चाहिए तुड़ाई के बाद बागों के प्रबंधन के लिए?
2: सबसे पहले आम और लीची के तुड़ाई के समय में तुरंत या उसके तुरंत बाद बगीचे में बहुत सारी सूखी एवं टूटी टहनियाँ, पत्ते, सड़े गले फल आदि रह जाते हैं, जो कि कीट एवं व्याधि के लिए वैकल्पिक आधार का स्रोत का काम करते हैं। जब वो पेड़ में नहीं रहते हैं तो टूटे पत्तों में, टहनियों में, और जो सड़े वाले फल होते हैं जब या तो पेड़ पे सड़ जाते हैं या फिर टूटने के बाद सड़ जाते हैं, तोड़ने के दौरान जो है बहुत सारे फल नीचे गिर जाते हैं जिसमें भी विभिन्न प्रकार के जो है कीड़े का प्रकोप होता है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि फलों की तुड़ाई के उपरांत बगीचे की अच्छी तरह से सफाई की जाए। सफाई में क्या करें, रोगग्रस्त टहनियों, पत्तियों, सड़े फलों को बगीचे से बिल्कुल बाहर निकाल दें। साथ ही पेड़ में अगर कोई रोगग्रस्त टहनियाँ हो, पत्तियाँ हो, कीड़ों का आदि का प्रकोप हो, तो उसका जो है अगर वो टहनी काटने लायक हो तो उसको काट दें, अगर वो टहनी काटने लायक नहीं हो तो उन सभी रोगों और व्याधियों का समुचित प्रबंधन करें ताकि उसका प्रकोप बढ़ नहीं पाए। अगर टहनियाँ अधिक झुकी हों, अर्थात जमीन पर भी कोई सटी हुई हो, क्योंकि उसमें जब फल लगते हैं तो फल के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसमें भी अगर फल होता है तो लोग छोड़ देते हैं कि तुम्हारा फल इसमें लगा हुआ है, हम इसको छोड़ देते हैं। परंतु फल की तुड़ाई के बाद वैसी टहनियाँ जो जमीन को छूती हुई हों या अधिक झुकी हुई हों, उनकी छटाई भी आवश्यक है ताकि जो है 1 से 1.5 मीटर जमीन तक जो है वो बिल्कुल खाली रहे, कोई टहनी रहे और हवा का आवागमन अच्छे से हो सके।
1: जी मैम, अब बात करते हैं पोषण प्रबंधन की, तो आम और लीची के बागान में जो है पोषण प्रबंधन कैसे करना चाहिए?
2: सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, जैसे जून के महीने में लीची की तुड़ाई जो है जून तक ख़त्म हो जाती है, जून के महीने में जो है आप लीची का जो है तुड़ाई के उपरांत की सूखी टहनियाँ, आड़ा तिरछा और रोगग्रस्त टहनियाँ, वृक्ष के छत्रक के बाहर जाती टहनियों को छटाई कर दें ताकि उसमें समुचित हवा और सूर्य का प्रकाश हमेशा मिलता रहे। और छटाई के उपरांत जो है बेधक छटाई अगर समुचित ढंग से करेंगे तो जो स्टेम बोरर का कीड़ा है उसका प्रकोप कम हो जाता है और छत्रक के अंदर की तरफ भी फल आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि छत्रक के अंदर में भी तब उचित हवा और सूर्य के प्रकाश का आवागमन होना शुरू होता है। साथ ही साथ लीची की मकड़ी से आक्रांत टहनियाँ जो हैं उसको भी काटकर बगीचे से दूर मिट्टी में दबा दें। उसके बाद बागों की हल्की जुताई करें, जिससे जून जुलाई के महीने में जो भी खरपतवार और मिट्टी के साथ सड़े गले की मिट्टी के साथ मिट्टी में पड़े कीड़े और मकोड़े उसके लार्वे नष्ट हो जाएं। और इसके बाद जब तुड़ाई हो जाता है तब उसके बाद जो है उसके पोषण प्रबंधन करते हैं, चाहे आम हो या लीची हो, तुड़ाई के उपरांत ही उसका हम पोषण प्रबंधन करते हैं। पोषण प्रबंधन के लिए सबसे पहले बगीचे की सफाई करते हैं, उसके थाले का निर्माण करते हैं, और पोषण कहाँ पे दिया जाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसके लिए हम बताएंगे कि जो भी छत्रक का फैलाव हो, उस छत्रक के फैलाव से आप एक सीधी जहाँ पर लकीर खींच दें ऊपर से नीचे तक, और तने के से और उस दूरी को चार बराबर भागों में बांट दें, यानी कि जो भी छत्रक का फैलाव हो वहाँ से और पेड़ के तने की दूरी को चार बराबर भागों में बांटें, एक भाग अंदर की तरफ एक भाग बाहर की तरफ को छोड़ दें, और बीच वाले जो दो भाग हैं उसी में मुख्यतः आप फर्टिलाइजर का उपनिवेश करें, वहीं पर फर्टिलाइजर डालें, क्योंकि पौधे का अधिकतर जो है वो अवशोषी जड़ें जो होती हैं, रूट हेयर्स जो रहते हैं, जो कि पानी और पोषण का अवशोषण करते हैं, उन्हीं क्षेत्रों में रहता है। इसलिए पहले थाले का सफाई करके पेड़ जो भी बगीचे में आपकी सूखी टहनियाँ, रोगग्रस्त टहनियाँ, सड़े गले पत्ते, उसको हटा दें, एक बार जुताई कर दें, फिर उसको थाले का निर्माण करके पोषण प्रबंधन करें। पोषण के रूप में अगर आपका वृक्ष जो है, बगीचा जो है, वो व्यावसायिक रूप से फल रहा है, 10 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर का है, तो उसके लिए आप जो है नाइट्रोजन 800 से 900 ग्राम, फॉस्फोरस 400 से 50 ग्राम, और पोटास जो है 800 से 1000 ग्राम प्रति पेड़ प्रति वर्ष दें। इसके साथ ही 40 से 50 किलो आप जो है कंपोस्ट भी उसमें डालें। ध्यान रहे कि ये मात्रा जो है प्रति वर्ष प्रति पेड़ के लिए है, और इसकी मात्रा जो है, इस मात्रा की 3/4 भाग आप जुलाई माह में डालें, और 1/4 भाग जो है फल के उपरांत, फल जब लग जाता है तब उसके बाद अप्रैल के प्रथम या दूसरे सप्ताह में दें, ताकि उसमें फल की बढ़वार ज़्यादा अच्छे से हो सके, फल का साइज बढ़ सके। लेकिन 3/4 भाग आप जुलाई के महीने में ही, जून जुलाई के महीने, जून लीची के केस में जून के अंतिम से लेकर के जुलाई अगस्त महीने तक, और आम के केस में जुलाई अगस्त से लेकर के मध्य सितंबर तक आप पोषण का प्रबंधन कर लें।
1: जी कई बार मैम देखा जाता है कि आम और लीची के बागों में कीट व्याधियों का प्रकोप हो जाता है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सके हैं?
2: कीट व्याधि के प्रबंधन के लिए आपको तुड़ाई के उपरांत ही ध्यान देना पड़ेगा, तुरंत ध्यान देना शुरू करे होगा। जैसा कि मैंने बताया कि तुड़ाई के उपरांत जो भी रोगग्रस्त टहनियाँ उसकी प्रूनिंग कर लें, उसकी छटाई कर लें, और जहां पर भी आपको लगे कि कीड़े मकोड़े हैं उसका उचित प्रबंधन कर लें। अब है कौन कौन से कीड़े मकोड़े ज़्यादा लगते हैं।
1: जी
2: लीची के केस में बता दें कि लीची माइट का प्रकोप बहुत होता है। इसका ये लक्षण होता है कि पत्तियां में जो है वो ब्राउन कलर का, कॉफ़ी के कलर का एक वेलवेट नुमा संरचना बन जाती है पत्ती के पिछले भाग में, और धीरे धीरे ये पत्ती सिकुड़ जाती है
1: जी।
2: और ये जो वेलवेट नुमा आकार का जो है बनता है वो संरचना जो बनती है पत्ती में, इसको कहते हैं इरेनियम, और उस इरेनियम के नीचे जो है वो उसके कीड़े रहते हैं, माइट के जो है वो कीड़े रहते हैं, लीची माइट के कीड़े रहते हैं। तो इसलिए जो अगर आप इसमें स्प्रे करेंगे तो उसमें वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि जो भी आक्रांत पत्ते हैं उसको आप तोड़ करके उसको दूर, बगीचे से दूर आप जो है गड्ढे बना करके उसमें डाल दें और उसको ढक दें। इसके बाद आप विटेबल सल्फर 0.3% 1 ग्राम पर 1 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उसका छिड़काव करें, और छिड़काव जो है 20 दिन के अंतराल पे 2 बार करें। इससे आपको, लेकिन आवश्यक है कि जो भी आक्रांत टहनियाँ हैं उसको काटकर आप बिल्कुल हटा दें और बगीचे में ना छोड़ें, और इस तरह से जो है आप लीची के माइट से आप बचाव कर सकते हैं अपने लीची को। उसी तरह से अगस्त सितंबर के महीने में शूट गॉल का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, प्रभाव देखने को मिलता है, तथा जाला बनाने वाले भी टेंट कैटरपिलर का प्रभाव भी बहुत होता है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे प्रथम जाला साफ करके प्रभावित भाग को काट देना चाहिए, और अधिक प्रकोप होने पर 0.2% कार्बरिल का 3 ग्राम प्रति लीटर या 0.04% मोनोक्रोटोफॉस यानी कि 1 ml प्रति लीटर मोनोक्रोटोफॉस का छिड़काव करना चाहिए। रेड रस्ट या एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु, क्योंकि एंथ्रेक्नोज जो है वो फलों को काफ़ी आक्रांत करता है, एंथ्रेक्नोज के कारण फल का जो है वो रंग बड़ा ख़राब हो जाता है और काला काला पड़ने लगता है, इसलिए एंथ्रेक्नोज के नियंत्रण हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी छिड़काव करें ताकि आपके फल की गुणवत्ता बरकरार रहे। ये खासकर आम के पौधे में होता है और बरकरार रहें। कभी कभी क्या होता है, अधिक बारिश की होने की वजह से बाग में जल जमाव की समस्या हो जाती है, जल निकासी की समस्या नहीं हो पाती है और पेड़ में तना छेनक का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे जगहों में। तो अगर आपको तना छेदक का प्रकोप दिखे तो आप अगस्त सितंबर के महीने में जाला को साफ करके, जो भी उसका जो अगर तना छेदक का प्रकोप होता है जहाँ पे, आपको पता चल जाएगा क्योंकि वो छेदक जो है कुछ बुरा लकड़ी जो है अंदर के तने में घुस करके उसको लकड़ी जो है काट करके बाहर बुरादा के रूप में गिराते हैं। तो जहाँ भी आपको बुरादे के रूप में लकड़ी दिखे आम के पेड़ के बाहर, आप समझ जाइए कि इसमें तना छेदक है और उसके उपचार के लिए उस वहाँ पर जो जहाँ पर आपको गिर रहा है वो लकड़ी का, उसको साफ करके उसको क्लोरोपाइरीफॉस का स्प्रे करें। इसके अलावा क्या होता है कि तना में छेद कर देते हैं, लीची में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, तना में छेद करते हैं और बहुत जालेदार संरचना, गोल गोल संरचना बना के जाले के रूप में वो बाहर निकलता है। तो सबसे पहले आप लीची के पेड़ में जाले को साफ करें, या आम के पेड़ में भी ये प्रकोप देखने का मिलता है तो आप उसको अच्छी तरह से सफाई करें। जहाँ भी आपको छेद दिखे उसमें कपड़े में पेट्रोल लपेट के उस छेद की सफाई करें, उसके बाद न्यूबान से भींगी रुई छेद में डाल करके उस छेद को गीली मिट्टी से बंद कर दें और इस तरह से वो वाष्पीकृत गंध के प्रकोप से वो कीड़े नष्ट हो जाते हैं और इस तरह से आप जो है स्टेम बोरर से आप अपने लीची या आम के पौधे को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो है अक्टूबर नवम्बर महीने में रेड बेंडेड कैटरपिलर का जो है उसका भी बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। आजकल किसान बहुत परेशान हैं इस रेड बेंडेड कैटरपिलर से। वो कैसे पहचानेंगे कि रेड बेंडेड कैटरपिलर है, तो आम में जो है वो जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, आम 2 से 3 सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है, तब देखते हैं कि आम के निचले भाग में एक छिद्र टाइप से दिखता है और वहाँ पे थोड़ा भूरे रंग का छेद दिखता है, उसके कुछ दिन के बाद से आम नीचे से फटने लगता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रबंधन तभी होगा जब अक्टूबर और नवंबर के माह में हम इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इसके लार्वे, इसके जो अंडे होते हैं वो अक्टूबर नवंबर महीने में आम के पेड़ के तने जो होते हैं उसमें जो कुछ तने के जो नीचे क्रैक्स होते हैं, जो खुरदरे भाग होते हैं, उसके नीचे वो अंडे छुपे रहते हैं। तो उस समय आपको बहुत आवश्यक है कि क्लोरोपाइरीफॉस से बहुत अच्छी तरह से आम के पूरे तने को आप स्प्रे कर दें। अगर उसके अंडे नष्ट हो जाएंगे तो लार्वा बाहर नहीं आ पाएगा, लार्वा बाहर नहीं आएगा तो फिर आपको इस आक्रांत से बच सकते हैं। और आजकल ये बहुत एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है आम में, 2/3 3/4 भाग कभी कभी किसी बगीचे का पूरा नष्ट हो जाता है और इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आवश्यक है ये काम आप अक्टूबर नवम्बर माह में करें
1: जी।
2: इसके अलावा अक्टूबर नवंबर माह में आपको उकठा रोग या डायबैक की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर डायबैक की समस्या में क्या होता है

0: सेन, फूल आने तक कभी भी जो है सिंचाई और पोषण का प्रबंधन ना करें। आम और लीची में ध्यान रखें, आम और लीची में नवंबर माह के बाद सिंचाई और पोषण का प्रबंधन आप नहीं करें। अगर आप पोषण देते हैं, लोग क्या होता है कि वर्षा के बाद प्लॉइंग करते हैं खेत में, बगीचे की खेती प्लॉइंग करते हैं और उनको लगता है कि अब ये फूल आने वाला है तो हम अच्छे से पोषण दे दें ताकि जो है हमारा आगे आने वाले साल में फलन अच्छा हो। लेकिन जब आप नवंबर महीने में आप पोषण करेंगे तो क्या होता है कि फल बनने की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली होती है वो बंद होकर के पत्तियां बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आपके पौधे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, हरे भरे दिखेंगे, लेकिन उसमें फूल नहीं आएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आम और लीची में पोषण का प्रबंधन आप सितंबर के माह तक ही कर लें तो बेहतर है। दूसरी बात, अक्टूबर के महीने में आप जो है बगीचे की जुताई अवश्य करें। आप हम ये नहीं करें कि आप पोषण प्रबंधन करें, अक्टूबर नवंबर महीने में बगीचे की जुताई अवश्य करें ताकि बरसात में होने वाले जो भी खरपतवार हो गए हैं उसकी सफाई अच्छे से हो सके, क्योंकि खरपतवार जो है कीट और रोग का एक अल्टरनेट माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। अगर कोई कीट वादी पेड़ में अगर नहीं है तो भाग करके वो तत्काल में जो है वो खरपतवार में छुप जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि बरसात के बाद जो है आप एक बार बगीचे की अच्छी तरह से जुताई करें, पेड़ के में थाला बनाएं, पेड़ के थाला को साफ रखें और तूतिया चूना तूतिया और पानी का घोल 5:5:50 में बना करके पेड़ के धड़ों को 3 से 4 फीट ऊंचाई तक अच्छी तरह से पुताई कर दें। इससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिल पाएगा। तो ये करना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे आप थाला तो बनाएंगे, थाला की सफाई करेंगे, लेकिन पोषण अभी नवंबर महीने में बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा आपको फूल बनने की प्रक्रिया बंद होकर के पुनः पत्तियां का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक मिली बग जो कि आम में या बहुत सारे फूल या फल के पौधों में लगते हैं, कि छोटा छोटा उजले रंग का थोड़ा सा गद्देदार टाइप का जो है वो कीड़े जो है लग जाते हैं, खासकर जो मुलायम पत्तियां होती हैं टिप पे बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप होता है, इसको मिली बग कहते हैं, या आम में उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको गुजिया किट भी कहते हैं। इसके रक्षा हेतु दिसंबर माह में तने पर भूमि से 40 मीटर की ऊंचाई तक मिट्टी का लेप लगा दें, उस मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस का भी आप समावेश कर दें और मिट्टी का लेप लगाने के बाद जो है इसके ऊपर, उस मिट्टी के लेप के ऊपर 25 सेंटीमीटर चौड़ाई की पॉलीथीन आप लपेट दें और उसके ऊपर नीचे, पॉलीथीन के ऊपर और नीचे दोनों भाग में को आप सुतली से बांध दें, तने के धड़ को चारों तरफ से सुतली से बांध दें और पट्टी के नीचे की तरफ थोड़ा सा ग्रीस लगा दें, क्योंकि इसी महीने में वो मिली बग के जो लार्वा होता है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। अगर आप वो प्लास्टिक की पट्टी लगा के उस पर ग्रीस लगा देंगे तो गुजिया कीट जो है उसे पार नहीं कर पाएंगे, वो वहीं पर चिपक रह जाएंगे, और यदि कीटों का प्रकोप अधिक हो तो ये आवश्यक है कि मिट्टी में क्लोरोपायरीफॉस को भी 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से मिला दीजिए और उसके बाद से उसको प्लास्टिक से लपेट करके और नीचे और ऊपर पोर्शन में ग्रीस लगा दें ताकि आप जो गुजिया कीट से आप बचा सकें। साथ ही साथ छाल खाने वाले मतलब बार्क ईटिंग कैटरपिलर और तना छेदक कीड़ों को भी पहचान कर पहले इसका जाला साफ करें नवंबर महीने में भी, और मोनोक्रोटोफॉस या डाइक्लोरोफॉस का 0.05% के घोल से छेद में डाल करके उसको छेद बंद करें। ये सारे जो है अगर आप इस तरह का प्रबंधन दिसंबर माह तक करते हैं तो ये आप आने वाले फलन के समय में आप जो है बहुत सारे कीट और व्याधि का से आप निजात पा सकते हैं और उसके बाद आपका जो फल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी और उसकी उपज भी ज़्यादा होगी।
1: जी, ये बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी मैम, और आशा करते हैं हमारे सभी किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, अगले दिन एक अलग विषय के साथ हाजिर होंगे हम इसी फ्रिक्वेंसी पर, तब तक के लिए नमस्कार।
2: उन्नत कृषि

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं सेहत से जुड़ी हुई। क्या हो गया है ना कि आजकल के समय में फोन हमारा इतना अच्छा साथी बन गया है कि इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर एक चीज पर पड़ता है, फिर चाहे वो रिश्ते हों या फिर हमारी दिनचर्या। और हमारी दिनचर्या तो इतनी बुरी तरह से बिगड़ी है कि उसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो रही है हमें, चाहे मोटापा हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि हमारी दिनचर्या एक जैसी है ही नहीं। कभी 10 बजे सो गए, कभी 12 बजे सो गए, कभी 3 बजे सो रहे हैं तो किसी दिन शाम को 6 बजे ही नींद आ गई, कभी सुबह 4 बजे जग रहे हैं, कभी 6 बजे जग रहे हैं, कभी 10 बजे जग रहे हैं। और ये जो सोने और जागने का ठीक समय नहीं होता है जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से अपने आप को संतुलित नहीं बना पाता है। सोचिए आपके ऑफिस वाले कभी आपको सुबह 6 बजे बुला रहे हैं, कभी 8 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे हैं और आपको छुट्टी दे रहे हैं, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, तो आपका दिमाग भन्ना जाएगा या नहीं? उसी तरीके से हमारे शरीर का दिमाग भी भन्ना जाता है और वो हमारे अंदर ढेर सारी बीमारियां पैदा करने लगता है। तो क्या होते हैं सही समय पर नहीं सोने और जागने के नुकसान, आइए इस बारे में जानते हैं और किस तरीके से आप इसे सुधार सकते हैं इसके बारे में भी हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर का एक सर्कैडियन रिदम होता है। ये शरीर का एक 24 घंटे की जैविक घड़ी है। जैसे हम रूटीन बनाकर रखते हैं ना कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये काम करना है, उसी तरीके से हमारा शरीर भी 24 घंटे का एक रूटीन बनाकर रखता है। और जो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है जिसे कि हम SCN कहते हैं, वो यही तय करता है कि कब नींद आएगी, कब भूख लगेगी, हार्मोन कब निकलेंगे। और अगर एक ही समय पर हम सोते और जागते हैं तो जो सोने वाला हार्मोन होता है यानी कि मेलाटोनिन, जिसे कि हम स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो सही समय पर निकलता है। और जब ये सही समय पर निकलता है तो हमें नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और जब हम गहरी और अच्छी नींद सोते हैं तो सुबह उठने में भी हमें थकान बिल्कुल नहीं लगती और हम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश महसूस करते हैं। अगर हम सही समय पर सोते हैं तो हार्मोन और शरीर पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो कॉर्टिसोल, जिसे कि हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, वो संतुलित रहता है। इसके साथ ही इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर रहती है। जी हाँ, इंसुलिन, जिससे कि डायबिटीज का खतरा होता है, वो भी आपके निश्चित समय पर सोने और जागने से काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रोथ हार्मोन भी सही समय पर निकलता है, जिससे कि हमारे जो मांसपेशी होते हैं वो रिपेयर होते हैं। और इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन हमारे लिए एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। यानी कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा ना कि उम्र से पहले ही वो काफी बूढ़े लगते हैं। इसके पीछे हालांकि कई सारी वजहें होती हैं और उनमें से एक वजह ये भी होती है कि आप सही समय पर, आप निश्चित समय पर नहीं सो रहे हैं, नहीं जाग रहे हैं। निश्चित समय पर सोने और जागने के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसके लिए कई सारे रिसर्च भी किए गए हैं। और रिसर्च क्या कहते हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो लोग रोज अलग अलग समय पर सोते हैं उनमें मोटापा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसी जो बीमारियां हैं वो काफी ज्यादा पाई जाती है और उनमें हार्ट डिजीज का खतरा भी 20-30% अधिक होता है। वहीं जो लोग निश्चित समय पर सोते हैं, जागते हैं, उनकी जो याददाश्त शक्ति होती है वो बेहतर होती है, वो किसी चीज़ पर फोकस अच्छा कर सकते हैं, उनका जो रिएक्शन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, आइए अब हम ये जानते हैं कि हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। जी हाँ, अगर हम आयुर्वेदिक दिनचर्या की बात करें तो ये कहता है कि रात 10 से 2 बजे तक, जो कफ से पित्त काल कहा जाता है, इस समय हमारा शरीर लीवर डिटॉक्स करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और डाइजेशन को रीसेट करता है। लीवर डिटॉक्स यानी कि जो आपके लीवर में जितनी भी गंदगियाँ हैं वो रात के 10 बजे से 2 बजे तक साफ होते हैं। हमारे शरीर में अगर कोई चोट लगी है या फिर किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो रिपेयर भी इसी समय में होता है, हमारा डाइजेशन भी उस वक्त रिसेट होता है। तो 10 से 2 बजे का जो समय होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे शरीर के रिपेयर के लिए, हमारे शरीर को साफ सुथरा करने के लिए। इसलिए अगर हम 10 से 2 बजे तक जागते रहते हैं तो हमारा शरीर तो दूसरा काम कर ही नहीं पाता, इस वजह से हमारा शरीर और भी खराब होता जाता है। और अगर आप 10 बजे के बाद जागते हैं तो आपके अंदर पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है यानी कि गैस से संबंधित समस्या होती है, त्वचा की समस्या होती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, आपके अंदर घबराहट जैसी परेशानी बढ़ती है
वहीं अगर आप 10 बजे तक आयुर्वेद के हिसाब से सो जाते हैं तो आपको ये सारी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जागो, तो इससे क्या होता है? अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो उस वक्त हमारा दिमाग सबसे शांत और सबसे स्पष्ट होता है। अब अगर आप कभी किसी फैसले को लेने में उलझे तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और उस वक्त थोड़ा ध्यान कीजिए और फिर सोचिए कि आपके फैसले का समाधान क्या क्या हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 से 6 बजे के बीच का माना जाता है। वहीं ये जो मुहूर्त होता है यानी कि 4 से 6 बजे का, उस समय कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए और पढ़ाई करने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम समय होता है। ये आपने सुना होगा ना, हमारे मम्मी पापा हमेशा कहते हैं कि सवेरे जागकर पढ़ाई करो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई होती है, उस वक्त जो चीज़ें याद करते हैं वो याद रह जाती है, क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग बिल्कुल शांत रहता है और ऐसे में हम जो भी पढ़ते हैं वो याद रह जाता है। और अभी जो कि शुरुआत में ही हमने बात की, हमारा जो मोबाइल है वो आजकल हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से शामिल हो गया है कि क्या कहने। हालांकि कुछ लोग लैपटॉप पर स्क्रीन पर पूरे दिन काम भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग मोबाइल पर भी टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हो या फिर किसी स्क्रीन पर काम कर रहे हो तो ध्यान रखें कि जो स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलती है ये दिमाग को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, मत सो। और इसका वैज्ञानिक प्रभाव ये पड़ता है कि ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन को 50 से 80% तक दबा देती है, जिससे नींद आने में 30 से 90 मिनट की देरी हो सकती है। इससे ज़्यादा भी देरी हो सकती है अगर आप लगातार फ़ोन को चला रहे हैं, दिन भर फ़ोन चला रहे हैं और सोने से ठीक पहले भी आप फ़ोन चला रहे हैं, तब तो आपको नींद आने में काफ़ी वक्त लग सकता है। इसका परिणाम ये होता है कि आपकी नींद बहुत हल्की आती है, आपकी नींद बार बार टूट जाती है और जब आप सुबह जागते हैं तो आपको बहुत थकान लगती है। तो साइंस और आयुर्वेद दोनों को माने तो रात 9:30 से 10 बजे तक सोना सबसे सही है और सुबह 5 से 6 बजे तक जगना सबसे बेहतर माना जाता है। और जो लोग दिन भर स्क्रीन पर काम करते हैं वो सोच रहे होंगे हम क्या करें, हमारे पास तो हमेशा ब्लू लाइट रहता है, तो आप दिन में काम कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, टीवी या तेज़ लाइट वाली कोई भी चीज़ है तो उसे बंद कर दीजिए। आप दिन भर काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो कहा जाता है कि सोने से 3 घंटे पहले ये सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो कम से कम 1 घंटा पहले तो ये काम ज़रूर करें। तो आप सोने से पहले कर क्या सकते हैं, तो आप हल्का संगीत सुनिए, अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है तो पढ़िए, पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है। और एक रूल बना ले कि बिस्तर पर मोबाइल का यूज़ करना ही नहीं है। और इसके साथ ही अब तक हमने मोबाइल के बारे में बात की, हमने कहा ना आपको कि रात में जो हमारा शरीर होता है वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है, उसे ठीक ठाक करता है। तो उस दौरान अगर हमारा शरीर सोचिए खाना पचाने में लग जाए तो हमारा शरीर रिपेयर कब होगा? इसलिए सुझाव दिया जाता है कि देर रात खाना नहीं खाना चाहिए, ख़ास तौर से सोने के 3 घंटे पहले तक आप अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और अगर आपको उसके बाद कुछ खाना भी हो तो बहुत हल्का, तला भुना नहीं और बहुत स्पाइसी मत खाइए। अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी गई हो या फिर आप काम में बिजी रहे और आपको खाने का वक्त नहीं मिला तो, ये कभी कभार हो तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि खाना जो होता है हमारा 3 घंटे में पच जाता है और जब हम सोएंगे तो हमारा शरीर खाना खाने में वक्त नहीं लगाता बल्कि वो हमारे शरीर को रिपेयर करता है। और अगर हम सिंपल सी बात करें तो कितनी नींद से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोते कब हैं और क्या आप निश्चित वक्त पर सोते हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज से आप समझ जाइए कि अगर आप 12 बजे सो रहे हैं ना तो रोज़ 12 बजे सोइए, अगर आप 3 बजे सोते हैं तो रोज़ 3 बजे ही सोइए, और अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो रोज़ 10 बजे सोइए। हाँ, कभी कभार 1-2 घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि आपके सोने और जागने का समय निश्चित हो। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से 10 बजे तक नहीं सो सकते हैं, आपका काम लंबे समय तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है, तो कोई बात नहीं, हर रोज़ 1 बजे सोइए। आपके शरीर को पता लग जाएगा कि यही है हमारा स्लीप साइकिल, हम 1 बजे के बाद ही सोएंगे और 1 बजे के बाद ही हमें अपने शरीर को रिपेयर करने का काम करना है, तो आपका शरीर वैसे अपने आप को ढाल लेगा। हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे कि वैसे मुझे तो रात का कोई काम है नहीं, हमारा सारा काम तो शाम को ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 10 बजे बिस्तर पर जाएं भी तो हमें नींद ही नहीं आती। कहाँ से आएगी आपको 10 बजे नींद, क्योंकि आपके शरीर को पता है कि आप तो 2-3 बजे सोने वाले प्राणी हैं,
इसलिए अचानक अगर आप अपने शरीर को कहेंगे कि आपको 10 बजे अब सोना है, तो आपका दिमाग स्लीप हार्मोन नहीं रिलीज करेगा। इसके लिए आपके शरीर को धीरे धीरे इस आदत में ढालना होगा। अगर आप मान लीजिए कि आपको रात के 1 बजे हर रोज सोने की आदत है, उसी वक्त आपको नींद आती है, तो आप पहले दिन क्या करेंगे कि आधा घंटा टाइम पीछे करेंगे, यानी कि आप उस दिन 12:30 बजे सोने की कोशिश करेंगे और फोन 11:30 बजे तक चलाना बंद कर देंगे। और 12:30 बजे अगर आप सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको नींद आ जाएगी। ये काम आप 1 हफ्ते करेंगे। फिर उसके बाद जागने का भी उसी तरीके से, अगर आप 9 बजे सुबह जाग रहे हैं तो जागने का भी समय आधा घंटा पीछे कर दीजिए। बस 1 हफ्ते आप ऐसा कीजिए, फिर देखेंगे कि खुद ही आपको 12:30 बजे नींद आ रही है और आप 8:30 बजे जग जा रहे हैं। फिर आधे घंटे और पीछे करिए। इसी तरीके से कुछ दिन लगेंगे, हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, लेकिन आपका जो रूटीन है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। किसी भी अच्छी चीज़ को करने में वक्त तो लगता है ना, और अच्छी आदतें बनाना तो बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतें बहुत मुश्किल से बनती है। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखिए, अच्छे से सोइए और अच्छे से जागिए, और अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए, फ्रेश रखिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
1: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्कार मैडम।
1: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
2: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
1: तो मैम FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
2: जी इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं, किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगी कि खेत में जो टमाटर 2 रुपये किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपये किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाएं तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
2: जी यही तो पूरा खेल है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात यह है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है।
1: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
2: जी तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की जरूरत है। अपने जिले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड उनके कार्यालय में संपर्क करने की जरूरत है। सरकार भी एफपीओ बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
1: मैम, अब मैं चाहूंगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें एफपीओ बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
2: जी जरूर। तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो एफपीओ होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल एफपीओ के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
1: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
2: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
1: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
2: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10-15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता लें।
2: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
2: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
3: उन्नत कृषि,

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।

आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।